इंदौर केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 12वीं तिथि। तदनुसार दिनांक 3 जुलाई वर्ष 2026। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:57 होने को है। आइए अब आरंभ करते हैं हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। 6 बज चुके हैं और आइए अब सुनते हैं हिंदी में समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाची ने सीमा पार आतंकवाद समेत सभी तरह के आतंकवाद और कट्टरपंथ के सभी रूपों और तरीकों की स्पष्ट और कड़े शब्दों में निंदा की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ वार्ता की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। श्री पुरी ने कहा कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की रिफाइनरी क्षमता 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए नीति आयोग

के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार लहड़ी ने रोड मैप जारी किया। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद की वैश्विक विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक प्रमाणीकरण और साक्ष्य आधारित अनुसंधान जरूरी है। नगर विमानन मंत्रालय ने देश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 आम नागरिकों को आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। ये एक लोकहितकारी नीति है। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से आधिकारिक रूप से शुरू होगी और 28 अगस्त को ये समाप्त होगी। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 21 लोगों की मौत होगी और 90 अन्य घायल हो गए। कीव में मुख्य रूप से रिहायशी इमारतों और बुनियादी ढांचों सहित 30 जगहों पर भारी नुकसान हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। अंतिम 16 में स्पेन का सामना पुर्तगाल और क्रोएशिया के मैच के विजेता से होगा। इंग्लैंड दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हराकर आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। रविवार को लॉर्ड्स में खिताबी मुकाबले में इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये समाचार समाप्त होते हैं।

भारत केवल मानचित्र पर अंकित एक देश नहीं बल्कि भावनाओं, संस्कारों और बलिदानों की अमर गाथा है। यह वो भूमि है जहां विविधता में एकता का अद्भुत स्वर सुनाई देता है और जहां हर पीढ़ी अपने कर्मों से राष्ट्र निर्माण का संकल्प दोहराती है। आइए अपने हृदय में देश प्रेम, कर्तव्य और गौरव की भावना को जागृत करते हुए सुनते हैं एक ओजस्वी देशभक्ति गीत।

सृष्टि के आरंभ से लेकर अनंत तक व्याप्त वह दिव्य शक्ति जो मौन में भी संदेश देती है और ध्यान में भी मार्ग दिखाती है, वही है भगवान शिव। वे तप है, त्याग है, करुणा है और विश्वास भी। उनके स्मरण मात्र से मन को स्थिरता और आत्मा को नई ऊर्जा का अनुभव होता है। जब जीवन की राह कठिन लगे तब महादेव का नाम ही

भारतीय संस्कृति के विशाल आकाश में भगवान श्री राम एक ऐसे प्रकाश स्तंभ है जिनकी प्रेरणा युगों से मानव जीवन का मार्गदर्शन कर रही है। हमें उनका चरित्र हमें सिखाता है कि सत्य, धैर्य और कर्तव्य ही जीवन की सबसे बड़ी शक्तियां हैं। श्री राम का स्मरण मन में विश्वास जगाता है और जीवन में मर्यादा का भाव स्थापित करता है।

0: भक्ति तब सार्थक होती है,
1: भक्ति तब सार्थक होती है जब वह मनुष्य को मनुष्य से जोड़ती है।
0: संत रविदास जी ने अपने विचारों और वाणी समानता, प्रेम, समानता और सद्भाव का ऐसा संदेश दिया जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उन्होंने बताया कि सच्ची उपासना बाहरी आडंबर में नहीं बल्कि निर्मल मन और सरल व्यवहार और निष्कपट प्रेम में बसती है।

0: जब जीवन की राहों में मन उलझनों से घिर जाए और
1: जब कर्तव्य और भावनाओं के बीच संतुलन खोजना कठिन लगने लगे,
0: तब श्री कृष्ण का स्मरण
1: और नई दृष्टि
0: और नई ऊर्जा प्रदान करता है।
1: भगवान श्री कृष्ण केवल प्रेम और भक्ति के प्रतीक ही नहीं,
0: कर्म बल्कि ज्ञान
1: और जीवन प्रबंधन के भी अद्वितीय मार्गदर्शक है।
0: उनकी मधुर बांसुरी का स्वर
1: हृदय को शांति देता है
0: और उनके उपदेश
1: जीवन को सही दिशा प्रदान करते हैं।
0: वृंदावन की गलियों से लेकर
1: कुरुक्षेत्र के धर्म क्षेत्र का संदेश,
0: श्री कृष्ण का संदेश
1: आज भी मानवता को कर्म
0: सत्य का प्रेम
1: मार्ग और सत्य का मार्ग दिखाता है।

0: अभी सुन रहे थे आप भक्ति संगीत का प्रातःकालीन आयोजन वंदना। लीजिए प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: आनंद का खजाना हमारे पास ही है। इस खजाने को खोलने के लिए हमारे पास चाबी भी है। जीवन में नकारात्मकता के विचार या भावनाएं कम होती जाएंगी, तो स्वतः सकारात्मकता जीवन में आलोक की तरह फैलकर खुशी का साम्राज्य स्वतः बढ़ा देंगी। जीवन में हमारे चारों तरफ आनंद फैला हुआ है। आनंद खरीदने से नहीं मिलता है, वह तो आंतरिकता का विषय है जो हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। आनंद की कामना करने मात्र से ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे अंदर ही आनंद का संसार बना देती है। आप जिसके बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। आनंद ही हमारे जीवन का अभीष्ट है। आनंद के विचार हमें आनंदमय बना देते हैं। आनंद की तलाश हम सबको जीवन भर रहती है। मनुष्य की आत्मा का विषय आनंद है। आनंद स्थायी भाव है। मनुष्य का स्वभाव उसके आनंद का निर्माता होता है। स्वभाव को जान लेना आनंद प्राप्ति के लिए बहुत जरूरी होता है। आनंद तो मूल मन के साथ जुड़ा हुआ है। ज्ञान, कर्म और भक्ति मार्ग से आनंद की प्राप्ति होती है। योग का एकमात्र लक्ष्य ही आनंद है।

0: जब हमें प्रकृति के स्वरूप में आनंद के दर्शन होने लगे, तब हमारे अंदर आनंद की मात्रा बढ़ने लगती है। हम अपने आसपास नाचते हुए पेड़ पौधों को देख सकते हैं, चिड़िया की चहचहाट सुन सकते हैं और मयूर के इंद्रधनुषी फैले हुए पंखों के नृत्य को भी देख सकते हैं। कभी बाहर और कभी अंदर हमें आनंद के लिए उतरना पड़ता है। रामकृष्ण परमहंस ने हर स्वरूप में ईश्वर के दर्शन किए और इसलिए उन्होंने कहा कि यह संसार आनंद की कुटिया है। जीवन जीना एक कला है, इसका ज्ञान हमको होना आवश्यक है। अधिकांश व्यक्ति जीवन जीने की कला से परिचित नहीं रहते हैं। उनका पूरा जीवन निरुद्देश्य और पशुवत ही बीत जाता है। जीवन से मृत्यु तक वे नहीं जान पाते हैं कि जीवन आनंद क्या है। जीवन आनंद का अर्थ अपनी आत्मा को जानना और आत्मस्थित होना है। सुख और दुख एक सापेक्षित अवधारणा है। आत्मस्थिति व्यक्ति आत्मानंद में लीन रहता है। आनंद एक अवस्था है जिसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं आता है। मनुष्य का जन्म आनंद के बादशाह के रूप में हुआ है, जबकि जीवन भर वह छोटी छोटी बातों को लेकर दुखी बना रहता है। कई बार उसकी स्थिति दुखी भिखारी के समान खराब दिखाई देती है। एक भिखमंगे की तरह वो जीवन भर दुखों को आमंत्रित करता और दुखों की भीख मांगता नजर आता है। माँ से बच्चा आकाश के चांद का मुट्ठी में पकड़ने की जिद करता है, तब माँ उसे थाली में पानी लाकर चांद का प्रतिबिंब दिखाती है। बच्चे से कहती है, यह देख चांद थाली में है। बच्चा बड़ा खुश होता है और वह पानी की थाली में चांद की छवि को चांद समझकर पकड़ना चाहता है। बार बार हाथ डालने पर भी वह चांद को नहीं पकड़ पाता और दुखी होकर रोने लगता है। इसी प्रकार हम भी नादानीवश अनेक अप्राप्त सांसारिक वस्तुओं को पाना चाहते हैं और जब उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते तो दुखी हो जाते हैं। धीरे धीरे दुखी होना व्यक्ति की प्रवृत्ति बन जाता है। वे जीवन भर अनेक प्रकार के स्वनिर्मित दुखों का रोना ही रोते रहते हैं। स्वयं न तो खुश रहते हैं और न दूसरों को खुश रहने देते हैं। इसीलिए संसार की मायावी छाया को पकड़ने पर उसे दुख ही मिलता है, जबकि वो ये नहीं जान पाता कि आत्मा में ईश्वर को स्थापित करने पर चिरस्थायी आनंद प्राप्त होता है। ये जीवन में आनंद प्राप्त करने का सीधा सा ज्ञान है।
1: अभी सुन रहे थे आप आज का चिंतन। आलेख था नलिनी पराशर का और वाचक स्वर थे दुर्गेश नंदिनी चौधरी के। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है खेती की बातें। आज जानिए सोयाबीन की उन्नत किस्मों के विषय में सुनीता पंडित से।
2: खेती की बात नखसुंडावाड़ा सभी किसान भाई बहन का कवा उनकी सुनीता बन की घनी घनी राम राम। भाई अब खरीफ को मौसम आई लग्यो आना निमांड माड़वा की बात करा तो अपनो अंचल छे यो सोयाबीन को कटोरो कह आना सोयाबीन का लेन काली न मध्यम गहरी मिट्टी उपयुक्त मानी जाए और बेहद उपजाऊ मिट्टी भी मानी जाए। एक लेन अपन का सोयाबीन की फसल लेना में फायदो छे आना पण कुछ साल में देखना मायल छे कि बदलता मौसम अनियमित बारिश आना पीला मोजेक वायरस या येलो मोजेक वायरस कवान या स्टेम फ्लाई या तना मक्की कवान ऐसी बीमारी न से किसान भाई नख नुकसान भी उठानु पड़े तो ऐसी चुनौती नख देखता हुआ जो भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान छे आना जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय न माड़वा निमाड़ की जलवायु का अनुकूल कई नई नई तरह की रोग प्रतिरोधी किस्म को विकसित करेली छे आना किसान भाई सही ने प्रमाणित किस्म को चयन करग कदी तो बम्पर पैदावार ले सके। बतावा हम कि निमाड़ मालवा का लोकप्रिय जो सफल सोयाबीन की किस्म न छे वो कहाँ की छे। कम समय में पकड़ वाली सोयाबीन की किस्म जेखा अपन अगेती किस्म न कहवाए वो छे NRCA 150 या बेहद कम समय में लगभग 85 से 90 दिन में पकी जाए तैयार हुई जाए आना सूखा न अनियमित बारिश का सहन करने का लेन काफी सक्षम छे। JS 2034 या माड़वा क्षेत्र का लेन काफी समय से लोकप्रिय छे आना या मात्र 88 से

0: बे दिन में कटाई का लेन तैयार हो जाए अने कम बारिश में भी किसान भाई ने का निराश नहीं करती है। मध्य हमने सामान्य अवधि की किस्म की बात कर लेवा तो एक कालेन मालवानी माड की भूमि का लेन सबसे उपयुक्त मानी जाए क्योंकि एक पकड़ को पर्याप्त समय मिली जाए अने दाणा न को आकार अने वजन भी अच्छो बैठे। एक ही किस्म न छे JS 2172 या मालवा का जो किसान भाई छे उनका नकालेन छे अने एक ही रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत शानदार छे। पीला मोजक वायरस की बात कर ले वहाँ रिंग कट्टर जैसी बीमारी ने कारण यह अत्यधिक सहनशील छे अने एको उत्पादन भी काफी अच्छो मिले छे। NRC 165 या लगभग 50 से 95 दिन की किस्म छे। एकामा पौधा मजबूत है अने तना मक्की जैसे स्टेम फ्लाई जेके कवन अपन या फपुन जनित जो रोग छे उनका नसल लड़ने का लिंग सक्षम छे अने कम या सामान्य बारिश में भी यह एक बेहतरीन विकल्प हो सके। एक ही साथ में JS 2433 या एक नई उन्नतशील किस्म छे जो तेज बढ़वाल कर जिकी तेज बढ़वार भी हो शानदार उत्पादन भी दे और चारकोल रॉट पीला मोजे का खिलाफ लड़ने को अच्छो देखने का मिले छे। एक आलन प्रतिरोधी छे। NRC 142 जो छे वह किस्म की खासियत यह छे कि तनो बहुत मजबूत हो अने तेज हवा ने बारिश का बाद भी पौधो आड़ो नहीं पड़तो है ने एक ही फली ने रुईदार हो अने ज्यादातर फली ने 3 दाणा हो और पैदावार भी एक ही अच्छी छे। भारी बारिश अने विशेष परिस्थिति ने कारण RVS 1135 निमाड़ का कुछ हिस्सा ने की बात कर लेवा मालवा का क्षेत्र में भी भारी न लगातार बारिश अगर हुई रहल छे तो यह किस्म अच्छी पैदावार देगा अने जल भराव की स्थिति में भी फसल खराब नहीं होती है। NRC 136 या मानसून जल्दी चली जाए सूखो पड़ी जाए तो सूखा की सहनशीलता का लेन भी अच्छी न सुरक्षित फसल। हम योज कहवांगा कि जब भी आप कोई भी किस्म न को चयन करो तो अपनी खेत की स्थिति खेत की माटी अने फसल की विविधता का साथ मतलब ओका साथज में अपनो खेत की किस्म को चयन करो। कहने को मतलब यो कि पूरा खेत में एक किस्म की बुवाई नहीं करता हुआ दो या तीन अलग अलग किस्म की अगेती हुई दो मध्यम हुई ऐसी किस्म को चुनाव करोगा तो मौसम का जो उतार चढ़ाव छे ओका से पूरी फसल खराब नहीं होगा और आर्थिक नुकसान नहीं होगा। हाँ बीज उपचार करी ने अपनी फसल की वावनी कर जो। आज खेती के बाद नंबर एतरोज कहनु राम राम।
1: अभी सुन रहे थे आप खेती की बातें जिसमें आज हमने जाना सोयाबीन की उन्नत किस्मों के विषय में सुनीता पंडित से। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग वाणी जयराम के गायन स्वर में।

देवाधिदेव महादेव तथा पार्वती का धाम पर्वत श्रेष्ठ कैलाश, जिस पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो सभी ऋतुओं में समान रूप से हरा भरा रहता है, शीतल स्निग्ध छाया देता है, जहां मंद सुगंधित वायु बहती रहती है। ये स्थान शिवजी का विश्राम स्थल है। इसी वृक्ष की शीतल छाया में शिव इस मुद्रा में बैठे हैं, जैसे स्वयं शांत रस मूर्तिमान हो उठा हो। सुअवसर पाकर पार्वती वहां आती हैं। आदर सत्कार की भंगिमा के साथ शिवजी ने उन्हें अपनी बाईं ओर आसीन किया। पार्वती को अनायास अपने पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। स्वामी की प्रशस्ति करते हुए उन्होंने श्री रघुनाथ की कथा सुनाने का अनुरोध किया।

वाणी जयराम के गायन स्वर में सुन रहे थे अभी आप श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब एक सूचना सुनिए। साइबर क्राइम के बढ़ते खतरे और जन जागरूकता के लिए विविध भारती इंदौर FM 101.6 MHz आपके लिए लेकर आ रहा है शुक्रवार यानी आज दिनांक 3 जुलाई 2026 को सुबह 11:32 से 12 बजे तक सजीव फोन इन कार्यक्रम साइबर क्राइम रहे सावधान। ये कार्यक्रम आप आज सुबह 11:32 से 12 बजे तक FM 101.6 MHz विविध भारती चैनल पर प्रसारित हो रहा है, वहां सुन सकते हैं। इस सजीव फोन इन कार्यक्रम में विशेषज्ञ होंगे DSP नरेंद्र सिंह रघुवंशी, स्टेट साइबर सेल इंदौर। श्रोता साइबर अपराधों से जुड़ी अपनी जिज्ञासाओं का समाधान सीधे प्राप्त कर सकेंगे। हमारे फोन नंबर है 2710223 और 2710224। फोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 2710223 और 2710224। इंदौर का STD कोड है 0731। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट करें। शुक्रवार दिनांक 3 जुलाई 2026 यानी कि आज समय रहेगा सुबह 11:32 से 12 बजे तक और आप इस कार्यक्रम को सुनेंगे विविध भारती चैनल पर। तो आप भी फोन करके साइबर क्राइम रोकने हेतु विशेष सावधानियां विशेषज्ञ DSP नरेंद्र सिंह रघुवंशी स्टेट साइबर सेल इंदौर से जान सकते हैं। तो सुनना ना भूलिएगा ये कार्यक्रम विविध भारती FM 101.6 MHz पर और साथ ही मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी। सूचना समाप्त हुई और इसी के साथ अब समय है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा का।

श्रोताओं, आज सुबह 7:20 से सुनिए कार्यक्रम इंदौर परिक्रमा, प्रस्तुति होगी मुकाम सिंह चौहान की। सदाबहार फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा सुनहरे पल कार्यक्रम में सुबह 7:35 से। सुबह 8:30 का समय होगा कवि गोष्ठी का। प्रतिभागी होंगे कवि राधाकृष्ण बामनिया, राम नारायण कुवाल, सईदली ऋषि, सईद सफदर रजा खंडवी। लोकगीतों के कार्यक्रम में आज सुनिएगा अरुण कुमार गोयल के गाए कुछ मालवी लोकगीत सुबह 9:00 से। और सुगम संगीत के कार्यक्रम में हेमा सरदेसाई की गायक कुछ

गैर फिल्मी गीत आप सुनेंगे सुबह 9:15 पर। पूर्वी नीम गांवकर का उपशास्त्रीय गायन सुनिए शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:30 से। तबला संगत होगी मोहित शाक्य की, हारमोनियम पर संगत करेंगी रचना शर्मा। श्रोताओं, जिले की चिट्ठी का समय होगा सुबह 10:00 और सुबह 10:05 से सुनिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम MH हॉटलाइन। हमारे एक अन्य फोन इन कार्यक्रम फोन करिए गीत सुने आप सुनेंगे सुबह 11:00 से और फिल्म संगीत का समय होगा दोपहर 12:00। 12:30 पर सुनना न भूलिएगा कार्यक्रम संग्रहालय से। महिला कार्यक्रम में आज दोपहर 1:00 सुनिए मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के विषय में, साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के लिए करियर विकल्प, इस विषय पर सुनिए डॉक्टर रागिनी माथुर से एक भेंटवार्ता। रीजन आर्ट को बनाए अपना करियर, इस विषय पर जानकारी सुनिए। साथ ही जाने मानसिक परेशानी है तो 1-4-4-1-6 पर कॉल करें, इस विषय पर जानकारी। हमारी दोपहर की सभा में लोक संगीत का समय होगा 1:30 और 1:45 पर सुनिएगा सुगम संगीत। दोपहर 2:00 सुने फिल्म संगीत और 2:30 पर चित्रपट संगीत। शाम 5:00 आएगा युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी, जिसमें आज सुने साप्ताहिक विज्ञान और खेल गतिविधियों के विषय में। 5:45 पर शाम को ले फिल्म संगीत का आनंद और NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम सुने शाम 6:00। सुगम संगीत में हेमा सरदेसाई की ही गई कुछ रचनाएं सुनिए शाम 6:30। श्रोताओं, अभी सुन रहे थे आप आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं, कुछ ही पलों में संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तस्य जापानस्य समकक्षीया साने ताकाइची इत्येषा पाकिस्तानात् सीमापारे आतंकवादं समेत्य सर्वेषु रूपेषु अभिव्यक्तिषु आतंकवादस्य हिंसक उग्रवादस्य च निन्दां कृतवन्तौ। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलनस्य संयुक्त वक्तव्ये द्वौ नेतारौ गतवर्षे अप्रैल मासस्य द्वाविंशति दिनांके जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम इत्यत्र जातम् आतंक्याक्रमणं कट्वा लोचितवन्तौ। उभौ प्रधानमन्त्रिणौ हिन्द प्रशांत क्षेत्रस्य उभयोः देशयोः मध्ये सहयोगं विस्तारयितुं प्रतिबद्धतां पुनरुद्घाटितवन्तौ।
1: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की है। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
0: भारत जापान विशेष सामरिक वैश्विक सहभागित्वस्य आधारस्तंभेष् अन्यतमार्थिक सुरक्षा प्रधानताया विषये भारत जापान देशौ परस्परं प्रतिबद्धतां पुनः दृढ़ीकृतवन्तौ। आर्थिक सुरक्षा सहकार विषये भारत जापान संयुक्त घोषणापत्रे अवदतां यत् आर्थिक सुरक्षा सहभागित्वं परस्पर विश्वासस्य सहभागी मूल्यानां संबद्ध हितानां च आधारेण वर्तते। उभयोः पक्षयोः समृद्धिः सुरक्षा आर्थिक भविष्यं च सुदृढतया परस्परं संबद्धमस्ति इति मान्यता अस्ति। अद्यतनीकृतस्य

0: स्य च इंडो पैसिफिक इत्यस्य तथा च म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट इन द रीजन्स महासागर इति उपक्रमस्य समन्वयः उभयोः पक्षयोः कृते आर्थिक सुरक्षा सहकारं वर्धयितुम् आवश्यकं प्रोत्साहनं प्रददाति इति घोषिता अस्ति। लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला अद्य कोलकातायां पश्चिम बंगाल विधानसभायाः नवनिर्वाचित सदस्येभ्यः द्विदिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रमस्य उद्घाटनं करिष्यति। अस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यं नवनिर्वाचितेभ्यः सदस्येभ्यः समिति व्यवस्था, वित्तीय निरीक्षणं, संसदीय विशेषाधिकाराः, विधायकेषु उदयोन्मुख आंकिकीयोपक्रमाः इत्यादीनां संसदीय विधायी कार्याणां विविध पक्षेभ्यः परिचय प्रदानं वर्तते। पंचायती राज मंत्रालयः षोडश वित्तायोगस्य अनुशंसानां विषये विचारार्थम् अद्य नवदिल्ल्यां राज्यस्य पंचायती राज मंत्रिणां एकां राष्ट्रिय कार्यशालां आयोजयति। कार्यशालायाः अध्यक्षतां केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंहः, केन्द्रीय राज्य मंत्रिणः प्रोफेसर एसपी सिंह बघेलस्य उपस्थितौ करिष्यति। कार्यशालावधौ चर्चा वित्त मंत्रालयस्य व्यय विभाग द्वारा प्रख्यापितस्य षोडश वित्तायोग ग्रामीण स्थानीय निकायानुदानस्य कार्यान्वयनाय परिचालन दिग्निर्देशेषु केन्द्रता भविष्यति। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा अद्य जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम बालटाल मार्गयोः आरभ्यते। सप्तपंचाशत् दिवसीयायां तीर्थयात्रायां सम्पूर्णे भारतदेशात् लक्षोपलक्षाः भक्ताः अमरनाथ गुहातीर्थं प्रति पवित्रयात्रां करिष्यन्ति इत्यपेक्षा अस्ति। तीर्थयात्रिणः भगवतः शिवस्य आशीर्वादं प्राप्तुं प्राकृतिकरूपेण निर्मितं हिमशिवलिङ्गं द्रष्टुं च प्रायः अष्टाशीत्यधिक अष्टशतोत्तर त्रीणि सहस्र मीटर परिमितेषु ऊर्ध्वतायां स्थित पवित्र अमरनाथ गुहायां गच्छन्ति। आईसीसी महिला विंशति प्रतिविंशति विश्व चषक क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां इंग्लैंड दलेन साउथ अफ्रीका दलं चत्वारिंशत् धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद एक संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पिछले वर्ष 10 नवम्बर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्य के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का भी उल्लेख किया। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। इसके अनुसार दोनों देशों की समृद्धि, सुरक्षा और आर्थिक भविष्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों देश पांच प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि इस संबंध में ममता बनर्जी और पार्टी नेता ऋणव्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे गए हैं। आयोग ने कहा है कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए

0: दो दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नव निर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल हैं। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। लाखों श्रद्धालु 57 दिन की यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांदरबल जिले के बालतल आधार शिविर पहुंचा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आज अंतिम 32 के मुकाबले में पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से हरा दिया। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 जुलाई तक खेली जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, अब एक सूचना सुनिए। साइबर क्राइम के बढ़ते खतरे और जन जागरूकता के लिए विविध भारती इंदौर एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ आपके लिए लेकर आ रहा है इस शुक्रवार दिनांक 3 जुलाई यानी कि आज सुबह 11:32 से 12 बजे तक सजीव फोन इन कार्यक्रम साइबर क्राइम रहे सावधान। ये कार्यक्रम आप आज सुबह 11:32 से 12 बजे तक एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज विविध भारती चैनल पर सुन सकते हैं। इस सजीव फोन इन कार्यक्रम में विशेषज्ञ होंगे डीएसपी नरेंद्र सिंह रघुवंशी, स्टेट साइबर सेल इंदौर। श्रोता साइबर अपराधों से जुड़ी अपनी जिज्ञासाओं का समाधान सीधे प्राप्त कर सकेंगे। हमारे फोन नंबर होंगे 2710223 और 2710224। फोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड है 0731 यानी 0731। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट करें। शुक्रवार दिनांक 3 जुलाई 2026 यानी कि आज का दिन सुबह 11:32 से 12 बजे विविध भारती चैनल पर। तो आप भी फोन करके साइबर क्राइम रोकने हेतु विशेष सावधानियां विशेषज्ञ डीएसपी नरेंद्र सिंह रघुवंशी, स्टेट साइबर सेल इंदौर से जान सकते हैं। आप शुक्रवार दिनांक 3 जुलाई यानी कि आज सुबह 11:32 से 12 बजे तक विविध भारती एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन सकते हैं। साथ ही ये कार्यक्रम सुना जा सकता है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। सूचना समाप्त हुई।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियां हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ

0: मेहमान हो मालवा की, तो
1: यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। एचएस कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती जीएसटी दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।
3: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
2: जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत, चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
4: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही देर में सुनिए प्रादेशिक समाचार, जिसे हम अपने भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में कहा, भारत विश्व की सबसे बड़ी तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था। स्कूल चले अभियान के दौरान ही संदीप ने विद्यालय भवनों का लोकार्पण और स्कूलों का युक्तियुक्तकरण होगा। श्री अमरनाथ यात्रा आज जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालटल मार्गों से शुरू। और प्रदेश में मॉनसून ने पकड़ी रफ्तार, आज हरदा नर्मदापुरम समेत कई जिलों में तेज बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषता और निवेश भारत की गति और व्यापकता के साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने आज साझेदारी को और भी गतिशील तथा प्रगाढ़ बनाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के

0: अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा,
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: वहीं जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने कहा है कि सहयोग के कई क्षेत्रों में ऊर्जा सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। इस अवसर पर दोनों प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के चौथे वाहन निर्माण केंद्र का उद्घाटन किया। प्रदेश में इन दिनों स्कूल चले अभियान चल रहा है। 15 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान के दौरान अधिकाधिक सांदीपनी विद्यालय भवनों को लोकार्पण और स्कूलों का युक्तियुक्तकरण कराया जाए ताकि विद्यार्थियों को इसी सत्र में अधिकतम लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल अलग अलग विभागों की हुई समीक्षा बैठक में इस पर जोर दिया। डॉ. यादव ने कहा कि सांदीपनी विद्यालय प्रदेश का सबसे बड़ा उत्कृष्ट नवाचार है। स्कूल शिक्षा विभाग इसकी राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर ब्रांडिंग के लिए कार्ययोजना तैयार करे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के सभी धार्मिक महत्व के तीर्थ स्थलों में धर्मशाला, सराय, अन्य क्षेत्र, प्याऊ, पेयजल टंकी, अस्पताल और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माण के लिए धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाए। ये प्रोत्साहन रजिस्ट्री शुल्क में छूट, अनुदान या अन्य रियायत स्वरूप में किया जा सकता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कल मंत्रालय में विभिन्न प्रासंगिक विषयों पर विभागों की प्रगति और आगामी कार्ययोजना के संबंध में समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। डॉ. यादव ने कहा कि भोपाल की भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल को शासन द्वारा दी गई जमीन की भेल के लिए वर्तमान में अनुपयोगी भूमि उनसे वापस लेने के प्रयास किए जाएं। प्रदेश के 18 जिलों में नर्मदा जयंती कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में नर्मदा समग्र की बैठक में अपर मुख्य सचिव ने ये जानकारी देते हुए कहा कि मां नर्मदा की भव्य आरती, नृत्य गायन, प्रदर्शनी, प्रतियोगिता और जागरूकता कार्यक्रम भी किए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अब नर्मदा समग्र की बैठक हर महीने होगी। मुख्यमंत्री ने नर्मदा परिक्रमा पथ पर मार्ग संकेतक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने ये भी घोषणा की कि अमरकंटक में जैव विविधता प्रबंधन संस्थान और नर्मदा कोष पोर्टल भी बनाया जाएगा। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देश पर चर्चा होगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। श्री अमरनाथ जी यात्रा जम्मू और कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो चुकी है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। श्रद्धालु लगभग 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा में भगवान शिव का आशीर्वाद लेने और प्राकृतिक रूप से निर्मित बर्फ के शिवलिंग के दर्शन करने के लिए जाते हैं। यह यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांदरबल जिले के बालटल स्थित दोहरे बेस कैंप पहुंचा। पहले जत्थे में 4,822 यात्री हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की घोषणा कर दी है। जारी कार्यक्रम के अनुसार 6 जुलाई को गजट नोटिफिकेशन होकर नामांकन भरने की आखिरी तारीख 13 जुलाई होगी। 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की छटनी और 16 जुलाई तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 अगस्त को मतगणना की जाएगी। प्रदेश में मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली है। भोपाल समेत 11 जिलों में कल से रुक रुक कर तेज बारिश हुई। सतना और झाबुआ में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। सतना में बालिका स्कूल परिसर में पेड़ गिरने से 2 युवतियां घायल हो गई हैं। दमोह

लगातार बारिश होने से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। इंदौर में भी रात से कई क्षेत्रों में बारिश जारी है। मौसम विभाग ने आज हरदा, नर्मदापुरम, रायसेन, छिंदवाड़ा, पांडुना, बालाघाट समेत 19 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं भारी बारिश की भी आशंका है। इंग्लैंड आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन के केनिंगटन ओवल में कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हरा दिया। पहली बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने निर्धारित ओवर में 5 विकेट पर 169 रन बनाए। जवाब में दक्षिण अफ्रीका निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 129 रन ही बना सका। रविवार को लॉर्ड्स में फाइनल में इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। लॉस एंजलस स्टेडियम में कल रात स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल और क्रोएशिया के बीच जारी मैच के विजेता से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा जिले के बमन गांव आखई में कल विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी VBGRAMJI योजना का जिला स्तरीय शुभारंभ किया गया। आगरमालवा जिला पुलिस को ई विवेचना प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिले के सभी थाना क्षेत्रों के 153 विवेचकों को टैबलेट दिए गए। अशोकनगर जिले में सभी शासकीय विभाग और संस्थाएं अपने अपने स्तर पर नशा मुक्ति से संबंधित जागरूकता अभियान और गतिविधियां संचालित करेंगी। ये निर्देश कल कलेक्टर ने एक बैठक में दिए। भोपाल ने नगर निगम और फायर विभाग ने कल एमपी नगर स्थित 2 कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई की। धार जिले में तेजी से विकसित हो रहे देश के महत्वाकांक्षी पीएम मित्रा पार्क का इंदौर संभाग आयुक्त डॉ. सुदाम खाड़े ने कल दौरा किया। इंदौर संभाग आयुक्त डॉ. सुदाम खाड़े ने कल झाबुआ के विभिन्न गांवों का सघन भ्रमण कर कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्थाओं का अवलोकन भी किया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 जुलाई तक खेली जाएगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम इंदौर परिक्रमा। प्रस्तुति है मुकाम सिंह चौहान की।
1: इंदौर परिक्रमा। इंदौर परिक्रमा। इंदौर परिक्रमा।
2: नमस्कार श्रोताओं, इंदौर परिक्रमा के साथ मैं मुकाम सिंह चौहान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। श्रोताओं, 1 जुलाई 2026 को राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे के अवसर पर चिकित्सा जगत से जुड़े विभिन्न संगठनों, अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस वर्ष देश भर की तरह इंदौर में भी डॉक्टर्स डे की केंद्रीय थीम रही बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स, यानी मास्क के पीछे इलाज करने वालों का इलाज कौन करता है, जो डॉक्टरों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को समर्पित रही। इंदौर में आयोजित कार्यक्रमों के बारे में हम आपको बता दें, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA की इंदौर शाखा और विभिन्न निजी व सरकारी अस्पतालों जैसे MY हॉस्पिटल, चौथराम और अरविंदो हॉस्पिटल्स द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किए गए। चिकित्सा के क्षेत्र में दशकों तक उत्कृष्ट सेवा देने वाले शहर के वरिष्ठ और सेवानिवृत्त डॉक्टरों को सम्मानित किया गया, तो वहीं नई पीढ़ी के डॉक्टरों को ग्रामीण और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं में उनके योगदान के लिए सराहा गया। इस वर्ष की थीम को ध्यान में रखते हुए इंदौर के मेडिकल सर्किल्स में डॉक्टरों के वर्क लाइफ बैलेंस, तनाव प्रबंधन और बर्नआउट यानी अत्यधिक थकान से निपटने के लिए विशेष टॉक शो और कार्यशालाएं आयोजित की गई। इसमें मनोचिकित्सकों ने डॉक्टरों को खुद की मानसिक और शारीरिक सेहत का ख्याल रखने के टिप्स दिए। शहर के कई प्रमुख अस्पतालों और क्लिनिकों ने आम

0: जनता के लिए जांच और परामर्श शिविर लगाए, जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, ईसीजी और सामान्य परामर्श बिल्कुल मुफ्त दिए गए। इसके साथ ही जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों जैसे डायबिटीज और हाइपरटेंशन से बचाव के लिए जागरूकता सत्र भी आयोजित किए गए। इंदौर के महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय यानी MGM मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों द्वारा कई रचनात्मक गतिविधियां आयोजित की गई। इस अवसर पर MY हॉस्पिटल एवं MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर की सर्जरी विभाग में नवीन अकादमिक ब्लॉक का शुभारंभ भी किया गया। इस अवसर पर विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद शुक्ला ने फीता काटकर अकादमिक ब्लॉक का उद्घाटन किया। सभी डॉक्टर्स को विभाग अध्यक्ष की ओर से डॉक्टर एप्रन भेंट किया गया। इस नवीन अकादमिक ब्लॉक की स्थापना का उद्देश्य स्नातक एवं स्नातकोत्तर PG विद्यार्थियों के लिए आधुनिक एवं बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना तथा मरीजों को और अधिक सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। इस पहल से चिकित्सकों की मरीजों तक सहज उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे उपचार व्यवस्था और अधिक प्रभावी एवं व्यवस्थित होगी। इस अकादमिक ब्लॉक में विद्यार्थियों के लिए आधुनिक पुस्तकालय, कॉन्फ्रेंस रूम, इंटरनेट सुविधा एवं अध्ययन अध्यापन जैसे आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था की गई है। यह सुविधा विभाग में शिक्षण, प्रशिक्षण, शोध एवं अकादमिक गतिविधियों को नई दिशा प्रदान करेगी। डॉक्टर्स डे के अवसर पर विभाग ने मरीजों को बेहतर उपचार एवं विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराने के अपने संकल्प को दोहराया। शहर के कई युवा डॉक्टरों और विभिन्न NGOs के सहयोग से ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए, ताकि सरकारी ब्लड बैंकों में रक्त की कमी को पूरा किया जा सके। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण को संदेश देते हुए कई अस्पताल परिसरों और सार्वजनिक पार्कों में वृक्षारोपण अभियान भी चलाया गया। इस विशेष अवसर पर 1 जुलाई 2026 को पूरे देश की तरह इंदौर में भी मुख्य रूप से राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे, चार्टर्ड अकाउंट्स डे यानी CA दिवस और GST दिवस नगर निगम के अटल भवन में मनाया गया।
1: My name is Yagnesh Desai, Chartered Accountant from Mumbai. तो हम Chartered Accountants and Doctor दोनों profession बहुत कृतज्ञ हैं कि इन्होंने ऐसा मौका हमें दिया और सम्मान दिया हमें, जो शायद मैं समझता हूँ कि बहुत rare और maybe the first municipal corporation जो कर रही है, वो बहुत ही सराहनीय काम है और हम महापौर जी के बहुत बहुत ऋणी हैं, कृतज्ञ हैं।
0: इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया,
2: समाज के दो ऐसे वर्ग हैं जो देश के स्वास्थ्य के साथ साथ देश के आर्थिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं, और ये दोनों प्रोफेशनल्स देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसी प्रकार से इंदौर के डेवलपमेंट में भी इंदौर के डॉक्टर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की अहम भूमिका है, जिसको हम पिछले 4 सालों से लगातार इस अटल सदन में सम्मानित करते हैं, ताकि शहर में उनकी सहभागिता को रिकॉग्निशन मिले। आज भी इस अवसर पर बंबई से हमारे बीच वरिष्ठ CA यज्ञेश देसाई जी और इंदौर के प्रतिष्ठित डॉक्टर्स की उपस्थिति में उनका सम्मान किया गया। मैं उनके कार्य को विशेषकर हम कोविड में जब हमने देखा कि डॉक्टर्स की क्या भूमिका है, उसके महत्व को लोगों ने और समझा, इंदौर शहर के ही 20 प्रतिष्ठित डॉक्टर और 20 प्रतिष्ठित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का सम्मान हमने किया है, जिनका चयन CA एसोसिएशन के इंदौर चैप्टर ने और इंदौर मेडिकल एसोसिएशन की टीम ने करके हमको दिया था। मैं अपनी ओर से जिनका सम्मान हुआ है उनको भी और इंदौर शहर के सभी डॉक्टर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को शुभकामनाएं देता हूँ।

श्रोताओं, वर्ष 2026 की पवित्र अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ आज यानी 3 जुलाई 2026 से हो रहा है और यह यात्रा 28 अगस्त 2026 रक्षाबंधन के दिन तक चलेगी। इस बार यह पावन यात्रा कुल 57 दिनों तक चलेगी। यात्रा के आधिकारिक प्रारंभ से पहले 29 जून 2026 को पारंपरिक रूप से प्रथम पूजा का आयोजन किया गया। इस यात्रा के संदर्भ में आपको हम संक्षिप्त जानकारी देना चाहेंगे। श्रद्धालु बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक पहुंचने के लिए दो अलग अलग रास्तों का उपयोग कर रहे हैं। पहला मार्ग पहलगाम मार्ग है। यह पारंपरिक और थोड़ा आसान रास्ता है। अनंतनाग जिले से शुरू होने वाले इस मार्ग की दूरी लगभग 46 से 48 किलोमीटर है, जिसे पूरा करने में तीर्थ यात्रियों को 4 से 5 दिन का समय लगता है। यह मार्ग परिवारों और पहली बार जा रहे यात्रियों के लिए बेहतर माना जाता है। दूसरा मार्ग है बालटाल मार्ग। गांदरबल जिले का यह मार्ग छोटा लेकिन काफी खड़ी चढ़ाई वाला है। इसकी दूरी मात्र 14 किलोमीटर है, जिसे स्वस्थ लोग 1 से 2 दिन में पूरा कर लेते हैं। बालटाल से पंचतरणी तक हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध रहती है। जम्मू कश्मीर प्रशासन और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए हाईटेक व्यवस्था की है। इस यात्रा में केवल उन्हीं यात्रियों को जाने की अनुमति दी जा रही है जिन्होंने अग्रिम पंजीकरण कराया है और जिनके पास 8 अप्रैल 2026 के बाद का प्राधिकृत डॉक्टर द्वारा जारी किया गया अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाण पत्र हो। सभी तीर्थयात्रियों को जम्मू या श्रीनगर केंद्रों से RFID यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड लेना अनिवार्य किया गया है। इससे प्रशासन पल पल हर यात्री की लोकेशन को ट्रैक कर सकेगा ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से लेकर ट्रेकिंग रूट तक CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवान तैनात है। ड्रोन, स्नीपर टीमें और करीब 416 से अधिक CCTV कैमरों के जरिए आसमान से लेकर जमीन तक 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। पूरे रूट पर विभिन्न लंगर समितियों द्वारा मुफ्त भोजन, पानी और ठहरने की व्यवस्था की गई है। इस बार खाद्य सुरक्षा विभाग लंगरों में भोजन की गुणवत्ता और साफ सफाई की लगातार जांच कर रहा है। जो श्रद्धालु शारीरिक रूप से असमर्थ हैं या किसी कारणवश गुफा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके लिए प्रशासन ने तकनीक का उपयोग करते हुए घर बैठे VR यानी वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से बाबा बर्फानी के अलौकिक दर्शन की भी विशेष व्यवस्था की है।

0: महादेव शिव शंकर हर हर महादेव शिव शंकर हर हर महादेव शिव शंकर हर हर महादेव शिव शंकर
1: नमः पार्वती पते हर

0: श्रोताओ, यूं तो बारिश का मौसम बहुत ही सुहाना होता है, लेकिन जगह जगह जल जमाव के कारण कीचड़ और गंदगी की स्थिति उत्पन्न होती है और इसी से मच्छर और अन्य संक्रामक बीमारियों के कीटाणु उत्पन्न होते हैं और ये बीमारियां हम सभी को खासा प्रभावित करती हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि आसपास जल जमाव ना हो और पानी की पर्याप्त निकासी हो। साथ ही मच्छरों से बचने का समुचित उपाय भी हमें करना होगा। तो आइए हम जुड़ रहे हैं विशेषज्ञ से, वो हमें इन दिनों किस प्रकार से अपना बचाव करने का संदेश दे रही हैं।
1: नमस्ते, मैं डॉक्टर रश्मि शर्मा दुबे। आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि वाहक जनित रोग जो मच्छरों के काटने से होते हैं, इनसे कौन कौन सी बीमारियां इसमें शामिल हैं। तो सबसे प्रमुख इसमें जो है वो है मलेरिया। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होने वाली बीमारी है। और दूसरा है डेंगू, ये एडीज नाम के मच्छर के काटने से होने वाली बीमारी है। एडीज मच्छर के काटने से चिकनगुनिया बीमारी भी होती है। मूल रूप से मलेरिया का जो मच्छर है, जिसे एनोफिलीज कहा जाता है, वो रात के समय काटता है। उससे बचाव के लिए मच्छरदानी लगाकर सोना सबसे अच्छा उपाय है। लेकिन इसके विपरीत जो डेंगू और चिकनगुनिया का मच्छर है, जिसे एडीज कहा जाता है, ये डे बाइटर है और ये दिन के समय काटता है। दिन के समय चूंकि ये काटता है, तो इससे बचाव के लिए सबसे अच्छा साधन है कि हम पूरे बांह के कपड़े पहने, मॉस्किटो रेपेलेंट्स का इस्तेमाल करें और अपने घर, अपने कार्यालय और अपने परिसर को स्वच्छ रखें। मूल रूप से एडीज और

एनोफिलीज दोनों ही मच्छर साफ पानी में होते हैं। गंदे पानी से इसका विशेष लेना देना नहीं। मूल रूप से घरों के अंदर जो हम पानी स्टोर करके रखते हैं, उसमें, फ्रिज की ट्रे में, एसी की डक्ट में, कूलर में, इस तरह की जो जहां साफ पानी के स्टोरेजेस होते हैं, वहां पर एडीज और एनोफिलीज मच्छर के लार्वा बहुत तेजी से पनपते हैं। 7 दिनों के अंदर अंदर इनसे एडल्ट डेवलप हो जाते हैं और ये मच्छर काटने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। एक संक्रमित मच्छर कई स्वस्थ व्यक्तियों को मलेरिया या डेंगू कर सकने में सक्षम होता है। एडीज की एक विशेषता ये है कि इसमें ट्रांस ओवेरियन ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज होता है, जिसका मतलब है कि यदि एक बार कोई मच्छर डेन वायरस से इन्फेक्टेड हो गया तो वो मच्छर अपने अंडों में भी उस वायरस को ट्रांसफर कर सकता है और अंडों से बनने वाले नए मच्छर भी अपने में संक्रमित डेन वायरस लेकर घूम सकते हैं। इसीलिए डेंगू का ट्रीटमेंट थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये पूरी तरह से ट्रांसओवेरियन ट्रांसमिशन के चलते तेजी से फैलने वाली बीमारी है। मलेरिया का जहां एक निश्चित उपचार है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। मलेरिया 2 प्रकार का सबसे ज्यादा प्रचलित है, या तो मलेरिया पीवी या मलेरिया सल्सिपेरम। ये दोनों ही प्रकार के जो मलेरिया हैं, इनका इलाज एक निश्चित दवाइयों के माध्यम से होता है। लेकिन डेंगू में यदि किसी व्यक्ति को डेंगू हो गया है तो उसे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के माध्यम से ही ठीक किया जाता है। जैसे यदि तेज बुखार है तो बुखार उतारने की दवाइयां दी जाती हैं, उल्टी हो रही है, एसिडिटी है, आंखों के आगे काले धब्बे आने लगे हैं, पेट दर्द हो रहा है, ये सब डेंगू के लक्षण हैं। और इन सभी लक्षणों में लाक्षणिक उपचार ही दिया जाता है। डेंगू कई बार घातक भी सिद्ध होता है, क्योंकि डेंगू के चलते कई बार इंटरनल आर्टरीज और वेन्स में हेमरेज हो जाता है और उस हेमरेज के कारण मसूड़ों से ब्लड आने लगता है। जब भी डेंगू हेमरेजिक हो जाता है तो ये स्थिति बहुत खतरनाक होती है और ऐसी स्थिति में मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए सही समय पर दोनों ही बीमारियों का यदि इलाज कर दिया जाए तो इन परिस्थितियों से बचा जा सकता है। लेकिन यदि व्यक्ति को समय पर उपचार न मिले तो ये दोनों ही स्थितियां बहुत ही घातक सिद्ध हो सकती है। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, इन सभी बीमारियों से बचाव के लिए सबसे आसान उपाय है कि हम अपने आप को मच्छरों के काटने से बचाएं। विशेष रूप से महिलाएं, बच्चे जो दिन के समय घर में रहते हैं, इन सभी पर डेंगू का मच्छर दिन के समय आसानी से आक्रमण कर सकता है और इस आक्रमण के चलते उन्हें ये बीमारी हो सकती है। तो सावधानी ही सुरक्षा है, सावधानी ही बचाव है। जितना अधिक से अधिक मच्छरों के काटने से स्वयं को बचाएंगे, उतना आसानी से हम इन प्राण घातक बीमारियों से स्वयं को, अपने परिवार को, अपने परिजनों को बचाकर रख सकते हैं।

0: इंदौर परिक्रमा इंदौर परिक्रमा इंदौर परिक्रमा
1: अभी सुन रहे थे आप कार्यक्रम इंदौर परिक्रमा, प्रस्तुति थी मुकाम सिंह चौहान की। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरे पल।

सुनहरे पल सुनने वाले सभी श्रोताओं को तृप्ति का प्यार भरा नमस्कार। लीजिए आपको सुनवाते हैं सदाबहार फिल्म संगीत सुनहरे पल कार्यक्रम में। पहला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने। फिल्म का नाम है जूली।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में सुन रहे थे अभी आप ये गाना। फिल्म का नाम था बहारों के सपने। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा था, राहुल देवबर्मन का संगीत था।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

किशोर कुमार की आवाज़ में सुना आपने इंदिवर का लिखा यह गाना। ओपी नैयर का संगीत था, फिल्म का नाम था एक बार मुस्कुरा दो। और इसी गीत के साथ संपन्न होता है सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनहरे पल।

0: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल। कुछ ही देर में सुनिए समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के दो मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री ताकाइची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों नेताओं ने क्वाड ढांचे के अंतर्गत व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुगमता मजबूत करने के लिए आसियान सदस्य देशों के साथ सहयोग के महत्व का भी उल्लेख किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रति

द्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि उसने संबंध में दोनों गुटों के दावों और प्रतिदावों पर ममता बनर्जी और पार्टी नेता रणब्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। आयोग ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। ये घटनाक्रम तृणमूल कांग्रेस के अंदर पार्टी के संगठन की संरचना और पार्टी की ओर से कार्य करने के अधिकार को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केन्द्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। विचार विमर्श से केंद्र राज्य सहयोग को सुदृढ़ करने और 2047 तक विकसित भारत बनाने की परिकल्पना के अनुरूप पंचायतों को बेहतर शासन, बुनियादी सुविधाओं, सार्वजनिक सेवाओं और समावेशी ग्रामीण विकास प्रदान करने के लिए सशक्त बनाने का मजबूत ढांचा विकसित करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गो से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी।
4: बम बम बोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था आज सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो गया। अगले 57 दिनों की इस यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु नुनवन, पहलगाम और बालतल रास्तों से होते हुए बाबा बर्फानी के यहां अपनी हाजिरी देंगे। दोनों रास्तों पर अधिकारियों ने मेडिकल कैंप, आराम करने की जगहें, लंगर, पीने के पानी की सुविधा और मौसम की पल पल की जानकारी रखने जैसे व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच यात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से निकलकर घाटी की तरफ रवाना हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
3: ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि धमकियों और निगरानी जोखिमों के कारण मुज्तबा खामनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4-9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे।

0: इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। रूस पर किए जा रहे लगातार हमलों को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने 40 दिनों का ताबड़तोड़ हमला बताया है। सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस घटना में 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। दमिश्क के गवर्नर माहिर मारवान इदलिबी ने कहा है कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुर्तगाल ने आज क्रोएशिया को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की। मंगलवार को डलास में प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। इससे पहले फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, मोरक्को, ब्राजील, पैराग्वे, बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी अंतिम 16 में पहुंच चुके हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में सोमवार को इंग्लैंड का सामना मैक्सिको से होगा। अमरीका मंगलवार को बेल्जियम के साथ खेलेगा। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच 2 मैच की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गॉल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। उधर इंग्लैंड ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन में कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हरा दिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। रविवार को लंदन के लॉर्ड्स में फाइनल में इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: और खेल खबरों के बाद एक दुखद घटना। आंध्र प्रदेश के मरकापुरम जिले में आज सुबह कंभम के पास एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना खाद से लदे एक ट्रक के ऑटो रिक्शा को टक्कर मारने से हुई। घायलों को गिदलूर और कुंभम के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। बाद मौसम के, उत्तराखंड में मॉनसून पूर्ण रूप से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। नैनीताल और बागेश्वर जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भी कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों को लोगों को सतर्क रहने और यात्रा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरलम, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में मूसलाधार बारिश हो सकती है। दिल्ली में दिन में बादल छाये रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। राजधानी में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। भारत और जापान के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, भारत और जापान मिलकर बनाएंगे सैन्य साजो सामान, मोदी और तकाईची में शिखर वार्ता। अमर उजाला ने जापान के प्रधानमंत्री के संतूर पर हाथ आजमाने का चित्र दिया है। पत्र लिखता है, संतूर बजाकर चौंकाया, पीएम मोदी समेत कई लोग हैरान। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एआई से बने फर्जी फैसलों की कानूनी मिसालें देने पर सख्त रुख अपनाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने दिया है। दैनिक जागरण लिखता है, एआई से लिखे गए फर्जी फैसले जहरीली गैस जैसे, अदालत ने कहा फैसलों के प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। नीट जेईई में निर्णायक हो सकते हैं 12वीं के अंक, नीट पुनर्परीक्षा के नतीजे 20 जुलाई को, हिन्दुस्तान की सुर्खी है।

0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फिर राम मंदिर परिसर पहुंची एसआईटी, रडार पर हैं 100 लोग। ट्रस्टी से पूछताछ, नवभारत टाइम्स की खबर है। शेयर बाजार में निवेशकों पर 3 लाख करोड़ की बारिश, सेंसेक्स में 579 अंकों का उछाल, लोकसत्ता की खबर है। अमीर युवाओं की पसंद बदली, 40% से ज्यादा भारतीय छुट्टियां मनाने के लिए अब कोरिया, मिस्र, जापान, मालदीव जैसे नए देश जा रहे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रैवल इंश्योरेंस लेने वाले हर साल 10% बढ़ रहे। खामेनेई की अंतिम संस्कार यात्रा से पहले हवाई निगरानी हुई कड़ी, कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 करोड़ लोग जुड़ सकते हैं, राजस्थान पत्रिका की खबर है। कई समाचार पत्रों ने देश भर के कई राज्यों में हो रही बारिश का चित्र दिया है। देश बंधु की सुर्खी है, दिल्ली में मानसून ने दी दस्तक, लोगों को तेज धूप और गर्मी से मिली राहत, राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, राजस्थान और दिल्ली पहुंचा मानसून, 2 दिन अति बारिश का अलर्ट। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर भारत जापान के सभ्यतागत संबंध पर लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है भारत जापान रिश्तों में नई गर्मजोशी।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज जापानीज काउंटरपार्ट सनाए तकाईची स्ट्रांगली कंडेम टेररिज्म एंड वायलेंट एक्सट्रीमिज्म इन ऑल हिज फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस। Election Commission seeks responses from rival factions of Trinamool Congress regarding competing claims about party's organizational elections and authorized signatories. Annual Sri Amarnath Yatra begins from both Pehalgam and Baltal routes in Jammu and Kashmir. Iran's Supreme Leader Mojtaba Khamenei to skip father Ali Khamenei's funeral over security fears. Spain beat Austria 3-0 to enter round of 16 at FIFA World Cup. And BCCI announces schedule for India's 2-match test series against Sri Lanka to be played from the 15th to the 27th of next month. Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi have unequivocally and strongly condemned terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism from Pakistan. The 16th India-Japan Annual Summit joint statement said both leaders condemned in the strongest terms the terrorist attack in Pehalgam, Jammu and Kashmir on the 22nd of April last year. The leaders also took note of the United Nations Security Council monitoring team report of 29 July 2025 mentioning the resistance front. We have a report.
3: Prime Minister Narendra Modi and Japanese Prime Minister Sanae Takaichi also strongly condemned the terrorist attack in Delhi on November last year. The two leaders called for the perpetrators, organizers and financiers of the reprehensible act to be brought to justice without delay. They also called for concerted action against all UN-listed terrorist groups and entities including Al-Qaeda, ISIS, Lashkar-e-Tayyaba, Jaish-e-Mohammed and their proxies. The two Prime Ministers stressed the need for resolute action to eliminate terrorist safe havens, dismantle terrorist financing networks and their nexus with transnational crime and halt the cross-border movement of terrorists. Towards the shared goal of a resilient and prosperous Indo-Pacific, the two prime ministers reiterated their commitment to advancing cooperation among like-minded countries. They welcomed the steady progress under the Quad framework and reaffirmed their commitment to enhancing practical cooperation. Saklayan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
2: India and Japan have reaffirmed the shared commitment

0: In June alone, UPI processed transactions worth 28.9 lakh crore rupees, about 20% higher than a year earlier, while average daily volumes touched a record 757 million. Digital payments have become an integral part of everyday commerce, from roadside vendors to organized retailers. Yet, beneath this spectacular growth lies a structural concern. Just two players, PhonePe and Google Pay, account for around 80% of all UPI transactions. Crude declines, but government hints won't cut fuel rates, reports the Tribune. Monsoon finally arrives in Delhi, ending weeks of heat and humidity, states the Pioneer. Sirsa Kino earns GI tag, decade of scientific farming bears fruit, informs the Tribune. And finally, simple but effective, Citizen Kane is fueling England's World Cup dreams, writes in the Sun Times about England's football skipper, Harry Kane. And with that, it's back to you, Abhishek.
1: Thank you, Subhadra. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi strongly condemned terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations. Election Commission seeks responses from rival factions of Trinamool Congress regarding competing claims about parties' organizational elections and authorized signatories. Annual Sri Amarnath Yatra begins from both Pahalgam and Bal Tal routes in Jammu and Kashmir. Iran's Supreme Leader Mojtaba Khamenei to skip Father Ali Khamenei's funeral over security fears. Spain beat Austria 3-0 to enter round of 16 at the FIFA World Cup. And BCCI announced a schedule for India's two-match test series against Sri Lanka to be played from the 15th to the 27th of next month. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। आकाशवाणी इंदौर से लीजिए प्रस्तुत है कवि गोष्ठी।
3: आज आकाशवाणी इंदौर द्वारा कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें जो कविगण पधारे हैं उनमें सर्वश्री डॉक्टर सैयद सफदर रजा खंडवी खंडवा से पधारे हैं। दूसरे कवि हैं श्री सैयद अली ऋषि जो शाजापुर से तशरीफ लाए हैं। उज्जैन से पधारे हैं श्री रामनारायण ग्वाल और मैं राधा कृष्ण बावनिया भोज की नगरी धार से। तो मैं सर्वप्रथम इस कवि गोष्ठी का प्रारंभ श्री रामनारायण जी ग्वाल से निवेदन करता हूँ कि वे अपनी रचनाओं से हमें अनुग्रहित करें।
4: दो छंद जो है आपको जो है सुनाता हूँ। महकते रहना सुमन तुम,
3: वाह
4: सुर भी सौरभ से डुलाए शाश्वत धरती गगन तुम,
3: वाह
4: धधकती जीवन शिखा पर महकते रहना सुमन तुम,
3: वाह क्या बात।
4: तीक्ष्ण कितनी उष्ण कितनी पी गए फिर भी किरण तुम, लहकती चिंगारियां हैं मंजुला कहते तपन तुम, करते रहो निर्माण सूरज के लिए सूरजमुखी, प्रदूषण के मधुर संदूषण मई पर्यावरण तुम, कौन कहता है विमन तुम, कौन कहता है विमन तुम, सुरभि सौरभ से महकाए शाश्वत धरती गगन तुम, धधकती जीवन शिखा पर महकते रहना सुमन तुम। एक छंद और
3: स्वागत।
4: गम में क्या वह पथ नहीं हो विघ्न या संघर्ष जिसमें, वह सुमन ही क्या वंकिलों के न हो संसर्ग जिसमें, लक्ष्य के संकल्प को साकार करने की डगर पर अनवरत रहना कहीं तुम, वज्र गिरते देख मुझ पर तज न देना संग हो टूटे हुए मन की लगन तुम,
3: क्या
4: सुरभि सौरभ से लुलाए शाश्वत धरती गगन तुम,
3: क्या बात
4: धधकती जीवन शिखा पर महकते रहना सुमन।
3: बहुत अच्छा।
4: कुछ सफलता की भी चर्चाएं होती है, कुछ चर्चा के बतौर चार चार लाइनें सुनाता हूँ। चलो ना आंधियों के घर तुम भी आज मेरा न्योता है,
3: क्या बात
4: इन उजालों के अंधकारों में प्रिय लगाना गोता है, दूरदृष्टि कड़ी मेहनत को वक्रताओं में जोता है, स्वयं ही को जोतने से समस्याओं का हल होता है, लोकतंत्र के सिपाही को लोकतंत्र में बटना होगा,
3: क्या बात है
4: लोकतंत्र के सिपाही को लोकतंत्र में बटना होगा, कान्हा को सिंहासन छोड़ सुदामा कुटी बसना होगा, ग्वाल बालों के स्वरूप लली गोपाल तो बनना होगा, वो वासु और देव की तक स्वतंत्रता को पहुंचना होगा, ताने बाने शब्द ब्रह्म सुनकर जुलाहा होना होगा,

0: चरखा चलाना होगा, तकलीफे सूत कातना होगा, पादुका रख ग्राम वासिनी भारत माता जाना होगा, और सिंहासन बत्तीसी टिबड्डे पर न्याय को बांटना होगा। यदि मुल्तान नहीं गया होगा पानी तो मिल जाएगा, कबीर को क्या मालूम था चूक जाएगा पछताएगा। लघु में दीर्घ मात्रा लगाने से गुरु नहीं हो जाता है, अनुभूति अभिव्यक्ति में जुड़ाव का गणित बिगड़ जाता है।
1: क्या बात है,
0: राजा तो जन कल्याण भर के लिए यह सब करता है, सफलता असफलता संचालकों के हाथ की निर्भरता है।
1: क्या बात,
0: कभी कभी भरोसे की भैंस पाड़ा भी दे जाती
1: है। वाह क्या बात,
0: अच्छे अच्छों की हवाएं तो क्या जमीन खिसक जाती है।
1: वाह बहुत सुंदर।
0: माता कृष्णावतरण हो गया है यह आकाशवाणी है, माता कृष्णावतरण हो गया है यह आकाशवाणी है, अव्यक्ति स्वतंत्र शिक्षों में जकड़ना बड़ा कठिन है।
1: वाह क्या,
0: मुस्कुरा के बात करो, करो जो बात तो तुम मुस्कुरा के बात करो।
1: वाह क्या,
0: तो तुम मुस्कुरा के बात करो, सारी सारी रात करो, रात भर बात करो।
1: वाह क्या बात,
2: वाह वाह वाह।
0: चकोर चंदा में जिस तरह बात होती है, चकोर चंदा में जिस तरह बात होती है, फूल में भंवरे में जिस तरह रात होती है, हाथ की ओर कम से कम तो प्रिय हाथ करो।
1: वाह क्या बात,
2: क्या बात है,
0: मैं कहां कह रहा हूं मेरे साथ साथ करो, अपनी आंखें अपनी पलकों के साथ साथ करो। बैठे चुप चुप न रहो, कुछ तो उत्पात करो।
1: क्या बात,
0: उत्पात करो, बैठे चुप चुप न रहो, कुछ तो उत्पात करो, अरे करो जो बात तो तुम मुस्कुरा के बात करो,
1: करो।
0: भड़क रही वो घटाओं से तो बरसात करो। कैसे बरसात करो, होनी अनहोनी हृदय में होती रहती है, होनी अनहोनी हृदय में होती रहती है, चाहे चुप चुप सही कुछ न कुछ तो होती है ना, होनी अनहोनी हृदय में होती रहती है, चाहे चुप चुप सही कुछ न कुछ तो होती है, भड़क रही हो घटाओं से तो बरसात करो, करो जो बात तो तुम मुस्कुरा के बात करो।
3: श्री सैयद अली जी ऋषि साजापुर से वे आए,
4: देश के प्रगतिशील पर्यावरण पर पंक्तियां प्रस्तुत है, विकास करो की पुकार है देश में, राग जय जयवंती झंकार है देश में, समुद्र मंथन का उपचार है देश में, अमृत कलशों का उभार
2: है, क्या बात है,
4: अमृत कलशों का उभार है देश में, विकास करो की पुकार है देश में,
2: क्या बात,
4: राग जय जयवंती झंकार है देश में,
2: क्या बात,
4: समुद्र मंथन का उपचार है देश में, अमृत कलशों का उभार है देश में, अमृत कलशों का उभार है देश में।
2: बहुत खूब, बहुत
4: दूसरी मुक्तक है, मेरा देश अब तो बदल रहा है आहिस्ता आहिस्ता,
2: मेरा देश अब तो बदल रहा है,
4: बदल रहा है आहिस्ता आहिस्ता, चांदी पे सोने का झोल चल रहा है आहिस्ता आहिस्ता।
2: क्या बात है, क्या बात,
4: आने की स्वर्ण चिड़िया हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, सवा अरब जन का अभिषेक हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता।
2: क्या बहुत खूब, बहुत खूब,
4: अब तो बदल रहा है आहिस्ता आहिस्ता,
2: फिर इनायत कीजिए से,
4: मेरा देश अब तो बदल रहा है आहिस्ता आहिस्ता, चांदी पे सोने का झोल चल रहा है आहिस्ता,
2: क्या बात है, क्या बात,
4: आने की स्वर्ण चिड़िया हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, सवा अरब जन का अभिषेक हो रहा आहिस्ता आहिस्ता। तीसरा मुक्तक है, ब्रह्मवाणी आत्माओं में राष्ट्रभक्ति के दीप जला रही,
2: क्या बात है,
4: आत्माओं में राष्ट्रभक्ति के दीप का दीप जला रही, चेतनाओं में चिंगारियों का उजाला फैला रही,
2: क्या बात, चेतनाओं में बहुत अच्छे, बहुत अच्छे
4: फैला रही, सवा अरब जन में जागृति की मशाल धक्का रही, सवा अरब जन में जागृति की मशाल धक्का रही, तिरंगे की उस देह कुटुम्बकम चेतना विश्व में फैला रही। चौथा है, अल्लाह अकबर वाहे गुरु वंदे मातरम, देश बाहे निज गुंजे कुशल क्षेम सरगम,
2: क्या बात है, क्या बात,
4: अल्लाह अकबर वाहे गुरु वंदे मातरम, देश बाहे निज गुंजे कुशल क्षेम सरगम, जियो और सभी को जीने दो कि यहाँ है शब्द जमीन पे ऐसा हसी देश कहीं नहीं खुदा की कसम,
2: बहुत खूब, बहुत खूब,
4: ऐसा देश नहीं कहीं नहीं खुदा की कसम,
2: बहुत
4: हिंदी राष्ट्रभाषा मेरे प्राणों की है जिम्मेदारियाँ।
2: क्या हिंदी राष्ट्रभाषा?
4: मेरे प्राणों की है जिम्मेदारियाँ।
2: हाँ।
4: मेरी अंतरात्मा की ये तो है फुलवारियाँ।
2: वाह वाह वाह वाह।
4: अंतरात्मा की ये तो है फुलवारियाँ, निगाहों में हिमालय, हृदय में गंगा बहे।
1: क्या बात,
4: निगाहों में हिमालय, हृदय में गंगा बहे। विविध संस्कृतियों का वजूद में है दीप ज्योतियाँ। विविध संस्कृतियों की वजूद है दीप ज्योतियाँ।
2: क्या बात है, क्या बात
4: बार कहेंगे, 1000 बार उद्घोष करेंगे हम, नव उत्थान की नव भगवत गीता रचेंगे हम।
2: क्या बात है, क्या ख्याल, बहुत
4: अच्छे स्पंदन समाविष्ट होंगे,
2: बहुत अच्छे।
4: सवा अरब के स्पंदन समाविष्ट होंगे, विश्व में सत्य में आस्था से उत्कृष्ट होंगे। विराट विकासों का सूर्य अब उदय, अब
2: क्या बात है, क्या बात,
4: शहीदों के बलिदानों का।
2: बहुत खूब, बहुत अच्छे सुना रहे हैं रचनाएं आप।
4: अगले कलम नहीं रुक पाएगी,
2: स्वागत,
4: कलम नहीं रुक पाएगी जब तक मानव की अंतर व्यथा सौरभ ना हो जाए।
2: क्या बात है, क्या बात है,
4: मानव की अंतर व्यथा सौरभ ना हो जाए, वसुंधरा का जीवन जब तक गौरव ना हो जाए।
2: बहुत खूब, बहुत खूब।
4: हताश हृदयों में जब तक हौसला आकाश ना हो जाए।
2: क्या बात,
4: हताश हृदयों में जब तक हौसला आकाश ना हो जाए, जब तक उत्तुंग हिमालय ऐसा विश्वास ना हो जाए।
2: बहुत खूब,
4: उत्तुंग हिमालय ऐसा विश्वास ना हो जाए।
2: क्या बात है, क्या बात,
4: तुमल निनाद में रंभाती हुई आत्मा गाएगी, तुमल निनाद में रंभाती हुई आत्मा गाएगी, कलम नहीं रुक पाएगी, कलम नहीं रुक पाएगी।
2: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या बात।
4: संघर्षशील मानवता स्वाभिमानी है, जब तक संघर्षशील मानवता स्वाभिमानी है, जब तक मर्यादित मंदाकिनी में लहरें हैं पानी है,
2: क्या बात,
4: जब तक साधना आराधना अभ्यर्थना ज्ञानी है, अंतः प्राणों में उत्कर्षित उल्लास लासानी है, रेशमी रश्मियां प्रशस्त होकर झिलमिलाएंगी,
1: क्या बात है,
4: कलम नहीं रुक पाएगी।
2: क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। एक तरन्नम से सुना दीजिए, अगर तरन्नम से सुना तो क्या बात है।
4: जब तक संघर्षशील मानवता स्वाभिमानी है, जब तक मर्यादित मंदाकिनी में लहरें पानी है, जब तक साधना आराधना अभ्यर्थना ज्ञानी है, अंत प्राणों में उत्कर्षित उल्लास लसानी है, रेशमी रश्मियां प्रशस्त होके झिलमिलाएंगी, झिलमिलाएंगी,
2: बहुत अच्छे,
4: झिलमिलाएंगी।
2: क्या बात है,
4: कलम नहीं रुक पाएगी, कलम नहीं रुक पाएगी। जब तक बिलकती शिल्प कामना शतदल ना हो जाए, जब तक बिलकती शिल्प कामना शतदल ना हो जाए, सृजनकार की अविरल रचना ताजमहल ना हो जाए।
2: बहुत खूब, बहुत खूब।
4: जब सृजनकार की अविकल रचना ताजमहल ना हो जाए, जब तक चेतना की चुनौतियां सरल तरल ना हो जाए, जब तक चेतना की चुनौतियां सरल तरल ना हो जाए, लोचनों का कुनकुना नीर गंगा जल ना हो जाए।
2: बहुत खूब, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा।
4: नीर गंगा
2: जल ना हो जाए,
4: तर्षित प्राणों की चिरपोषित सृजनाएं भाएंगी।
2: बहुत अच्छे,
4: प्राणों की चिरपोषित सृजना भाएंगी, कलम नहीं रुक पाएगी,
2: कलम नहीं रुक पाएगी। वाह वाह वाह।
4: बिलकती कल्प कामना सृजदल ना हो जाए, सृजनकार की अविकल रचना ताजमहल ना हो जाए,
2: ताजमहल ना हो जाए। क्या बात,
4: चुनौतियाँ सरल तरल ना हो जाए, लोचनों का कुनकुना नीर गंगा जल ना हो जाए।
2: क्या बात है, क्या बात है, क्या
4: की चिरपोषित सृजना भाएगी, कलम नहीं रुक पाएगी, कलम नहीं रुक पाएगी। जिजीविषा जय करने को सो सो जन्म लेंगे, जिजीविषा जय करने को सो सो जन्म लेंगे, पूर्णता श्रोधार्य करने को शत शत संकल्प लेंगे, पूर्णता श्रोधार्य करने को शत शत संकल्प लेंगे, बंधनों की श्रृंखलाएं पिघलाने का अनुबंध लेंगे, बंधनों की श्रृंखलाएं पिघलाने का अनुबंध लेंगे, आस्था निष्ठा श्रद्धा के पोषण की सुगंध लेंगे, आत्मीयता की विराटतम छाया बन गाएगी, बन जाएगी आत्मीयता की विराटतम छाया बन जाएगी, कलम नहीं रुक पाएगी।
2: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे,
4: कलम नहीं रुक पाएगी, कलम।
2: अभी आपके सामने ये रचनाएं श्री ऋषि शाजापुरी प्रस्तुत कर रहे थे, बहुत ही सुंदर रचनाएं प्रस्तुत की गई। अब मैं रचना पाठ के लिए श्री राधा कृष्ण मावनिया जी जो धार से तशरीफ लाए हैं, जो हिंदी के सशक्त हस्ताक्षर हैं और उनकी रचनाएं खुद उनका परिचय हैं, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि वे अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें।
3: आज की जो है समस्याएं और क्या क्या योजनाएं केंद्र शासन ने निकाली है और हम कहां तक उसको क्रियान्वित कर रहे हैं, ये इस संदर्भ में रचना कर रहा हूं।
2: स्वागत है
3: कि सबको ये समझाना है,
2: सबको ये समझाना है,
3: देश के कोने कोने में ये संदेश पहुंचाना है कि लेन देन अब नगद न करना, कैश लेस अपनाना है।
2: वाह वाह वाह, बहुत खूब, सबको ये समझाना है। फिर से नायत कीजिए, फिर दोहराइए
3: कि देश के कोने कोने में ये संदेश पहुंचाना है कि लेन देन अब नगद न करना, कैश लेस अपनाना है, ऐसी सोच बनाना है, सबको ये समझाना है।
2: बहुत
3: गाँव गाँव और नगर नगर, गांव गांव
2: और नगर नगर,
3: सबको स्वच्छ बनाना है,
2: गांव गांव और नगर नगर,
3: नगर नगर
2: सबको स्वच्छ बनाना है,
3: और सोच खुले में न करना, शौचालय बनवाना है।
2: हाँ हाँ हाँ, क्या बात, बहुत अच्छा विषय लिया,
3: शौचालय बनवाना है, ऐसा कर दिखलाना है, सबको ये समझाना है,
2: बहुत
3: ये समझाना है, गांव से नगरों को जोड़े ऐसी सड़क बनाना है।
2: हाँ हाँ हाँ, गांव से नगरों को जोड़े
3: ऐसी
2: सड़क बनाना है,
3: बिजली से घर में उजियारा जतन ऐसी करना है।
2: वाह वाह,
3: बिजली से घर हो उजियारे जतन ऐसे करना है, जन जन को समझाना है।
2: बहुत
3: अच्छा,
2: ये पंक्तियां तो पुनः सुनाए
3: कि गांव में गांव से नगरों को जोड़े ऐसी सड़क बनाना है।
2: हाँ,
3: गांव से
2: नगरों को
3: जोड़े ऐसी सड़क बनाना है, और बिजली से घर हो जियारे जतन ऐसे करना है कि जन जन सब खुशहाल हो, सबको ये समझाना है।
2: बहुत खूब, बहुत
3: कि देश के कोने कोने में ये संदेश पहुंचाना है कि भ्रम से दूर रहो तुम भाई, भ्रम से
2: दूर रहो
3: तुम भाई, जी जीएसटी अपनाना है,
2: जीएसटी अपनाना है, क्या बात है, क्या बात है,
3: दूर रहो तुम भाई, जीएसटी अपनाना है, और देश हित में काम करो, मिलजुल करके करना है।
2: बहुत खूब, बहुत
3: भ्रम से दूर रहो तुम भाई, जीएसटी अपनाना है, और देश हित में काम सभी अब मिलजुल करके करना है, विकसित करना देश हमारा, ये सबको समझाना है, देश के कोने कोने में ये संदेश पहुंचाना है।
2: बहुत खूब,
3: नारी से जक्की नैया तैर रही है भाई,
2: नर नारी से
3: जक्की नैया तैर रही है भाई, और बेटा बेटी के अंतर की पाटो अब तुम साई, नर नारी से जक्की नैया तैर रही है भाई, और बेटा बेटी के अंतर को पाटो अब तुम खाई, सुख का सार यही है भैया, सबको ये समझाना है, देश के कोने कोने में ये संदेश पहुंचाना है।
2: बहुत उम्दा रचना है, बहुत
3: धुआं नहीं हो अब घर घर में,
2: धुआं नहीं हो अब घर घर में,
3: धुआं नहीं हो अब घर घर में, योजना उज्ज्वला आई है।
2: हाँ, क्या योजना का अपने अच्छा चित्रण किया है,
3: नहीं हो अब घर घर में उज्ज्वला, योजना उज्ज्वला आई है, और हर गृहिणी के मन को कितनी ये सुविधा भाई।
2: फिर पढ़िए से, फिर पढ़िए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या बात है,
3: धुआं नहीं हो अब घर घर में, योजना उज्ज्वला आई है, और हर गृहिणी के मन को कितनी ये सुविधाएं भाई है।
2: बहुत खूब, बहुत
3: वन होंगे अब सभी सुरक्षित, जंगल नहीं कटेंगे,
2: वन होंगे,
3: वन होंगे अब सभी सुरक्षित, सबको ये समझाना है, और देश के कोने कोने में ये संदेश पहुंचाना। अंतिम छंद है,
4: स्वागत है,
3: कि अनपढ़ रहे न देश में कोई,
2: अनपढ़ रहे न देश में कोई,
3: कोई देश में कोई, साक्षर सभी बनाना है,
2: अनपढ़ रहे न देश में कोई,
3: न देश में कोई,
2: साक्षर सभी बनाना है,
3: और प्रगति देश की होगी भैया, क्रांति बहुत दिखलाना है, कि पढ़ी लिखी हो सब माँ बहने,
2: पढ़ी लिखी हो सब माँ
3: बहने, सबको ये समझाना है, और देश के कोने कोने में ये संदेश पहुंचाना।
2: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर।
3: आज की ज्वलंत समस्या है, मनुष्य का मन कैसा हो रहा है,
2: क्या बात, स्वागत है, स्वागत है,
3: क्या बताएं, सब दूर जिधर देखो अविश्वास की भावना बढ़ रही है।
2: स्वागत है, स्वागत है,
3: क्या बताएं, कौन कहां हम ठहरे हैं, डगडग पर ठगों के डेरे,
2: डगडग पर ठगों के डेरे,
3: डगडग पर ठगों के डेरे, बताएं कौन कहां हम ठहरे, कि न्याय तुला पर सच को तोले,
2: न्याय तुला पर सच को तोले
3: और झूठे की कोई पोल न कही।
2: बहुत अच्छी।
3: न्याय तुला पर सबको तोले, झूठ की कोई पोल न खोले,

0: नियति की हम क्या जाने,
1: नियत नियति की हम क्या जाने, क्या बात है, क्या सर, वाह वाह वाह वाह
0: वाह, परम सत्य को कुछ तो माने,
1: परम सत्य को कुछ तो माने, क्या बात,
0: नियति की हम क्या जाने, परम सत्य को कुछ तो माने, भरोसा ब्रह्म में न भी ही बिसरे, पता है कौन कहां हम ठहरे, कि देश प्रगति की बातें जो करते,
1: देश प्रगति की बातें जो
0: करते, स्वयं अपने ही घर में भरते,
1: क्या बात है,
0: देश प्रगति की बातें,
1: अच्छा व्यंग है, अच्छा व्यंग है,
0: स्वयं अपने ही घर में भरते, कौन रखेगा इनको नीरे, पास कौन रखेगा इनको, कौन रखेगा इनको नीरे, बताएं कौन कहां हम ठहरे, के राग द्वेष करते रंगरेली,
1: राग द्वेष करते रंगरेली,
0: और पीड़ा किसने कितनी झेली,
1: और पीड़ा किसने कितनी झेली,
0: राग द्वेष करते रंगरेली, पीड़ा किसने कितनी झेली, पीर सुनते हो गए बहरे, किसी की पीड़ा सुनने गया डालते,
1: बहुत खूब,
0: के पीर सुनते हो गए बहरे, बताएं कौन कहां हम ठहरे,
1: बहुत अच्छे,
0: के देश हित जो फांसी पर झूले,
1: देश हित जो फांसी पर झूले,
0: देश हित जो फांसी पर झूले, उनको कैसे हम फिर भूलें,
1: बहुत खूब बहुत खूब, क्या बात है,
0: जो फांसी पर झूले उनको कैसे हम फिर भूलें, बलिदानी उतरे मन गहरे, बताएं कौन कहां हम ठहरे,
1: बहुत अच्छे,
0: कि देश हित जो फांसी पर झूले उनको कैसे हम फिर भूलें, बुनियादी बलिदानी उतरे मन गहरे, बताएं कौन कहां हम ठहरे,
1: वाह वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, स्वागत,
0: विश्वास सदा हम किन पर कर लें, विश्वास सदा हम किन पर कर लें, छलियों की क्या को क्या सिर पर धर लें, विश्वास सदा हम किन पर कर लें, छलियों को क्या सिर पर धर लें, शीतल कैसा होगा कल रे,
1: शीतल कैसा,
0: सदा हम किन पर कर लें, छलियों को क्या सिर पर धर लें, शीतल कैसा होगा कल रे, बताएं कौन कहां हम ठहरे, बताएं कौन कहां हम ठहरे, एक गीत है
1: सुनाइए, आप गीत प्रस्तुत कीजिए,
0: मन के भाव न बदले, बदल गई है, बदल गई जीवन की धारा, सुर सबके हैं बदले, बदल गई जीवन की धारा, सुर सबके हैं बदले, प्रीतम की वेश मनहारे, बदल गई है पगले, बदल गई है पगले, मन के भाव न बदले, और परिधानों में परिवर्तन पर विचार नहीं है बदले, परिधानों में परिवर्तन पर विचार नहीं है सुलझे, और परिपाटी से हम न उभरे, रहे उसी में उलझे, रीति रिवाज बदलते देखे, रीति रिवाज बदलते देखे, व्यवहार सभी है बदले, मन के भाव न बदले, बदल गई जीवन की धारा, सुर सबके हैं बदले, के झूठों से बाजार सजा है, झूठों से बाजार सजा है, सत्य निराधर होता है, झूठों से बाजार सजा है, सत्य निराधर होता है, और नैतिकता आप शिक्षक रही है, विश्वास बहुत है रोता, झूठों से बाजार सजाया, सत्य निरादर होता, और नैतिकता आप शिक्षक रही है, विश्वास बहुत है रोता, अपनापन रह गया दीपक दिखावा, अपनापन रह गया दिखावा, मूल्य आचरण बदले, मन के भाव न बदले, बदल गई जीवन की धारा, सुर सबके हैं बदले, प्रीतम की सब मन हारे, बदल गई है पगले, बदल गई है पगले, अब मैं खंडवा से पधारे डॉक्टर सैयद सफदर रजा खंडवी को आमंत्रित करता हूँ, भी अब अपनी रचनाओं से इस काव्य गोष्ठी को नई ऊंचाई दे, रजा खंडवी साहब,
1: मैं अब आपके सामने पर्यावरण के परिवेश में चार चार पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूँ,
0: स्वागत है,
1: ध्यान चाहूंगा, देखिए कि तपते सहरा में ये दौराने सफर काफी है, तपते सहरा में ये दौराने सफर काफी है, सर छुपाने को जो मिल जाए शजर काफी,
0: क्या बात,
1: तपते सहरा में ये दौराने सफर काफी है, सर छुपाने को जो मिल जाए शजर
2: काफी है,
1: शेर देखें उसमें पंक्तियां देखें कि शाहराहों में कोई शहर की कब तक भटके, शाहराहों में कोई शहर की कब तक भटके, अरे गांव पहुंचा दे वही राह गुजर काफी,
0: क्या बात, बहुत सुंदर,
1: गांव पहुंचा दे वही राह गुजर काफी है, तपते सहरा में ये दौराने सफर काफी है, सर छुपाने को जो मिल जाए शजर काफी,
0: वाह क्या बात,
1: चार पंक्तियां।

0: और देखें
1: स्वागत है।
0: कि खुद से मिलने के लिए मैंने जो कोशिश की है,
1: क्या बात,
2: वाह, खुद से मिलने की जो मैंने कोशिश,
0: खुद से मिलने के लिए मैंने जो कोशिश की है, मुझको मिलने ना दिया वक्त ने साजिश की है।
1: क्या बात है,
0: मुझको मिलने ना दिया वक्त ने साजिश की है। अब पर्यावरण के परिवेश में देखिए तो पंक्तियाँ, कि खुद को मिलने के लिए, खुद से मिलने के लिए मैंने जो कोशिश की है मुझको मिलने ना दिया वक्त ने साजिश की है, और दो घड़ी बैठ गया छांव घनेरी पाकर।
1: क्या बात,
0: दो घड़ी बैठ गया छांव घनेरी पाकर, पेड़ के पत्तों ने मुझ पर ये नवाजिश की,
1: वाह वाह क्या बात,
0: पेड़ के पत्तों ने मुझ पर ये नवाजिश की है। और देखें चार पंक्तियां,
1: स्वागत स्वागत,
0: कि नेजा नेजा धूप उगी है घुटने घुटने छांव,
1: वाह
0: नेजा नेजा धूप उगी है घुटने घुटने छांव, वो मंजर मंजर हम भागे हैं सर पर लेकर पांव,
1: वाह वाह क्या बात है,
0: मंजर मंजर हम भागे हैं सर पर लेकर पांव, और पनघट पगडंडी और शीतल अमराई की छांव,
2: फिर से पढ़िए,
0: पनघट पगडंडी और शीतल अमराई की छांव, अरे चाट गए शहरों के दीमक, चाट गई शहरों की दीमक सीधे सादे गांव,
1: वाह क्या बात है,
0: चाट गई शहरों की दीमक सीधे सादे गांव।
2: फिर से
1: ठहरना,
0: हक बात ये है, तवज्जो चाहूंगा, हक बात ये है और इस पे हमारा यकीन है, हक बात ये है इस पे हमारा यकीन है, कि फूलों का दिल भी कांटों से ज्यादा महीन है,
1: क्या बात है, क्या बात,
0: फूलों का दिल भी कांटों से ज्यादा महीन है, और शाखों के सूख जाने का सदमा नहीं मगर,
1: वाह क्या बात,
0: शाखों के सूख जाने का सदमा नहीं मगर अब भी जड़ों में ताजगी जेरे जमीन है, अब भी जड़ों में ताजगी जेरे जमीन है। और चाहूंगा इस पर
1: ईशान,
0: कि जब सदगुरु लिख या रहीम और राम लिख, जैसे श्री जी ने भी एक मुक्तक सुनाया था उसी परिवेश में, और देखिए एकता के परिवेश में, कि सदगुरु लिख या रहीम और राम लिख, एक है उसके हजारों नाम लिख, सदगुरु लिख या रहीम और राम लिख, एक है उसके हजारों नाम लिख, और जब नजर आए तुझे जंगल कटे, जब नजर आए तुझे जंगल कटे उनकी बर्बादी को कत्ले आम लिख,
1: क्या बात,
0: जब नजर आए तुझे जंगल कटे उनकी बर्बादी को कत्ले आम लिख। एक गजल के तरनुम के साथ चंद शेर समाप्त फरमाए, कि इल्तिफाते गिरान लूट लिया,

0: लिया।
1: क्या बात है,
0: शेर देखें, कुछ नशे मन पे बिजलियों का करम, कुछ नशे मन पे बिजलियों का करम, और कुछ बागबा ने लूट ली। आखिरी शेर समाज फरमाए कि उनके माथे पे शबनमी बूंदें,

0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: इस गोष्ठी में जिन कवियों को आप सुन रहे थे उनमें सर्वश्री डॉक्टर सैयद सफदर रजा खंडवी खंडवा से पधारे, श्री सैयद अली ऋषि शाजापुर से और राम नारायण जी कुआल उज्जैन से पधारे और मैं राधाकृष्ण बावनिया धार से भोज की नदी धार से आया। इसी के साथ ये कवि गोष्ठी

0: संपन्न होती है। धन्यवाद।
1: बहुत अच्छे।
2: अभी सुन रहे थे आप कवि गोष्ठी। प्रतिभागी थे कवि राधा कृष्ण बामनिया, राम नारायण कुवाल, सईद ली ऋषि, सईद सफदर रजा खंडवी। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, अब एक सूचना सुनिए। साइबर क्राइम के बढ़ते खतरे और जन जागरूकता के लिए विविध भारती इंदौर FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ आपके लिए लेकर आया है इस शुक्रवार दिनांक 3 जुलाई 2026 यानी कि आज सुबह 11:32 से 12 बजे तक सजीव फोन इन कार्यक्रम साइबर क्राइम रहे सावधान। ये कार्यक्रम शुक्रवार दिनांक 3 जुलाई 2026 को सुबह 11:32 से 12 बजे तक FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ विविध भारती चैनल पर प्रसारित हो रहा है। इस सजीव फोन इन कार्यक्रम के विशेषज्ञ होंगे DSP नरेंद्र सिंह रघुवंशी, स्टेट साइबर सेल इंदौर। श्रोता साइबर अपराधों से जुड़ी अपनी जिज्ञासाओं का समाधान सीधे प्राप्त कर सकेंगे। हमारे फोन नंबर है 2710223 और 2710224। फोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 2710223 और 2710224। इंदौर का स्टडी कोड है 0731 यानी 0731। तो प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट करें। शुक्रवार दिनांक 3 जुलाई 2026 यानी कि आज समय रहेगा सुबह 11:32 से 12 बजे तक। विविध भारती चैनल पर आप सुन सकते हैं फ़ोन करके साइबर क्राइम रोकने के लिए सावधानियां, और विशेषज्ञ होंगे DSP नरेंद्र सिंह रघुवंशी, स्टेट साइबर सेल इंदौर। तो फ़ोन करना ना भूले हमारे नंबरों पर और सुनिए विविध भारती FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हमारा कार्यक्रम साइबर क्राइम रहे सावधान। साथ ही ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी। सूचना समाप्त हुई और अब सुबह के 9 बज चुके हैं। समय है लोक गीतों के कार्यक्रम लोक संगीत का। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अरुण कुमार गोयल के गाए कुछ मालवी लोकगीत।

लोकगीत अभी आप सुन रहे थे अरुण कुमार गोयल की आवाज़ में। आज लोक संगीत के कार्यक्रम में आपको हम सुनवा रहे हैं अरुण कुमार गोयल के गाए कुछ मालवी लोकगीत। लीजिए प्रस्तुत है इन्हीं के स्वर में एक और रचना।

ये मालवी लोकगीत अभी सुन रहे थे आप अरुण कुमार गोयल की आवाज़ में। लोक संगीत में आज हम सुनवा रहे हैं इन्हीं के स्वर में गाए कुछ मालवी लोकगीत। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का अगला व अंतिम लोकगीत अरुण कुमार गोयल के स्वर में।

ये मालवी लोकगीत सुना अभी आपने अरुण कुमार गोयल और साथियों के स्वर में, और इसी के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे थे अरुण कुमार गोयल के गाए कुछ मालवी लोकगीत। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। अब समय हो चला है सुगम संगीत का, जिसमें आज हम लेकर आए हैं हेमा सरदेसाई की गाई कुछ गैर फिल्मी रचनाएँ।

ये गैर फिल्मी गीत अभी सुन रहे थे आप हेमा सरदेसाई के स्वर में। इन्हीं के स्वर में कुछ और गीत सुनवाएंगे आपको सुगम संगीत के कार्यक्रम में।

ये गैर फिल्मी गीत अभी आप सुन रहे थे हेमा सरदेसाई के स्वर में, और सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं इन्हीं के गाए कुछ गैर फिल्मी गीत। लीजिए, प्रस्तुत है इन्हीं की आवाज़ में एक और रचना।

हेमा सरदेसाई के स्वर में सुन रहे थे अभी आप ये गीत। और सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे थे हेमा सरदेसाई की आवाज़ में गाई कुछ गैर फिल्मी रचनाएं। इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत, जिसमें आज हम लाए हैं आपके लिए पूर्वी निमगांवकर का उपशास्त्रीय गायन। तबला पर संगत दे रहे हैं मोहित शाक्य, हारमोनियम पर साथ है रचना शर्मा।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पूर्वी निम गांवकर का उपशास्त्रीय गायन। तबला पर संगत दे रहे थे मोहित शाक्य, हारमोनियम पर साथी रचना शर्मा। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है, जिले की चिट्ठी कुछ ही देर में
1: केंद्र है, थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी है, लीजिए प्रस्तुत है भोपाल जिले की चिट्ठी।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है भोपाल जिले की चिट्ठी। आलेख ताहिर खान, वाचन स्वर दीपा सिंह। प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। भोपाल जिले में कल झमाझम बारिश हुई, इसके साथ ही मौसम खुशनुमा होने से शहरवासी खुश नजर आए। आपको बता दें कि इस बार मॉनसून ने 24 जून को प्रदेश में प्रवेश किया था। इसके बाद करीब 9 दिन में पूरे मध्य प्रदेश में मॉनसून फैल गया। हालांकि इसकी एंट्री सामान्य समय से करीब 9 दिन देरी से हुई है। देरी की वजह से किसान समय पर फसल की बुआई नहीं कर पाए। हालांकि अब निरंतर बारिश होने के चलते किसान फसल की बुआई में लग गए हैं। मॉनसून की दस्तक के साथ ही नगर निगम एक बार फिर जर्जर भवनों को लेकर सक्रिय हो गया है। हर साल की तरह इस बार भी भवन मालिकों और सरकारी विभागों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। नगर निगम के सर्वे के मुताबिक भोपाल में 3,435 भवन जर्जर हैं। इनमें 2,464 सरकारी और 971 निजी भवन शामिल हैं। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि 740 सरकारी और 17 निजी भवन अति जर्जर श्रेणी में हैं। पश्चिम मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा सुविधा और बढ़ती यात्रा मांग को देखते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। रेलवे प्रशासन ने रानी कमलापति अगरतला स्पेशल ट्रेन में LHB कोच लगाने का निर्णय लिया है। भोपाल के रानी कमलापति से ये ट्रेन 9 जुलाई और अगरतला से 12 जुलाई से LHB रैक के साथ चलेगी। वहीं 23 जुलाई और 26 जुलाई से संशोधित LHB कोच संरचना लागू होगी। इसके अलावा इंदौर जबलपुर ओवरनाइट एक्सप्रेस का सीहोर स्टेशन पर प्रायोगिक ठहराव देने और पुणे दानापुर दैनिक स्पेशल ट्रेन की संचालन अवधि 30 सितम्बर तक बढ़ाने का निर्णय भी लिया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रदेश की विभिन्न बाल विकास परियोजनाओं में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के 2,548 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। भर्ती का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के साथ साथ जमीनी स्तर पर पोषण और बाल विकास सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाना है। भर्ती के तहत 781 पद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और 1,767 पद आंगनवाड़ी सहायिका के लिए निर्धारित किए गए हैं। डॉक्टर्स डे के अवसर पर भोपाल के गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में चिकित्सकों के सम्मान और मानसिक स्वास्थ्य समर्पित विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व डीन डॉक्टर भानु दुबे रहे। शुभारंभ डॉक्टर तृप्ति सक्सेना के स्वागत उद्बोधन सर्वधर्म प्रार्थना और दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। सत्र को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही है। 5 दिवसीय मॉनसून सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक सदन के पटल पर रख सकती है। विभिन्न विभागों द्वारा तैयार किए गए प्रस्तावों की सूची के अनुसार करीब 11 अहम विधेयकों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। भोपाल की आरसी वीपी नरोना प्रशासन और प्रबंधकीय अकादमी में विगत रविवार को आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने पल्स पोलियो अभियान, सुमन पंचायत कार्यक्रम की शुरुआत की और स्टेट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट 2.0 पॉलिसी का अनावरण किया। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत बीते रविवार को भोपाल में 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। भोपाल जिले में करीब 3.32 लाख बच्चों को पोलियो रोधी खुराक देने का लक्ष्य रखा गया था। भोपाल के रविन्द्र भवन में बीते दिनों अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस 2026 के अवसर पर आयोजित समिट में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के उद्योग, निवेश और युवाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने ऐलान किया कि वर्ष 2027 को मध्य प्रदेश में युवा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। साथ ही जनवरी 2027 में भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आयोजित की जाएगी। भोपाल में मुहर्रम पर्व अकीदत के साथ मनाया गया। इस अवसर पर निकले मातमी जुलूसों में जहाँ करबला की शहादत को याद किया गया, फतेहगढ़ इमामी गेट, हमीदिया रोड, करोंद और पुराने शहर के अन्य इलाकों से सुबह से ही ताजिए निकले। अलम बुराक और धार्मिक परचमों के साथ जुलूस निकाले गए। जिला प्रशासन द्वारा भोपाल शहर के विभिन्न इलाकों में कोचिंग संस्थानों

की फायर सेफ्टी व्यवस्था की व्यापक जांच की जा रही है। संचालित कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण कर कमियां मिलने पर कोचिंग संस्थान को सील करने की भी कार्रवाई जारी है। भोपाल में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासन ने शहर और आसपास के क्षेत्रों में बिना अनुमति विकसित की जा रही 6 कॉलोनियों पर एक साथ बुलडोजर कार्रवाई की है। करीब 82 करोड़ रूपए मूल्य की जमीन पर किए गए अवैध विकास कार्यों को हटाते हुए प्रशासन ने सड़कें, गेट और बाउंड्री वॉल ध्वस्त कर दी। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे भोपाल जिले की चिट्ठी। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन।
2: हेलो MH हॉटलाइन।

0: श्रोताओं के फरमाइशी फिल्मी गीतों के सजीव फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है और आप सभी को मेरे यानी तृप्ति लटपटे की ओर से प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हम लेकर आ गए हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम, तो आप भी जल्दी से आ जाइए, हमें कॉल लगाइए 2710223 और 2710224 पर और सुने अपने पसंदीदा गीत, साथ ही कर सकते हैं हमसे बातचीत। पहले कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, आइए देखते हैं किसका कॉल है। हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: हेलो, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग जी, किससे बात हो रही है मेरी?
1: मैं रानू गुप्ता बात कर रही हूँ देवास से।
0: रानू जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका, कैसी हैं आप?
1: मैं फंटास्टिक हूँ, आपके क्या हालचाल?
0: आपकी आवाज सुन के मैं भी फंटास्टिक हो गई हूँ। जैसे बजे जी जी,
1: कोई कोई अनाउंसर इतने अच्छे रहते हैं कि मन करता है बात करते जाओ करते जाओ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। इनफैक्ट पिछली बार जब हमारी बात हुई थी तब से मुझे भी आपके कॉल का इंतजार था कि अगली बार हम वापस जुड़े तो हम और ढेर सारी बात कर पाए। पिछली बार आपने बताया था कि घूमने फिरने का आपका प्लान बन रहा है, हम लोगों ने वो सारी बातें की थी।
1: अरे अभी हमको कल तो इंदौर ही आना है, आपके यहाँ रिसेप्शन है, एक तो आना ही है।
0: जी जी जी बिल्कुल। और जब हमारी बात हुई थी कि अभी आप आकाशवाणी भोपाल से आकाशवाणी इंदौर सुनना शिफ्ट किया है, तो अच्छा लगा था कि आप आकाशवाणी इंदौर रेगुलरली सुन रही हैं, हमें फोन कर रही हैं, जुड़ रही हैं। और बताइए क्या नया हुआ है इसके बाद?
1: जी
0: अभी हमारी जो बातचीत हुई थी एमएच हॉटलाइन पे, उसके बाद क्या नया है अभी जीवन में?
1: नया तो कुछ नहीं, बेटे के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं
0: जी,
1: तो थोड़ा सा उसी में अस्त व्यस्त है, बाकी तो लाइफ अच्छी चल रही है, ऊपर वाले की कृपा दृष्टि है, बिल्कुल हैप्पी है।
0: जी जी, बहुत अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं ऐसे ही आप खुश रहे, आपकी आवाज में ऐसी चहक बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बताइए कौन सा गीत सुनवाए आपको?
1: मूवी का नाम है तेरी मेरी कहानी और गाने के बोले दैट सेल वैली बना डू।
0: लीजिए आपकी पसंद पे।
1: आपको रहेगा
0: जी
1: डेडिकेशन आपको रहेगा।
0: क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर गाना है, आपकी पसंद पे सुनवाते हैं।
1: शुक्रिया, बाय।
0: बिल्कुल ऐसे ही कॉल करते रहिए, धन्यवाद।

0: एमएच हॉटलाइन सुन रहे हैं आप आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से, और अब हमसे जुड़ रहे हैं हमारे अगले श्रोता, तो आइए देखते हैं साथ कौन है। हेलो एमएच हॉटलाइन
1: जी। नमस्ते मैम।
0: नमस्कार, किससे बात हो रही है मेरी?
1: जी मैं अरविंद अग्रवाल।
0: अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। कैसे हैं आप और परिवार में सब लोग कैसे हैं?
1: सब बढ़िया है, सब ईश्वर की कृपा है, आप लोगों का आशीर्वाद है।
0: जी, हम तो यही शुभकामनाएं देंगे कि आप और आपका परिवार सब बढ़िया रहे, कुशल मंगल रहे। बताइए अभी क्या नया चल रहा है जीवन में?
1: पन्नी बेच रहे हैं
0: जी,
1: नया है, इस बार नया काम किया है।
0: अच्छा, बारिश को देखते हुए।
1: जी
0: जी, और आपके यहाँ से मतलब किसानों के लिए ये बेच रहे हैं या फिर दुकानदारों के लिए? किस तरह का मतलब इस उत्पाद को बेचने के लिए आपका कौन टीजी रहेगा, कौन ज्यादा लोग लेके जाते हैं, दुकानदार?
1: ज्यादातर किसान लेते हैं हार
0: जी
1: में,
0: जी जी
1: खेतों में जब झुग्गी झोपड़ी बनाते हैं
0: जी जी
1: छाया के लिए,
0: छाया के लिए, छाया, और अब तो बारिश से थोड़ी सी
1: हाँ
0: सुरक्षा के
1: बारिश से
0: लिए भी।
1: बचाएंगे।
0: जी बिल्कुल, ठीक है। तो बताइए कौन सा गीत सुनवाया जाए आपको?
1: जी फिल्म का नाम रहेगा आई मिलन की रात।
0: जी, और इस फिल्म से कौन सा गीत सुनेंगे? सावन से जुड़ा गीत सुनना चाहेंगे शायद आप।
1: जी सावन
0: जी
1: के
0: चलिए, आपकी पसंद पे सुनाते हैं आपके फरमाइश का एक
1: नहीं
0: गीत।
1: कहीं ना आ रहा है।

0: रितेश, तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है?
1: डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्लड भी चढ़ाना पड़ेगा शायद, लेकिन मुझे डर है कि हॉस्पिटल का ब्लड सेफ है या।
0: अगर लाइसेंस हॉस्पिटल या लाइसेंस ब्लड बैंक है तो सेफ ही होगा, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड स्टोर करने की अथॉरिटी सिर्फ लाइसेंस ब्लड बैंक और लाइसेंस हॉस्पिटल के पास ही है। और ये भी सुनिश्चित कर लेना कि ब्लड HIV टेस्टेड है या नहीं, क्योंकि असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से HIV एड्स जैसे कई बीमारियों की संक्रमण का भी डर रहता है।
1: अच्छा, अब तो मैं लाइसेंस ब्लड बैंक या हॉस्पिटल से ही ब्लड लूंगा।
2: हाँ, और इस बारे में और जानकारी चाहिए हो तो 1097 पर कॉल कर लेना।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन, और हमसे एक श्रोता जुड़े हैं, आइए करते हैं उनसे बात। हेलो MH हॉटलाइन।
5: हाँ नमस्कार मैडम।
4: नमस्कार, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका, किससे बात हो रही है?
5: मैं ग्राम बालोदा लखा जिला उज्जैन से कन्हैयालाल प्रजापति बोल रहा हूँ मैडम
4: जी। महाकाल की नगरी से बोल रहे हैं, कैसे हैं प्रजापति जी आप?
5: हाँ जी
4: बताइए कैसे हैं आप और आपके परिवार में सभी लोग?
5: बस बढ़िया है, आनंद मंगल है, प्रभु की कृपा है महाकाल राजा की।
4: जी बिल्कुल, क्या करते हैं प्रजापति जी आप?
5: बस खेती का काम करते हैं।
4: तो अभी बारिश जो ऐसी आई है, इससे कुछ लाभ हुआ है आपको, कुछ शुरुआत हुई है?
5: बारिश की शुरुआत हो गई और सोयाबीन वगैरह सभी लगा दिए हैं।
4: अच्छा, तो बुआई हो चुकी है मतलब?
5: हाँ बुआई हो चुकी है।
4: जी जी, और अभी बुआई के बाद फिर कितना आपको प्रतीक्षा करनी पड़ती है आगे के काम के लिए?
5: हाँ आगे के काम के लिए करीबन 3 महीने के बाद फिर बाद में गेहूं लगाना जरूरी है, तो 3 महीना प्रतीक्षा करनी पड़ती है।
4: 3 महीने प्रतीक्षा करनी होती है। तो इस दौरान आपके पास कुछ जानवर भी है जिनके आप मतलब उनका आप ख्याल रखते हैं, या फिर पशुपालन से आप कुछ और भी व्यवसाय करते हैं?
5: नहीं पशुपालन वगैरह तो कुछ नहीं है, फिर ईंट का व्यवसाय करते हैं, ईंट का काम।
4: जी जी जी, तो फिर जब तक बुआई के बाद इंतजार करना होता है उस दौरान फिर आपके इस व्यवसाय में ज्यादा ध्यान देते हैं?
5: हाँ जी
4: चलिए अच्छी बात है। बताइए कौन सा गीत सुनवाया जाए आपको?
5: फिल्म आदमी का सुना दीजिए।
4: जी
5: वो वाला आदमी मुसाफिर है।
4: जी चलिए।
5: आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें भूल जाता।

0: आकाशवाणी इंदौर पर हम सुनवा रहे हैं लगातार आपके फरमाइशी फिल्मी गीत। आप भी कॉल कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, कर सकते हैं बातचीत और सुन सकते हैं अपने पसंद का गाना। आइए देखते हैं अगला फोन कॉल किसका लगा है, कौन हमसे जुड़ रहा है। हेलो आकाशवाणी।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्ते, एमएच हॉटलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किससे बात हो रही है मेरी?
1: भूपेंद्र कुमार गुप्ता, कोटा, राजस्थान।
0: भूपेंद्र जी कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया है
0: जी।
1: आप सब लोग बढ़िया हो? इंदौर में?
0: इंदौर में भी सब बढ़िया है। और बताइए वहाँ पर कैसा मौसम चल रहा है अभी?
1: अभी मौसम गर्मी का है, संभावना है 1-2 दिन में बारिश आने की।
0: तो बारिश अभी तक एक भी बारिश नहीं हुई वहाँ पर?
1: अब छुट पुट होती है तो मजा नहीं है। आज थोड़े बदल बदल हो रहे हैं कल से
0: जी,
1: और अभी बारिश नहीं हो पाई है।
0: बौछारे हैं, मतलब अभी उसके कारण गर्मी से राहत नहीं मिल पाई है।
1: आप कुछ तो राहत है पर अभी वो गर्मी तो है ही सही जो
0: जी जी
1: मजा
0: जी जब तक अच्छी
1: मतलब
0: तरह से बारिश होके
1: हाँ
0: जमीन की और धरती की गर्मी
1: हाँ हो
0: शांत नहीं
1: जाएगी,
0: होगी। हाँ
1: हो जाएगी। सब सब्र करो, सब तो मिलेगी
0: जी
1: बारिश।
0: जी जी बिल्कुल, सभी को बारिश का इंतजार
1: सब्र
0: है।
1: का फल मीठा होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: इंतजार के बाद जो चीज मिलती है उसमें मजा भी ज्यादा आता
0: बिल्कुल सही कहा आपने। तो बताइए
1: है। बढ़िया।
0: गीत कौन सा सुनवाया जाए आपका?
1: देवी का सुना दो आप। मोहम्मद रफी साहब की आवाज है, लता जी की आवाज।
0: जी आपके पसंदीदा कलाकार कौन है? गायक
1: हमारे
0: गायक कलाकार कौन से पसंदीदा है आपके?
1: सब पसंद है, हमारे को सब
0: जी, पुराने
1: सबसे बेहतर,
0: पुराने सभी पसंद है
1: पुराने नए सब मेहनत कर रहे हैं।
0: जी। बिल्कुल
1: हाँ, किसी को क्या पसंद है, बाकी सबको सुनो,
0: जी, सही कहा। चलिए
1: अपनी तरफ से सब मेहनत करते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। चलिए, हमें कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपकी पसंद का गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: हम आकाशवाणी से बोल रहे हैं जहां चल रहा है फरमाइशी फिल्मी गीतों का सजीव फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ तृप्ति और मेरे साथ एक के बाद एक श्रोता जुड़ रहे हैं, अपने पसंद के गाने सुन रहे हैं और कर रहे हैं हमसे बातचीत। आप भी जुड़ सकते हैं, हमारा नंबर है 2710223 और 2710224। इस नंबर के पहले इंदौर का एसटीडी कोड यानी 0731 लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब हमसे जुड़ चुके हैं एक और श्रोता, देखते हैं लाइन पर कौन है। हेलो एमएच हॉटलाइन, हेलो एमएच हॉटलाइन,
1: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम।
0: गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कौन बोल रहा है?
1: जी मैं श्रीपाल गोयल, दिल्ली से। नहीं
0: श्रीपाल जी, कैसे हैं आप?
1: ठीक है मैम, आप बताइए कैसे हो?
0: एकदम बढ़िया, और समय देखते हुए लग रहा है कि आप ऑफिस पहुंच चुके हैं।
1: बिल्कुल सही मैम, अभी कोई पहुंचे, बस कॉल ट्राई किया, आते ही
0: जी। यही समय होता है जब आप ट्रेन में सफर करते हुए कॉल लगाते हैं और अक्सर कॉल लग जाता है। तो बताइए अभी गर्मियों का क्या हाल है वहाँ पर?
1: मैम कल थोड़ी बूंदाबांदी हुई थी तो आज तो धूप निकली हुई है, तो मतलब जो है उमस बढ़ गई है, काफी गर्मी ज्यादा है
0: जी। ये जो लुका छिपी खेल रहे हैं ना, बारिश और बादल, वो थोड़ी सी परेशानी सबके लिए बन गई है और सब लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार हो गया है, क्योंकि इससे उमस और बढ़ती जा रही है। गर्मी तो थोड़ी सी सहनीय होती है पर उमस थोड़ी असहनीय हो जाती है।
1: जी। हाँ जी बिल्कुल
0: जी, तो चलिए आप बताइए कौन सा गीत सुनवाया जाए, क्योंकि आप काम पर है तो हम ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका। बताइए कौन सा गीत सुनवाए आपको।
1: फिल्म है मैम कुर्बानी अंगारे, गाना है चांद आहे भरेगा।
0: जी लीजिए, आपकी पसंद पे सुनवाते हैं आपका फरमाइशी गीत। हमें धन्यवाद कॉल करने।

0: एक से बढ़कर एक गीत हम सुन रहे हैं, और इस प्रोग्राम की जो है खूबसूरती ही यही है कि अलग अलग श्रोता जो है अपनी पसंद के गीत सुनवाते हैं, और इस वजह से एक बहुत ही खूबसूरत सा गुलदस्ता सा बन जाता है गीतों का। और अगले श्रोता जो हमसे जुड़ रहे हैं, देखते हैं किसका कॉल आया है। हेलो एमएच हॉटलाइन
1: जी, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किससे बात हो रही है मेरी?
1: मैं श्यामलाल कतीजा बोल रहा हूँ, मंदसौर जिले से।
0: श्यामलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप और आपके परिवार में सभी लोग?
1: सब बढ़िया है, बच्चों को स्कूल छोड़ा है अभी,
0: जी
1: और आधी बोनी हो चुकी है सोयाबीन की, और मक्का और उड़द की बाकी है। अभी पानी गिर गया था कल, तो वो क्या है कि चलने ट्रैक्टर चलने लायक, मतलब थोड़ा और
0: जी
1: हवा लगेगी ना,
0: जी जी जी
1: थोड़ा सूखेगा तो फिर ट्रैक्टर चलेगा।
0: जी और फिर उसके बाद बुआई तो आपने सोयाबीन की कर दी है, उसके लिए आपको 2-3 महीने रुकना पड़ेगा। और बाकी बुआई के बाद कितना टाइम रुकना पड़ता है मक्का की?
1: बाकी मक्का की 60-70 दिन।
0: 60-70 दिन, मतलब 2 महीने 2.5 महीने के आसपास।
1: हाँ, वो मतलब वो बुआनी लेट हो गई ना, तो क्या किया कि
0: जी
1: कम समय वाली बुआई बुआई करेंगे, कम समय में आ जाए ना।
0: तो ऐसे आप किस समय पर बुआई करते हैं, कौन से महीने में बुआई की जाती है?
1: जून से शुरू होता है, लेकिन इस बार लेट हो गया ना
0: क्योंकि
1: मानसून।
0: बारिश लेट हुई है, मॉनसून लेट हुआ है।
1: हाँ
0: बिल्कुल
1: हाँ
0: बिल्कुल सही कहा।
1: 15 से हो जाता, 15 जून से,
0: जी
1: लेकिन अब लेट हो गई।
0: जी ग्लोबल वार्मिंग के कारण वैसे ही बहुत सारी जो है वो पर्यावरण में
1: समस्या
0: चेंजेस आते जा रहे हैं, और वो थोड़ा सा मुश्किल तो होता जा रहा है। आपको क्या
1: हाँ
0: लगता है कि ऐसे में खेती किसानी थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है समय के साथ?
1: जी, हो रहा है ना, फसलों पे भी असर पड़ रहा है, दुनिया भर
0: जी
1: की बीमारियां लग रही है, वो पीला मोजेक लग रहा है, और फसलें भी खराब हो रही है, का
0: जी जी जी
1: वातावरण सही नहीं रहा ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा।
1: हाँ,
0: नहीं, पर हम यही उम्मीद और शुभकामनाएं देते हैं आपको कि आपकी फसल अच्छी हो, और जितनी आपको आवश्यकता है या सभी किसानों को आवश्यकता है उतनी बारिश तो कम से कम इस समय हो, ताकि आपके भी जितनी भी जिंदगी में और कृषि में प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, वो सारी दूर हो सके। चलिए बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको।
1: मैम गीत तो वो सखी सैया तो खूब कमाए रे, महंगाई दायन
0: बिल्कुल, ये आज के परिवेश
1: करेगा।
0: में बिल्कुल सूट होता हुआ गाना है। तो चलिए आपके पसंद का ये गाना आपको सुनवाते हैं। हमें कॉल करने के लिए धन्यवाद।
1: धन्यवाद मैम।

सैया रण सैया जी मर खूब कमावे सैया जी मर सैया रे अरे कमा कमा के मर गए सैया पहले तगड़े तगड़े थे अब दुबले पतले हो गए सैया अरे कमा कमा के मर गए सैया मोटे सैया पतले सैया

0: हाजात है।
1: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत और अलग सा गीत अभी सुनने को मिला। और जैसे मैंने कहा ना कि गुलदस्त की तरह खूबसूरत, जैसे उसमें फूल अलग अलग रंग के खिलते हैं, वैसे ही गीत हम लोग एमएच हॉटलाइन में सुन सकते हैं, क्योंकि अलग अलग हमारे जो श्रोता है उनकी फरमाइशें हम यहाँ पर शामिल करते हैं। और अगला गीत जो है वो भी क्या होने वाला है देखते हैं। हमारा अगला कॉल जो है वो कनेक्ट हो चुका है। हेलो एमएच हॉटलाइन।
2: हेलो,
1: नमस्कार,
2: हेलो,
1: कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। किससे बात हो रही है मेरी?
2: मैं कारूंगा छोटी सावड़ी, रतन लाल सुसार बोल रहा हूँ राजस्थान से।
1: जी रतन लाल जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। कैसे हैं आप?
2: बस आप कैसे हो?
1: एकदम बढ़िया।
2: बरसात कैसी है?
1: बरसात बौछारे हैं अभी, यहाँ भी बरसात पूरी तरह से शुरू नहीं हुई है। वहाँ बारिश का क्या हाल है?
2: वहाँ आज ही हुई है, आज सुबह सुबह 5 बजे से।
1: जी
2: तो रिमझिम रिमझिम अभी 9:30 बजे तक चल रही थी, और 1 घंटा में बहुत जबरदस्त गिरी बारिश।
1: जी जी जी, चलिए अच्छी बात है, जबरदस्त बारिश की जरूरत भी है वहाँ भी यहाँ भी।
2: जरूरत है लोगों के, बोना है फसलें, अभी हमारे खेत बिल्कुल सूखे पड़े अभी।
1: जी आप खेती करते हैं?
2: हाँ खेती करते ना, ये हमारी खेती।
1: तो आप क्या बोते हैं खेती में?
2: खेती में बोते हैं मूंगफली, मक्का, उड़द।
1: जी और बुआई फिर अभी कब होना है?
2: बुआई ये सारी अभी बारिश के ऊपर है तो बहुत जल्दी निपट जाएगा एकदम।
1: जी जी, तो
2: आप 10 दिन के अंदर अंदर
1: बारिश का इंतजार कर रहे हैं आप?
2: हाँ वो क्या है, मशीनें आ गई तो बहुत जल्दी हो जाएगा। हमारे गांव में कम से कम 150 मशीनें हैं बोलने की।
1: अरे वाह क्या बात है। तो फिर ये
2: छोटी साड़ी तहसील में सबसे बड़ा गाँव है कारूंगा।
1: अच्छा
2: हाँ
1: जी जी, तो मशीनों के कारण बुआई का काम इतना मुश्किल नहीं रह गया है अब?
2: कोई मुश्किल नहीं है, अब आसान हो गया है।
1: जी बिल्कुल, तकनीक के कारण काफी चीजें आसान हो गई है।
2: ये क्या है कि आप बेल तो है नहीं है
1: जी,
2: कोई रखना पसंद ही नहीं करता है कि कौन पौधे उठाए, कौन घास लाए, चारा लगा पड़ता सुबह से।
1: जी जी
2: के, काट के।
1: जी बिल्कुल, बताइए
2: ये परेशानी हो गई। तो सब सारे ट्रैक्टर लिया है हमारे गाँव में, कम से कम पूरे गाँव में 400 ट्रैक्टर होंगे।
1: क्या बात है, सभी किसान जो हो रहे हैं वो विकसित किसान बन रहे हैं, प्रगतिशील किसान बन रहे हैं अब, क्योंकि तकनीक अब अपनाना जरूरी है कि ताकि मेहनत समय सब कुछ बच सके।
2: जी जी
1: जी, बताइए गीत कौन सा सुनवाए आपको?
2: गीत मैं सुनना चाहूंगा फिल्म प्रोफेसर का।
1: जी चलिए, आपके आपके पसंदीदा गायक कलाकार कौन है?
2: लता मंगेशकर,
1: जी
2: किशोर कुमार है।
1: मतलब देखा जाए तो पुराने पुराने सभी। जी जी
2: हाँ, इनकी भी जितने अपन वर्णन करें उतने कम है।
1: जी जी बिल्कुल।
2: अरे एक मिनट, मेरे को एक गाना और याद आ गया सुनना।
1: जी

0: अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू
1: और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू।
0: कोई लाता गुड़िया मोटर रेस, तो कोई लाता फिरकी लट्टू, कोई चाबी का कट्टू
1: और

0: बच्चे होते नाम हमारा होता गबलू बबलू खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती है हैप्पी बर्थडे।
1: आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का सजीव फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन तृप्ति लटपटी के साथ। और हमारे साथ अब जुड़ गए हैं हमारे अगले और कार्यक्रम के अंतिम कॉलर एमएच हॉटलाइन। हेलो एमएच हॉटलाइन, नमस्ते जी, किससे बात हो रही है मेरी?
2: धर्मपुरी जिला धार मध्य प्रदेश से शेख फहीम मोहम्मद का छोटा भाई मोहम्मद तस्लीम शेख बोल रहा हूँ।
1: बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका, कैसे हैं सर आप?
2: अच्छा हूँ, बढ़िया। आप सुनाइए, आपसे क्या हाल है?
1: एकदम बढ़िया हाल है हमारे। और आप लोग जितने जोश उत्साह और प्यार से जब नमस्कार करते हैं तो और अच्छा लगता है बात करने में।
2: जी जी
1: जी, बताइए जीवन में क्या नया चल रहा है, काम कैसा चल रहा है आपका?
2: वही चल रहा है मैडम, व्यस्त हूँ अपनी फ्लोर मिल में।
1: जी जी जी,
2: धर्मपुर में पुनर्वास स्थल पर मकान का काम।

0: लगा दिया है।
1: जी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको नए घर के लिए।
0: जी शुक्रिया। अनजाना
1: जी बताइए कौन सा गीत सुनवाया जाए आपको। जी
0: फिल्म का है, रिमझिम के गीत सावन गाए भीगे भीगे रातों में, लेकिन अभी तो भीगा भीगा मौसम है।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
0: जी
1: और ऐसे मौसम में ऐसे गीतों की याद आती है। बस हम लोग
0: जी
1: सभी चाह रहे हैं कि मौसम थोड़ा सा और सुहाना हो जाए।
0: जी आप आइए धर्मपुरी, आपको ले जाएंगे नर्मदा जी पर, टापू पर घुमाने
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, हम नर्मदा
0: के लिए। जी जी
1: बिल्कुल आएंगे। चलिए अभी तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना, हमें कॉल करने के लिए धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। अगला प्रसारण कुछ ही देर में आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करे गीत सुने।
1: श्रोताओं नमस्कार, हमारे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। स्वीकार कीजिए अपनी रेडियो सखी कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। तो देर किस बात की, जल्दी से डायल कीजिए 2660902 और एसटीडी कोड आप जानते ही हैं 0755। हमें आपके फोन कॉल्स का है बेसब्री से इंतजार, तो कीजिए कॉल और सुनिए अपनी पसंद के गीत। जी
2: ग्राम सुराना जिला रतलाम से शेख हैदर खान बोल रहा हूँ।
1: शेख हैदर खान रतलाम से?
2: हाँ, सुराना जिला रतलाम।
1: रतलाम से तो कैसे हैं आप?
2: बस बढ़िया है, खैरियत में है मैडम।
1: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। मौसम कैसा है आपके यहाँ का?
2: मौसम तो मैडम आज 5:30 बजे से करीबन 2 घंटा मतलब अच्छी बारिश हो गई है।
1: हाँ हाँ,
2: और पानी की जरूरत भी थी। सोयाबीन की बोनी भी हो चुकी है।
1: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। ये तो कई जगह पर हमने सुना है कि लोगों ने अभी तक सोयाबीन की बोनी नहीं कर पाए हैं कि पानी बार बार गिर रहा है।
2: हाँ, मैं कई जगह तो मैडम पानी अभी तक गिरा भी नहीं है।
1: सही कह रहे हैं ये।
2: हाँ, हमारे आसपास भी मतलब ये जावरा तहसील है, इसमें भी पानी नहीं है फिलहाल।
1: हाँ चलिए, तो शेख साहब आज कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं?
2: फिल्म का नाम है
1: हाँ
2: नदिया के पार।
1: अरे वाह, नदिया के पार के तो सभी गीत बड़े प्यारे हैं।
2: हाँ, सचिन और साधना की फिल्म थी ये।
1: हाँ जी,
2: तो उसका गीत है कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया।
1: बिल्कुल, ये गीत आप बिल्कुल सुन पाएंगे, लेकिन कल सुबह 11 बजे से जो प्रोग्राम आएगा उसमें।
2: हाँ हाँ,
1: है ना। चलिए, अच्छा कॉल आपने कब किया? 1 हफ्ते तो हो चुके होंगे ना आपके कॉल को?
2: नहीं, मैं तो ज्यादा दिन हो गए मैडम, 15-20 दिन हो गए, मैं तो बोनी में लगा हुआ था।
1: चलिए कोई बात नहीं,
2: 2-4 दिन से।
1: बिल्कुल, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ कॉलर्स है ना, जैसे कल लगाया आज फिर लगा दिया, तो हम उनसे बात तो कर लेते हैं, लेकिन जब हम अपना रजिस्टर चेक करते हैं तो पता पड़ता है उन्होंने तो कल ही बात की थी, तो हमें उनका प्रोग्राम में फिर उनका कॉल नहीं ले पाते।
2: तो वो सही है ना, मतलब 15-20 दिन की गैप भी देनी चाहिए हर श्रोता।
1: बिल्कुल
2: मौका मिले,
1: सही बात है। इसी वजह से हम लोगों ने ये सिस्टम किया है कि हर श्रोता को मौका मिल सके।
2: सही है
1: ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच शेख साहब।
2: ओके ओके, थैंक यू है ना मैडम
1: जी, नमस्ते,
2: शुक्रिया।

0: हेलो
1: हेलो,
0: परम माननीय दीदी, सादर सा प्रेम प्यार से नमस्कार।
1: नमस्कार। इतने जोश से कौन साहब बोल रहे हैं?
0: जी दीदी, मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ। दीदी आप लोग कैसे हैं?
1: हम बहुत अच्छे हैं। मथुरा में तो भयंकर गर्मी पड़ रही है शारदा जी।
0: जी, बिल्कुल आपने सही कहा, बारिश नहीं हुई है अभी तक मानसूनी,
1: हाँ
0: और मानसून पहले भी वर्षा नहीं हुई थी। हम आपसे वार्तालाप कर रहे हैं तो चमचमाती हुई धूप है, हल्की हल्की हवाएं चल रही हैं,
1: हाँ
0: लेकिन उमस भरी गर्मी बरकरार है।
1: बहुत तेज, क्योंकि अभी जस्ट हम मथुरा से होकर ही आए हैं 2-3 दिन पहले, और सब बीमार पड़ गए हैं। इतनी भयंकर गर्मी है वहां पर।
0: जी, गर्मी तो बहुत है दीदी, और उमस वाली गर्मी अब परेशान कर रही है। आसपास के क्षेत्रों में कुछ कुछ वर्षा हो जाती है, बूंदाबांदी होती
1: हाँ
0: है, जिसके कारण से उमस काफी बढ़ गई है, और उमस जो है बहुत गर्मी के साथ साथ में बेचैनी उत्पन्न करती है।
1: बेचैनी बिल्कुल। चलिए शारदा जी, बताइए अपनी पसंद का गीत।
0: दीदी आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है संगीत।
1: संगीत।
0: जी, इसका शीर्षक गीत है
1: हाँ जी।
0: संगीत जहाँ है गीत वहाँ है, गीत जहाँ है प्रीत वहाँ। बहुत ही सुंदर प्यारा सुरीला गीत है,
1: हाँ, अनुराधा
0: इसको अपने
1: पौडवाल
0: हाथ से
1: और
0: साथ में लता
1: सुरेश,
0: जी गा रहे।
1: बिल्कुल बिल्कुल नहीं, अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर की आवाजें हैं ये।
0: और सारी दीदी आपने हमारी गलती को सही कर दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ आपको।
1: कोई बात नहीं, तो ठीक है शारदा जी, कल के प्रोग्राम में आप अपनी पसंद का गीत जरूर सुन पाएंगे। ठीक है, कॉल करने
0: जी
1: के
0: जी
1: लिए
0: हृदय से
1: बहुत बहुत
0: धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। सादर नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हेलो,
1: हाँ नमस्कार।
0: नमस्ते।
1: आज मैं ग्राम बालू का लखा जिला उज्जैन से कन्हैयालाल प्रजापति बोल रहा हूँ। हाँ
0: जी कन्हैया लाल जी, कैसे
1: जी
0: हैं?
1: मैडम। हाँ मैडम, भाई बढ़िया आनंद मंगल।
0: कॉल आपने एक हफ्ते बाद ही किया है ना?
1: हाँ
0: हाँ जी, चलिए और सुनाइए, क्या हाल है आपके?
1: बढ़िया है, आनंद मंगल है। सफर कर रहे हैं अब
0: आज कहाँ जा रहे हैं?
1: हम वहां से आए हैं, शीतला मंदिर से वापस धर्मगढ़ के पास जा रहे हैं, बालू का लखा।
0: अच्छा, तो कन्हैयालाल जी कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: बरखा रानी जरा जिनका बड़े सबक फिल्म का है ना।
0: सबक?
1: हाँ सबक, बरखा रानी जरा
0: हाँ
1: जिनके बरसों मेरा दिल जरा
0: हाँ
1: जिनके
0: जी,
1: बरसों।
0: बहुत अच्छा गाना है ये, मुकेश की
1: हाँ
0: आवाज में।
1: हाँ सबक फिल्म का बहुत
0: हाँ
1: पुराना
0: हाँ बिल्कुल, आपका प्रोग्राम में, ये कल के प्रोग्राम में आप अपना गीत सुन पाएंगे।
1: आप
0: ठीक है, कल
1: कितने बजे आए?
0: 11 बजे से प्रोग्राम आएगा, तो आप सुनिएगा अपनी पसंद का गीत, और हमारे बीच जो बातचीत हो रही है वो भी आप सुन सकेंगे। आवाज़ में बहुत डिस्टरबेंस है, इसलिए मैं आप माफ़ी चाहूँगी
1: बढ़िया है, आनंद मंगल है। और
0: जी।
1: क्या?

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्ते
1: जी, नमस्ते मैम जी।
0: जी। शुभ नाम
1: मैं अरविंद अग्रवाल।
0: जी। अरविंद जी, क्या हाल हैं आपके?
1: जी एकदम बढ़िया है। आप भी अच्छी होंगी ऐसी आशा करते हैं जी।
0: बिल्कुल, आपकी आशाओं पे।
1: कविता जी से बात हो रही है आज?
0: जी,
1: कविता रावत जी से बात हो रही है
0: थैंक यू वेरी मच आवाज पहचानने के लिए।
1: जी।
0: कहाँ से बोल रहे हैं अरविंद जी?
1: जी मैं श्रीनगर जिला महोबा उत्तर प्रदेश से। जी
0: बहुत बढ़िया। कैसा माहौल है उत्तर प्रदेश में बारिश का?
1: कल तो हुई थी थोड़ी बारिश लेकिन उमस फिर भी है अभी भी।
0: अभी वो लगकर जो मानसून आना चाहिए ना, लगातार बारिश होती है और ठंडक हो जाती, वो मौसम नहीं आ पा रहा ना।
1: जी मोबाइल तो वैसे दिखा रहा है कि आज भी बारिश होगी।
0: हाँ, लेकिन अभी लगातार बारिश नहीं हो रही है, इस वजह से हर जगह उमस के कारण सभी लोग परेशान हैं, है
1: जी
0: ना। और परिवार में सब कुशल मंगल?
1: सब आशीर्वाद है आपका, भगवान की कृपा है जी।
0: चलिए, हमेशा बनी रहे। और बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: फिल्म का नाम रहेगा घात
0: घात।
1: जी। झूम
0: उसका कौन सा गीत?
1: का चांदी का जी।
0: अच्छा, हाँ बिल्कुल, मिल गया हमें ये गाना तो।
1: मिल तो जाएगा ही
0: हाँ, बड़ी अनोखी चॉइस है आपकी।
1: जी। थोड़ी आज अलग हटके सुन रहा हूँ,
0: बहुत अच्छी बात है,
1: फास्ट संगीत थोड़ी।
0: बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता। और हर टाइप का संगीत हमको सुनना ही चाहिए, है ना, तभी तो हम
1: जी
0: अपने बच्चों को भी ये सिखा पाएंगे कि ये इसमें क्या है, इसमें कौन सा राग है, क्या है, ये सारी बातें, है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी कॉल करने के लिए।
1: जी आपका भी धन्यवाद कॉल लेने के लिए।
0: जी नमस्कार,
1: आपका दिन शुभ हो।
0: आपका भी दिन शुभ हो। हेलो हेलो हेलो हेलो,

0: हेलो,
1: नमस्कार दीदी।
0: नमस्ते जी।
1: मैं बाबू यादव बोल रहा हूँ, सारनाथ वाराणसी से। जी
0: बाबू यादव,
1: जी
0: सारनाथ वाराणसी। पहली
1: नहीं
0: बार बात हो रही है ना बाबूनाथ जी आपसे? होती
1: दीदी, ये बहुत ही रहती है। हाँ,
0: रहती, मतलब मेरे से नहीं हुई है।
1: आपका परिचय जानना चाहूँगा।
0: कविता रावत
1: ओ हाँ दीदी, ठीक करें, पहली बार हो रही है।
0: है ना? अपनी पहली बार बात हो रही है।
1: हाँ
0: सोचिए,
1: जी
0: इतने सालों में पहली बार आपसे बात हो रही है।
1: दीदी, आपकी वो जो गीत सागर में आप जो कार्यक्रम देती थी,
0: हाँ जी,
1: उसमें आपका गीत सागर में मतलब सुनता था, अच्छा लगता था,
0: अच्छा
1: और
0: अच्छा
1: मैं पत्र भी भेजता था।
0: अच्छा
1: हाँ,
0: चलिए, थैंक यू वेरी मच
1: तो वहाँ आपका नाम सुन,
0: जी।
1: और हम पत्र भी भेजते थे, अच्छे अच्छा लिखते थे आप थी, और वही वो क्या थी, सिंह थी, सरिता सिंह थी, क्या थी,
0: सुनीता सिंह।
1: हाँ सुनीता सिंह जी। तो आप लोगों के विचार जो है बहुत अच्छे लगते थे गीत सागर में।
0: अभी भी प्रोग्राम आता है, लेकिन शिफ्ट ड्यूटी
1: हाँ
0: रहती है तो किसी कारण से अभी नहीं कर पा रहे हैं।
1: जी।
0: तो बस आप सबका स्नेह ऐसे ही हम लोगों के साथ बना
1: हाँ
0: रहे।
1: दीदी, बहुत अच्छा लगता है आप लोग प्रस्तुत करती हैं, अच्छा लगता है, आपसे सीख मिलती है, ज्ञान मिलता है।
0: ये बात सही है।
1: हाँ
0: और आपस में बातचीत करके ना अपने बहुत सारे समस्याओं का हल भी निकलता
1: जी, बिल्कुल
0: है
1: जी
0: ना? बस यही तो
1: जी
0: उद्देश्य है हमारे रेडियो का।
1: जी जी
0: चलिए बताइए बाबूजी, आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज?
1: दीदी देखिए, मेरे यहाँ कल से बारिश हो रही है, तो
0: हाँ जी,
1: बनारस का मौसम बहुत अच्छा हो गया है, तो
0: हाँ
1: इस अवसर पर हमको एक गाना सुनवा दीजिए, फिल्म जुर्माना का है,
0: हाँ हाँ
1: और वो आपकी सजन सावन में
0: अच्छा,
1: हीराशाह जी ने
0: जुर्माना का।
1: गाया हुआ है, तो
0: देख
1: वही
0: हो
1: वाला
0: गए,
1: सुनवाइएगा,
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: और दो लाइनें कहना चाहूंगा इजाजत देंगी तो, कि
0: हाँ
1: कहते हैं कि अशकों की जुबान नहीं होती, और लफ्जों में मोहब्बत बयां नहीं होती, और मिले जो प्यार से तो कद्र करना यारों, मोहब्बत हर किसी पर मेहरबान नहीं होती।
0: बिल्कुल सही कहा है आपने, बहुत सही बात। अच्छा बाबू यादव जी, एक बात बताइए, ये जो गीत के बोल है ना, ये है सावन के झूले, है
1: जी
0: ना? चलिए ठीक
1: जी
0: है,
1: जी जी
0: बिल्कुल
1: जी
0: बिल्कुल।
1: बहुत बहुत खूबसूरत है, मौसम के अनुरूप है। हाँ,
0: अच्छा,
1: मेरे यहाँ मौसम बहुत अच्छा हो गया है।
0: हाँ,
1: हाँ
0: चलिए ठीक है, चलिए
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्ते मैम
0: नमस्ते
1: जी। मैं इंदौर से बोल रही हूँ, जीनत परवीन
0: जी। जीनत जी कैसी हैं आप?
1: जी। अच्छी हूँ।
0: क्या चल रहा था?

0: हाउसवाइफ को भी ढेर सारे काम होते हैं भाई
1: जी। घर के काम निपटाए, मम्मी के वहां से कल आई हूँ मंदसौर से, घर का काम संभालूं।
0: हाँ सही बात है, और बहुत काम होते हैं, और कहीं बाहर से आओ तो काम और दुगने हो जाते हैं
1: जी। जेंट्स तो करते ही नहीं है, वो आके अपनों को ही सफाई करनी पड़ती है पूरी।
0: सही बात है, सबके है ना डिपार्टमेंट अलग अलग है। अच्छा जीनत जी बताइए कौन सा गीत सुनेंगी आप
1: जी? मैं सुनूंगी 1942 एंड लव स्टोरी का, है ना?
0: अच्छा,
1: रिम झिम रिम झिम।
0: सबके मन में आजकल यही चल रहा है ना
1: जी।
0: तो बारिश मतलब रिम झिम शुरू हो गई है
1: जी, हो गई ना, इंदौर में भी आ गया पानी।
0: हाँ, आ तो गया लेकिन अभी उतना फुर्ती से नहीं आया
1: जी, उतना तो नहीं हुआ, मगर थोड़ी ठंडक से
0: हल्की पुल्की कह सकते हैं। हाँ ठीक है, चलिए धीरे धीरे ही सही आएगा, तो आ ही रहा है। चलिए जीनत जी आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, कॉल करने के लिए धन्यवाद, और कल 11 बजे अपना प्रोग्राम आप सुन सकती हैं
1: जी। शुक्रिया मैम
0: जी, नमस्ते
1: नमस्ते।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नमस्ते।
1: नमस्कार मैडम जी। जी
0: शुभ नाम बताइए अपना।
1: मैं राम बाबू मालवी बोल रहा था, कोलार रोड भोपाल से।
0: आपसे
1: ये
0: तो पहले भी
1: आकाश
0: बात हो
1: भाई,
0: चुकी
1: आप
0: है।
1: सुन रहे हैं एफएम
0: हाँ,
1: 101
0: पहले बात
1: दशमलव
0: हुई
1: छह
0: थी,
1: मेगाहर्ट्ज
0: हुई
1: पर
0: है
1: और
0: डेढ़
1: मोबाइल
0: महीने
1: एप्लीकेशन
0: पहले। हाँ,
1: न्यूज ऑन एआईआर
0: और
1: पर
0: क्या हाल
1: विविध
0: है
1: भारती का
0: आपके?
1: इंदौर केंद्र। आइए
0: एकदम
1: सुने
0: बढ़िया
1: सजीव फोन
0: हूँ।
1: इन
0: काम वाम भी
1: प्रायोजित
0: अच्छे से चल
1: कार्यक्रम।
0: रहा है और मौसम भी
1: साइबर
0: थोड़ा
1: क्राइम
0: बहुत
1: रहे
0: अच्छे हो गया है,
1: सावधान।
0: मतलब ठंडा मौसम हो गया है, बारिश भी होने लगी है। चलिए राम बाबू जी, आपको हमारी आवाज पसंद नहीं है क्या?
2: साइबर क्राइम रहे
0: हमने हमारे
2: सावधान।
0: सारे सवालों के जवाब लगातार दे दिए, हम तो कोई सवाल ही नहीं कर पाए
2: साइबर क्राइम रहे सावधान।
0: आपसे। बताइए कौन से गीत सुनना चाहते हैं?
1: बिल्कुल सब बढ़िया है।
0: हाँ।
1: और मौसम मौसम तब अपना भोपाल का तो सब ठीक ठाक है, अभी तो नॉर्मल है, ना ज्यादा बारिश ना कुछ भी नहीं, अभी शुरुआत हुई
0: बिल्कुल सही
1: है
0: बात
1: ना।
0: है।
1: और आपकी आवाज की रही बात, तो आपकी आवाज बहुत बढ़िया है और आपकी जो प्रस्तुति है प्रोग्राम की
0: जी
1: बहुत
0: जी
1: अच्छी सी है, कोई बात की दिक्कत नहीं, हमको बहुत पसंद है, सभी श्रोताओं को पसंद है।
0: जी, थैंक यू वेरी मच।
1: जी,
0: बताइए कौन से गीत सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म है आज की आवाज।
0: आज की आवाज।
1: हाँ, उसमें एक गाना बहुत प्यारा गाना है, दिल ही दिल में ले लिया दिल मेहरबानी आपकी, ये वाला गाना
0: बिल्कुल सही बात है, ये बहुत प्यारा गाना है और ये
1: है। हाँ
0: मिल भी गया मुझे।
1: जी, बिल्कुल,
0: तो कल
1: मुझे
0: 11 बजे।
1: विश्वास अपने आकाशवाणी के मध्य प्रदेश में जरूर बिल्कुल बराबर मिलता है, ये हर एक गाने मिल जाते हैं।
0: हाँ, हर गाना।
1: हाँ, वो कभी कभी सर्चिंग में हो जाता है, कभी नहीं भी आ पाते, लेकिन रहते
0: बिल्कुल
1: जरूर है बराबर।
0: सही बात है ये
1: जी
0: तो।
1: जी
0: बिल्कुल कल 11 बजे से प्रोग्राम में आप सुन सकेंगे अपनी पसंद का गीत।
1: जी बिल्कुल,
0: कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
1: धन्यवाद जी,
0: जी।
1: नमस्कार।
0: नमस्ते।
2: दिल

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी
1: फोन करें जी। सुनो जी,
0: जी हाँ
1: लगता है कि कविता जी बोल रही, क्या
0: हाँ जी
1: बात है।
0: नमस्ते
1: नमस्ते कविता जी, अब आप भी बताइए कि मैं कौन बोल रहा हूँ।
0: मैं बहुत अच्छे से पहचान रही हूँ, लेकिन माफी चाहती हूँ, नाम याद नहीं आ रहा बिल्कुल भी।
1: चलो थोड़ी सी ऑप्शन दे रहा हूँ, फूल।
0: हाँ जी, फूल सिंह जी, खजुराहो से।
1: अरे
0: देखिए हमें एकदम आवाज सुनते ही लगा कि ये आवाज तो बहुत जानी पहचानी है, लेकिन नाम क्लिक नहीं हो रहा था
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: कोई बात,
1: बहुत सारे श्रोता हैं
0: बहुत सारे श्रोता हैं, लेकिन हमारे सभी श्रोता बहुत अच्छे हैं।
1: जी। हमारे जितने उद्घोषक हैं बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं।
0: थैंक यू वेरी मच हम सभी की तारीफ के लिए। और बताइए क्या हाल है आपके, और खजुराहो का मौसम कैसा है?
1: खजुराहो का मौसम, तो अब तो खजुराहो का मौसम दिलदार है, बिल्कुल झूमता हुआ। कितना प्यारा मौसम, के बढ़िया। अब पानी गिर गया है, दो
0: हाँ
1: एक दो पानी गिर गए अभी, दो कल भी पानी बहुत बरसा हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर जिले में।
0: हाँ।
1: और अब तो खजुराहो का मौसम बहुत दीवाना है। हाँ,
0: अरे वाह क्या बात है
1: अब
0: मतलब अब
1: देखिए
0: तो
1: घूम
0: घूमने लायक मौसम बन गया।
1: जी जी बिल्कुल, गर्मियों भर छोड़ के जो है
0: हाँ
1: बरसात में और ठंडियों में तो घूमने का, खजुराहो का आनंद कुछ और ही हो जाता है।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: हाँ,
0: चलिए
1: और
0: अब
1: जो
0: बहुत
1: वहाँ के
0: जल्दी।
1: पार्किंग है, जो वहाँ की खजुराहो की जो पार्किंग है, वहाँ की जो पेड़ पौधे, जो छटाएं हैं, वो इतनी मनोहर, इतनी मनमोहक लगती हैं कि लगता है कि देखते ही रहे। जी
0: आपकी शब्दावली बहुत अच्छी है
1: जी
0: चलिए फूल सिंह जी, बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: मैं अब श्रोताओं को बता दूं कि मैं श्रोताओं, मैं फूलचंद पाल छतरपुर जिले के मनकारी गांव से बोल रहा हूं। और देखिए कविता जी, क्या है कि अभी ऐसा मधुर मौसम, इतना प्यारा मौसम हो हमारे यहाँ, तो क्या पूरा मध्य प्रदेश में भी बारिश हो रही होगी शायद।
0: आज तो नहीं हुई है, लेकिन रात को थोड़ा बहुत पानी गिरा है।
1: जी, हमारे यहाँ तो मनकारी में, खजुराहो में बहुत पानी गिरा है रात में, अभी भी पानी बादल है और रिमझिम रिमझिम बारिश भी हो रही है। तो ऐसे में बार बार मन कह रहा है कि एक गीत है, फिल्म का नाम है खतरों के खिलाड़ी।
0: अच्छा
1: हेलो,
0: हाँ जी, आवाज आ रही है मुझे।
1: हाँ, खरखर की आवाज आई कि
0: वो अब थोड़ा डिस्टरबेंस तो होगा, मौसम चेंज हो रहा है ना, तो
1: हाँ
0: थोड़ा सा तो होगा।
1: जी। फिल्म का नाम है खतरों के खिलाड़ी
0: हाँ जी
1: और गीत की बोल है कि तेरी मेरी प्यार भरी बातों में आग लग गई जी बरसातों में।
0: हाँ मिल गया हमको ये गाना, और बहुत अच्छा गाना है,
1: अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज साहब की
0: मोहम्मद
1: आवाज
0: अजीज
1: है। जी
0: जी। तो बिल्कुल कल के प्रोग्राम में आप अपना गीत जरूर सुनिएगा।
1: और कविता जी, ये गीत आपको डेडिकेट रहेगा। और हमारे प्रेमदास बाबा जी है, बेटा सिंह यादव जी हैं, और मणिराम पाल, जीतन पाल जी हैं, वो दिनकर सिंह चित्रकूट धाम से है, मांगीलाल चंदेल जी हैं,
0: बिल्कुल जी,
1: और हमारी
0: धन्यवाद।
1: बहन है पूनम सिंह कानपुर से, उनको भी डेडिकेट, सभी को डेडिकेट रहेगा ये गीत।
0: चलिए बहुत बहुत आभार,
1: बहुत बहुत कविता जी, आइए, स्वागत है, बार बार स्वागत है, बहुत
0: बिल्कुल
1: बहुत स्वागत है, आइए स्वागत है।
0: बिल्कुल आएंगे, धन्यवाद।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो,
1: पांडे। हाँ,
0: शी वॉज देश पांडे। कहाँ से? अच्छा, इंदौर से बोल रहे हैं। कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप?
1: आपकी परछाइयाँ।
0: ठीक है, आपकी परछाइयों का मिल जाएगा, हम जरूर सुनवाएंगे।
1: मुंडे ने
0: आपकी परछाइयाँ मैं देख के बताती हूँ कौन सा गीत
1: मुंह
0: है। कौन सा?
1: पर
0: अच्छा, अगर मुझसे मोहब्बत है। बिल्कुल, ये
1: हाँ,
0: गीत आप बिल्कुल सुन पाएंगे कल के प्रोग्राम में। ठीक है,
1: अगर
0: मैं कविता रावत बोल रही हूँ।
1: हाँ,
0: और
1: वो
0: कल,
1: मैं बर्फ में बीमार हुआ था।
0: हाँ, मैं समझ सकती हूँ आपकी आवाज़ से मुझे लग रहा है, लेकिन आप अपनी, बिल्कुल,
1: अरे आप आसमान हमको
0: अब वो मिलेगा तो मैं कभी फिर सुनवाऊंगी, लेकिन आज आपकी परछाई फिल्म का ये गीत आप जरूर सुन सकेंगे। कल 11 बजे सुनिएगा।
1: मिला है वो ही।
0: जी, चलिए, धन्यवाद।
1: हाँ, ओके।
0: ओके।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते।
1: नमस्ते बहन जी, नमस्ते।
0: कौन सा आप बोल रहे हैं?
1: ग्राम सनोतिया, जिला गुना, मध्य प्रदेश से आपका भाई मांगीलाल चंदेल बोल रहा हूँ बहन जी।
0: अच्छा मांगीलाल जी, कैसे हैं
1: जी
0: आप?
1: बस बढ़िया हूँ दीदी, आपकी दुआ से बढ़िया हूँ, भगवान की कृपा से। और मैं ईश्वर से आशा करता हूँ कि आप भी बढ़िया हो।
0: हाँ हम बहुत बढ़िया हैं। आप सभी का प्यार हम सभी के साथ है।
1: जी
0: बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: बहन जी, फिल्म का नाम रहेगा चित्रलेखा,
0: अच्छा।
1: और गाने के बोल रहेंगे, छा गए बादल नील गगन पे, घुल गया कजरा शान डाले।
0: वाह, बहुत ही प्यारा गीत है ये। मतलब बहुत कम
1: जी
0: लोगों ने इसको सुना होगा,
1: हाँ
0: है ना?
1: जी
0: ठीक है, तो ये गीत ज़रूर हमको मिल भी चुका है, और कल के
1: जी
0: प्रोग्राम में आप अवश्य सुनिएगा अपनी पसंद का ये
1: जी
0: गीत।
1: जी बहन जी, कुछ मित्रों को याद कर सकता हूँ?
0: बिल्कुल कर लीजिए।
1: फूलचंद पाल जी है मनकारी से, दिनकर सिंह है चित्रकूट धाम से, बेटा सिंह यादव जी हैं, प्रेमदास पावा जी हैं, और गोपाल ओझा जी हैं ककवासा मध्य प्रदेश से, और इन सभी को ये गाना डेडिकेट रहेगा बहन
0: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी।
0: जी।
1: नमस्कार बहन जी,
0: नमस्ते।
1: नमस्कार।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते। देर आए दुरुस्त आए, लास्ट कॉलर हो तुम। नंदनी
1: कॉलर हूँ मैं।
0: जी
1: ओ
0: हाँ।
1: माय गॉड, मैं कब से ट्राई कर रही हूँ बताएं।
0: हाँ हो जाता है कभी कभी। और क्या हाल है तुम्हारे? बहुत टाइम बाद तुमसे बात हो रही है।
1: हाँ मैम, मैंने ना 6 मंथ बाद कॉल किया है
0: ओ
1: यार, क्योंकि
0: बाप रे, 6 महीने तक इतना लंबा इंतजार। और बताओ और क्या हाल है?
1: ठीक है मैम। और आप कैसी हैं?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं।
1: जी, तो आज तो मैं सॉन्ग सुनूंगी। मूवी का नाम है भूतनाथ रिटर्न।
0: अच्छा भूतनाथ रिटर्न।
1: हाँ,
0: अच्छा
1: और सॉन्ग उसमें है ना, पार्टी तो बनती है।
0: हाँ।
1: ये वाला सॉन्ग सुनेंगे और डेडिकेट आपको रानू दीदी को रहेगा।
0: हाँ जी ठीक
1: और मैं
0: है।
1: एक बात और कहना चाहती हूँ।
0: हाँ
1: एक दीदी थी वंदना उपाध्याय, है ना, वो हमें याद कर रही थी, उनके लिए थैंक यू। जी,
0: अच्छा वंदना उपाध्याय,
1: वो हमको एक दिन याद कर रही थी, तो उनके लिए थैंक यू।
0: लेकिन वो अनाउंसर पैनल में तो नहीं है?
1: नहीं, वो वहां की है, जबलपुर की। अनाउंसर
0: अच्छा, चलो
1: नहीं है, वो कॉलर है। जी
0: कॉलर है ना। चलो ठीक है ठीक है,
1: जी
0: तुम्हारे ये इन बातों के जरिए उन तक ये मैसेज पहुंच ही जाएगा। ठीक है
1: जी
0: नंदनी,
1: जी जी
0: चलो ओके बाय बाय।
1: ओके मैम, बाय।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। अनुमति दीजिए अपने रेडियो सखी कविता रावत को नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
2: श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालटल मार्गों से शुरू हो गई है। 28 अगस्त तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान पूरे देश से लाखों श्रद्धालु पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन करेंगे। श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज सुबह अनंतनाग जिले के नुनवान और बालटल के बेस कैंप से श्री अमरनाथ गुफा मंदिर के लिए रवाना हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में इन दिनों स्कूल चलो अभियान चल रहा है। 15 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान के दौरान अधिकाधिक सांदीपनी विद्यालय भवनों को लोकार्पण और स्कूलों का युक्तियुक्तकरण कराया जाए ताकि विद्यार्थियों को इसी सत्र में अधिकतम लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के सभी धार्मिक महत्व के तीर्थ स्थलों पर विकास के लिए धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाए। ये प्रोत्साहन रजिस्ट्री शुल्क में छूट, अनुदान या अन्य रियायत स्वरूप में दिया जा सकता है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा की हैं। और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मुकाबला रविवार को लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। विरासत फिल्म का गाना है उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाजें हैं, संगीत है अनु मलिक का और गाने को लिखा है जावेद अख्तर ने। और पसंद करने वाले हमारे श्रोता है चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा और कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल ने इस गाने को पसंद किया है।

ये फरमाइश हम तक आई है गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या, करिश्मा की, और आप सभी ने पसंद किया है फिल्म हद कर दी आपने का ये गाना, जिसमें आवाज़ है जसपिंदर नरूला और साथियों की। आनंद राज आनंद का संगीत है और गाने को लिखा है आनंद बख्शी ने।

0: योर प्रॉब्लम।
1: बाय द वे तुम्हें क्या करना है?
0: बाय द वे कुछ वादे करने हैं, उन्हें पूरा करना है, संग जीना है, संग मरना है।
1: तो कर लो ना जो करना है, डोंट बॉदर मी।
0: रियली?

आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और ये फरमाइश हम तक आई है खंडवा से संजय, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने। आप सभी ने पसंद किया है फिल्म सोनी महवाल का ये गाना। आशा भोसले, शब्बीर कुमार की आवाज़ है, आनंद पक्षी के बोल है और संगीत है अनु मलिक का।

अब सुनिए फिल्म हिना का गाना आवाज़ लता मंगेशकर और साथियों की। रविंद्र जैन का संगीत है और पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका रॉबिन ने इस गाने को पसंद किया है। और साथ ही साथ ये फरमाइश हम तक आई है पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और आरजू ने इस गाने को पसंद किया है।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म राजनीति का गाना, कविता सेठ और साथियों की आवाज़ है। समीर ने गाने को लिखा है और आदेश श्रीवास्तव का संगीत है। और पसंद करने वाले हमारे श्रोता है कटनी से संतोष सिंह ठाकुर, अवधेश कुमार दुबे, सुमेर पटेल, सुदामा सेन, बालेलाल बड़ई और फिरन यादव, मुन्ना खान और साथ साथ ग्राम पहरुआ से राम कुमार लोधी और संजय पुरी ने इस गाने को पसंद किया है।

राजनीति फिल्म का गाना था आदेश श्रीवास्तव की आवाज थी, संगीत भी था आदेश श्रीवास्तव का और गाने को लिखा था समीर ने, और उसके साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर टीसी टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी ओटीपी पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
1: RBI कहता है ओटीपी या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।
2: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
3: क्या बात है सखी, बड़ी खुश नजर आ रही हो।
4: खुशी की तो बात है, हमारा पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा अब मंगलवार के साथ साथ गुरुवार और शुक्रवार को भी होगा।
3: अरे वाह, ये तो वाकई खुशी की बात है। समय क्या रहेगा?
4: वही दोपहर 1 बजे।
3: तो सुनना ना भूले कार्यक्रम महिला सभा।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: पर जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: लीजिए दोस्तों, एक बार फिर इस नई कड़ी के साथ हाजिर है आपका अपना दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी।
1: एक लड़का था गरीब, उसने भगवान को चिट्ठी लिखी। अब भगवान को किस पते पे चिट्ठी लिखता, लिख दी भगवान जी स्वर्गलोक। बस उस चिट्ठी में लिखा, भगवान जी मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और मेरे को अपनी स्कूल की फीस देना है और किताब कापी खरीदना है, मेहरबानी करके 100 रुपये भेज दें। अब चिट्ठी साहब पोस्ट ऑफिस के डब्बे में डाल दी। वो डब्बे से निकल के मुख्य डाकघर पहुंची। वहां पे जो जितने भी पोस्टमैन थे उन्होंने उस पत्र को पढ़ा और बड़ा कुछ हंसी का माहौल बन गया। उस वो चिट्ठी जो थी वो सबसे बड़े जो पोस्टमास्टर थे उन तक पहुंच गई। उन्होंने उसको पढ़ा, उसमें लिखा था भगवान जी स्वर्गलोक, मैं बहुत गरीब बच्चा हूँ और मेरे को फलाना ये सब स्कूल के पैसे देना है और ये वो सब 100 रुपये व्यवस्था भेज दें करके। अब वो पोस्टमास्टर विचार कर रहे हैं, सभी पोस्टमैन विचार कर रहे हैं कि देखो कितना प्यारा बच्चा है ये, इसने भगवान से 100 रुपये मांगे, अब कहाँ भगवान आएंगे, कहाँ उसको 100 रुपये देंगे। तो सभी डाक कर्मियों ने एक विचार किया, चलो भाई चंदा किया जाए। किसी के पास 5 रुपये थे, किसी के पास 2 रुपये थे, किसी के पास 10 रुपये थे, ऐसा करके चंदा किया गया। 75 रुपये चंदा हुआ। उस कार्ड में, पोस्ट कार्ड में उस बच्चे ने अपना पता जरूर लिखा था, भाई पैसे कहाँ पहुंचाए भगवान, तो पता जरूर लिखा था। तो सभी लोगों ने क्या किया, वो जब 75 रुपये जुड़ गए तो एक मनी ऑर्डर उस बच्चे को कर दिया। बच्चे को 75 रुपये का मनी ऑर्डर मिल गया, बच्चा खुश। उसने फौरन एक चिट्ठी लिखी भगवान को, पता वही, भगवान जी स्वर्गलोक। समाचार ये था, भगवान जी आपका भेजा हुआ 75 रुपये में 75 रुपये मुझको मिल गया है। मुझे विश्वास है भगवान जी कि आपने 100 रुपये भेजे होंगे, लेकिन ये पोस्ट ऑफिस वालों ने 25 रुपये खा लिए। मैं अपने कुत्ते के साथ एक दिन सुबह सुबह घूमने निकला, बाग बगीचे गया, यहाँ गया वहां गया, बड़ा अच्छा लग रहा था कुत्ते को चैन में, बड़ा अच्छा लग रहा था। अचानक एक सज्जन मिले मुझे रस्ते में, वो कहने लगे, क्यों इस गधे को कहाँ ले जा रहे। मेरा दिमाग खराब, मैंने कहा देखो इतना बढ़िया कुत्ता है ये मेरे पास और ये आदमी उस कुत्ते को देख के गधा बोलता। मैंने फौरन बोला, भाई साहब ये कुत्ता है गधा नहीं है। तो वो भाई साहब मुझसे बोलते हैं, मैं आपसे नहीं आपके कुत्ते से पूछ रहा हूँ। एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा, उसके पिता ने उससे पूछा, बेटा जब तुम बड़े हो जाओगे तो क्या करोगे, क्या बनोगे। लड़का बोलता है, बाबूजी हम बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे। तो उनके पिताजी बोलते, वेरी गुड बेटे, वेरी गुड, अच्छा जब तुम डॉक्टर बन जाओगे तो तुम क्या करोगे।
2: हम जब डॉक्टर बन जाएंगे ना पापा, तो हम लोगों का इलाज करेंगे, गरीबों का खूब खूब इलाज करेंगे, उनका सब गरीबों का हम फ्री में इलाज करेंगे। तो उनके पिताजी बड़े चिंतित हो गए। उन्होंने जब वो लड़का बड़ा हुआ तो इंजीनियरिंग कॉलेज में उसका नाम लिखवा दिया।
1: मेरे घर के सामने अचानक एक गधा मर गया। मैंने देखा गधा मर गया वो मेरे घर के सामने, तो संबंधित विभाग को मैंने टेलीफोन किया कि भैया ये यहाँ हमारे घर के सामने है, वो गधा मर गया है, आप लोग मेहरबानी करके आके उसको उठाओ ले जाओ। तो संबंधित विभाग वाले टेलीफोन पे मेरे को क्या जवाब देते हैं, कहले भाई ऐसा है आपके घर के सामने मरा है, तो क्रियाक्रम अगर आप करें तो ज्यादा अच्छा कहलाएगा, कोई धर्म की भी बात है, आपके सामने गधा मरा है आपके घर के सामने, तो क्रियाक्रम आप कराओ। मेरा दिमाग खराब, मैंने टेलीफोन पे उसी समय उनको जवाब दिया, खैर वो क्या है कि क्रियाक्रम तो मैं गधे का कर लूंगा, लेकिन मैंने ये सोचा कि उनके सभी रिश्तेदारों को पहले बता दूं, है ना। क्यों भीखू भिखारी, यहां आओ, ये लो 1 रुपये मेरी तरफ से। और एक बात बताओ, तुम आज यहाँ रेलवे स्टेशन के आसपास क्यों भीख मांग रहे हो, पहले तो तुम मांगते थे सब्जी मंडी में, वहां सब्जी बाजार के आसपास। तो भीखू भिखारी मुझसे बोलता, हाँ बाबू जी हम पहले वहां सब्जी बाजार में ही भीख मांगते थे, वो रेलवे स्टेशन के पास हम इसलिए आज भीख मांग रहे हैं कि परसों नरसों हमारी लड़की की शादी हुई, तो दहेज में कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा दामाद।

0: तो मैंने सब्जी बाजार वाला एरिया उसको दहेज में दे दिया।
1: और अब एक और हंसोड़, विनय जैन।
2: एक साहब अपने किसी निजी काम से बंबई पहुंचते हैं और अपने बंबई में रह रहे मित्र के घर पहुंच जाते हैं। सारा काम कार्यालय का निपटाने के बाद जैसे ही शाम को पहुंचे तो उनके दोस्त का घर और उनकी हालत देख के थोड़ा सा जो मेहमान है उसको शर्मिंदगी का एहसास होता है कि साहब ये हमारा दोस्त है, इनका छोटा सा घर है, एक कमरे का फ्लैट और उसमें सोने के लिए एक ही पलंग, चार बच्चों का घर, हस्बैंड वाइफ मिला के छह लोग। तो जैसे ही शाम होती है, सोने का समय आता है, तो थोड़ा संकोच में मेहमान आ जाता है और मेजबान से बोलता है, साहब हमें थोड़ा शर्मिंदगी का एहसास हो रहा है, आपका छोटा सा घर है और एक ही पलंग है, ऊपर से ये चार बच्चे हैं। तो दोस्त तो फौरन जवाब देता है, हाँ चिंता की कोई बात नहीं, सब इंतजाम हो जाएगा। साहब भी थोड़ा आश्चर्य में कि इंतजाम कैसे हो जाएगा। जैसे ही रात में सोने का समय आता है तो मेजबान पहले अपने इकलौते पलंग पर अपने दोनों बच्चों को लिटाता है। 10 मिनट बाद वो बच्चे सो जाते हैं तो दोनों मियाँ बीबी दोनों बच्चों को एक एक कंबल में लपेट के दीवार से टिका के खड़ा कर देते हैं। उसके बाद दूसरे दो बच्चों को पलंग में लिटाते थे, 10 मिनट बाद वो दो बच्चे भी सो जाते हैं, उनको भी एक एक कंबल में लपेट के दीवार में टिका के खड़ा कर दिया जाता है और मेहमान से मेजबान बोलता है, साहब आपके लिए पलंग तैयार है, आप सो जाए। तो मेहमान बोलता है कि और आप लोग? तो साहब बोलते हैं कि हम लोग की चिंता नहीं, सब इंतजाम हो जाएगा। भैया भी बहुत थके हारे रहते हैं, पलंग पर लेटते ही से सो जाते हैं। जैसे भैया की नींद खुलती है तो आप भी कंबल में लपटे दीवार से टेके खड़े रहते हैं और पति पत्नी दोनों सोते रहते हैं।
3: एक बात तो आपसे हम खास तौर पे कहना चाहते थे जो भूल रहे हैं। अरे इस कार्यक्रम का नाम है हंसना मना है।
2: एक ऐसा आइटम सुनाने जा रहा हूँ जो कि व्यंग है। एक नेताजी जिनका की तगिया कलाम था, बात बात में कहा करते थे कि राजनीति हो गई। हर बात में वो कहा करते थे कि अरे साहब राजनीति हो गई। एक बार आप तमाम लोग भी जान लें, स्वर्ग और नरक में जाने के लिए इंटरव्यू लिया जाता है। जो लोग हम और आप अपनी अपनी जीवन लीला समाप्त करके ऊपर पहुंचते हैं तो जो इंटरव्यू में पास होता है वो स्वर्ग में जाता है, जो फेल होता है वो नरक में जाता है। और जो इंटरव्यू लिया जाता है उसमें जो नेताजी हैं उनका नंबर 2-3 लोगों के बाद आने वाला है। इंटरव्यू चालू है, सबसे पहले पहले कैंडिडेट को बुलाया गया, इंटरव्यू चालू है। कैंडिडेट नंबर 1,
4: नमस्ते साहब, कहाँ से आए?
2: साहब इंडिया से आए हैं।
4: हाँ इंडिया से आए हो, इंडिया की स्पेलिंग जानते हो?
2: साहब आई पहले आता है, फिर एन आता है, फिर डी आता है, फिर आई आता है, फिर ए आता है, INDIA, मतलब इंडिया। बड़े शाबाश, स्वर्ग में जाओ। दूसरे को बुलाया,
4: हाँ साहब कहाँ से?
2: फ्रॉम जापान।
4: जापान की स्पेलिंग जानते हो?
2: साहब JAPAN।
4: बड़े शाबाश, तुम भी स्वर्ग में जाओ।
2: जैसे ही नेताजी का नंबर आया, चित्रगुप्त साहब ने फौरन सवाल किया,
4: बोले भैया तुम चेकोस्लोवाकिय स्पेलिंग बताओ।
2: अब चेकोस्लोवाकिय की स्पेलिंग नेताजी मिस्टेक कर गए, बोले नरक में जाओ। नेताजी फौरन चिल्लाए, गुरु राजनीति हो गई, सबसे सरल पूछे, हमसे बस कठिन पूछे, इंटरव्यू एक बार फिर से होना चाहिए, नहीं तो हम जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगवा देंगे। एक बार फिर से इंटरव्यू दोबारा करवाया गया, एक बार फिर से इंडिया वाले को बुलाया गया और पूछा गया, हाँ बोले साहब एक बात बताइए, ये दक्षिण अफ्रीका में सबसे बड़ा भूकंप कब आया था? बोले साहब दक्षिण अफ्रीका में सबसे बड़ा भूकंप सन 1903 में आया था। बोले शाबाश, आप स्वर्ग में जाइए। दूसरे को बुलाया जापान वाले को, बोले साहब आप बताइए दक्षिण अफ्रीका के भूकंप में कितने लोग लगभग मारे गए थे? बोले साहब लगभग 19,998 लोग मारे गए थे। बोले शाबाश, आप भी स्वर्ग में जाओ। जैसे ही नेताजी का नंबर आया तो फौरन से सवाल किया गया, बोले साहब दक्षिण अफ्रीका के इस भूकंप में और ज्वालामुखी के फटने में जितने लोग मारे गए थे सबका नाम बताओ। नेताजी वहां भी मिस्टेक कर गए, बोले साहब नरक में जाओ। नेताजी फिर चिल्लाए कि गुरु राजनीति हो गई, साहब पॉलिटिक्स हो गई, सबसे सरल पूछा जाता है, हमसे ही कठिन सवाल किया जाता है, तो इसके लिए एक बार फिर से जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लग गए। लोगों ने यह तय किया कि साहब ठीक है इंटरव्यू फिर से होना चाहिए, लेकिन इस बार ऊपर से आदेश हो गया कि इस बार इंटरव्यू आखिरी होगा, बिल्कुल अंतिम होगा, फाइनल होगा और लिखित में होगा। राइटिंग में एग्जाम होगा, जो सही लिख के बताएगा वो स्वर्ग में जाएगा, जो गलत लिखेगा वो नरक में जाएगा। इसके बाद

0: कोई इंटरव्यू नहीं होगा। नेताजी कहने लगे हाउ, इंडिया वाले को बुलाया, बोले साहब लिख के बताइए कौवा काव काव, कौवा काव काव। बोले शाबाश स्वर्ग में जाओ। जापान वाले को बुलाया, बोले साहब लिखिए बिल्ली म्याऊं म्याऊं, बिल्ली म्याऊं म्याऊं। बोले शाबाश बिल्कुल सही लिखा है, आप भी स्वर्ग में जाइए। जैसे ही नेताजी का नंबर आया, नेताजी को देखते ही से फौरन सवाल किया, बोले साहब आप लिखिए घोड़ा।
1: एक साहब स्कूटर में चले जा रहे थे, बड़े बढ़िया मजे से चले जा रहे थे, गाना वाना गाते हुए, हॉर्न बजाते हुए, अचानक ट्रैफिक पुलिस ने उनको रोका, ए स्कूटर वाले भाई गाड़ी रोको। उन्होंने अपनी गाड़ी रोक दी, किनारे किया अपने वाहन को और बातचीत चालू हो गई, किनकी, वाहन चालक की और ट्रैफिक पुलिसमैन की। ट्रैफिक पुलिसमैन बोलता है हाँ ये गाड़ी ये स्कूटर आपका है? तो वो बोलते हैं हाँ साहब हमारे स्कूटर है, साहब हमारे स्कूटर है, ये हम स्कूटर चलाता है। अच्छा ठीक है, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है, आपके पास इस स्कूटर के चलाने का लाइसेंस होगा? तो वो सज्जन बोलते हैं यस सर आई एम लाइसेंस होल्डर, हम लाइसेंस रखता है, अभी अभी आपको देता अगर आप बोलता तो। ट्रैफिक पुलिस वाला बोलता है बिल्कुल दिखाइए, हमको चेक करना है। उन्होंने अपने दाहिने जेब में हाथ डाला, बाएं में डाला, आगे डाला, पीछे डाला जेब में हाथ, लेकिन लाइसेंस हो तो मिले ना, लाइसेंस तो था ही नहीं। तो वो सज्जन बोलते हैं साहब ऐसा ऐसा ट्रैफिक पुलिसमैन साहब है, आई एम वेरी वेरी सॉरी सर, वो क्या के लाइसेंस हम घर में छोड़ दिया, साहब हम घर में लाइसेंस छोड़ दिया है, अगर आप बोलता तो अभी ला के देता आपको और आपको दिखाता। तो ट्रैफिक पुलिसमैन समझदार था, उसने कहा नहीं गलत बात, आप विदाउट लाइसेंस गाड़ी चला रहे हैं, आपका चालान किया जाएगा। तो वो बोलते हैं सज्जन ऐसा छोड़ दो साहब, आई एम वेरी सॉरी, आई एम हार्डली सॉरी सर, आई एम वेरी सॉरी, आई एम रियली आई एम विदाउट लाइसेंस दिस टाइम, अभी लेके आता सर देता। पुलिस वाला बोलता नहीं आपको कहीं जाने जाने नहीं दिया जाएगा, आपका चालान किया जाएगा, आप अपना नाम बताइए। तो बोलते हैं साहब ऐसे हमारा नाम मत पूछो, आप घबरा जाएगा साहब। क्या क्या घबरा जाएगा, आप अपना नाम बताइए, आपका चालान किया जाएगा। वो फिर से बोलते हैं छोड़ दो साहब, हमारा नाम मत पूछो, आपको घबराहट होएगा, आपका हार्ट अटैक हो जाएगा। क्यों हार्ट अटैक हो जाएगा, आप अपना नाम बताइए, हम प्रेम से लिखेंगे उसको और तरीके से लिखेंगे। तो वो सज्जन स्कूटर वाले बोलते हैं अच्छा ट्रैफिक पुलिसमैन आप हमारा नाम लिखो, हाँ कह लेंगे बोलिए, हाँ लिखो, हाँ बोलिए, हाँ लिखो, हमारा नाम है श्री वेंकट मल्लिका रावर्जुन रावण राव वल्द सिंह सुन्नी चिन्नप्पा नागलिंगम वल्द मच्च कच्च वरा नरसिंह वामन पुरुष राम रामकृष्ण बुद्ध कलंक पिल्ले। तो पुलिस वाला क्या बोलता है, पुलिस वाला क्या बोलता है, ये तुम्हारा नाम है, अच्छा एक काम करो तुम जाओ यहाँ से।
0: साहब एक इंटरव्यू की तरफ लिए चल रहा हूं जहां दो लोग एक
2: है। बोले साहब वैज्ञानिकों की भी यही राय है लेकिन क्या है इसे आज तक सिद्ध नहीं कर पाए हैं।
0: बोले ठीक है भैया, ये तो साहब फटाफट जवाब देते हैं, इनको बिल्कुल बाहर करो। बोले आप जाइए, आपको बाद में बुलाया जाएगा। नेक्स्ट तो जैसे ही डरपोंक वाला किनारे बैठा था तो उसको जाके इनके कान में पता नहीं क्या फूंक दिया, तो डरपोंक वाला भी सीना तान के अंदर इंटरव्यू देने के लिए तैयार। डरपोंक वाले से पहला सवाल किया गया, बोले हाँ साहब आपका नाम बताइए, बोले साहब शाहजहां। बोले आपका जन्म कब हुआ, आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए, जन्म तिथि। बोले साहब प्रयास तो 1857 से था, 1947 में हो ही गया। बोले भैया पागल आगल हो गए क्या, तुम्हारा दिमाग खराब होगा। बोले साहब वैज्ञानिकों की भी यही राय है लेकिन इसे सिद्ध नहीं कर पाए आज तक।
3: दो महिलाएं आपस में बात कर रही हैं, काहे भाई जे तुम आओ मोड़ा समझो इतो बड़ो होगा, अबे हम कितने साल पहले देखे थे तो कितो छोटो रहो, नहीं अब कितो बड़ो होगा। हाँ भाई कहाँ बताए, जब मोड़ा हम आओ समझो कि बड़ो तो होगा, है मल बिल्कुल ऐसो बिल्कुल भाई, मोड़ा हम आओ सनक सो गाओ पगला सो होगा। कहे भाई का बात है, तुम आओ तो मोड़ा पहले तो छोटो सो दिखा तो, अभी तो बड़ो होगा। कहा भाई बड़ो ना हुए तो बड़ो होगा, नहीं तो जा संतोष कहाओ, जो संतोष है तुम आओ। हाँ भाई संतोष ही तो है भाई, भगवान का सम इतो बड़ो होगा, इतो सो देखो तो, हाँ इतो बड़ो कितो बड़ो होगा भाई, इसकी उम्र कितनी कहल आ गई। अब जहाँ समझ लो भाई कि इनकी उम्र तो हमें याद नहीं, नहीं भाई मतलब

0: में पैदा हुआ जे पूछ रहे। नहीं भाई अब सनन तो हम नहीं जाने, अब भूल जाते हैं, इतनी उम्र हो गई। मन जे समझ लो कि जौन दिना हमारी सास मरी थी वो इतना जो संतोष भाव जा समझ लो कि उतने सास मरी है और इतने हमें संतोष भाव नहीं मगर ना वो हमने डेट पूछ रहे हैं कि किस डेट को हुआ है, किस सन में हुआ है, ये हमको जानना जरूरी है। नहीं भाई अब जे समझ लो कि डेट तो मालूम नहीं है, अब जे समझ लो कि जब हमारे छोटे वाले देवर खो मने चोरी के सजा में इल्जाम में सजा भई थी तब ही हमारा संतोष भाव हमको संतोष भाव नहीं भाई तुझे समझोगी कौन से साल में कहलाओगी, मने 74 में कहलाओगी, 75 में कहलाओ। नहीं भाई अब जो 75 और 78 तो हम नहीं जाने, मगर जब समझ लो कि जो हमारे जेठ सास के भी जेठ लगते ना तो वो जेठ को हमारे उनके घर में वो फांसी लगा के उनकी बड़ी बड़ी लड़कियां खत्म हो गई थी तब हमें संतोष बहुत हो मैंने जब जब जे घटनाएं घटी हैं हमारे घर में कि कौन को फांसी लगवा के मारो कि कौन जे हमारो हथकड़ी में चलोगे अंदर तो ये जैसे जो काम भाव रहते हमें संतोष भाव दो व्यापारी जो एक गुड़ और राशन का सामान बेचा करता था और दूसरा जो सिर में और हाथ पैर में लगाने वाले तरह तरह के तेलों का व्यापार किया करता था, इन दो व्यापारियों की एक छोटी सी घटना सुनाने जा रहा हूँ जिसमें दोनों अपनी अपनी दुकान में बैठे रहते हैं और ग्राहकों की कमी से परेशान रहते हैं। ना तेल वाले के पास तेल का ग्राहक आ रहा है, ना गुड़ वाले के पास गुड़ का ग्राहक आ रहा है। अचानक दोनों एक ऐसा एक प्लान बनाते हैं कि गुड़ वाला तेल वाले को अपने पास बुलाता है और उससे बोलता है,
1: देखो तेल वाले तुम भी अपनी दुकान में खाली बैठे रहते हो और मैं भी अपनी दुकान में खाली बैठा रहता हूँ, तो क्यों ना एक काम किया करें, हम तुम्हारी दुकान में आएंगे ग्राहक बनकर और तुम हमारी दुकान में आओगे ग्राहक बनकर। उससे क्या होगा? अरे साहब उससे क्या होगा, चार लोग देखेंगे तो उनको भी ऐसा लगेगा कि भैया की दुकान में ग्राहक आते जाते रहते हैं। ये आइडिया दोनों को जम जाता है तो गुड़ वाला तेल वाले को अपने पास बुलाता है कि पहले तुम हमारी दुकान में कुछ खरीदने के लिए आओ। तेल वाला ऐसे ही उसकी दुकान में आता है और उससे सवाल करता है, क्यों भाई साहब ये गुड़ कैसे दिए? ये साहब तरह तरह के गुड़ हैं, ये गुड़ 40 रुपए किलो है, ये गुड़ 30 रुपए किलो है और ये वाला गुड़ 35 रुपए किलो है। तो एक काम कीजिए साहब, ये वाला गुड़ हमको दे दीजिए 2 किलो बोतल में। बोतल में? अरे यार तेल वाले व्यापारी भाई तुम्हारी बुद्धि भी बोतल ही में है, है? तुम तेल बेचते हो तो तुम्हें हमेशा बोतल याद रहती है, गुड़ कभी बोतल में बेचा जाता है? अरे गुड़ के लिए आदमी घर से थैला लाता है, थैला थैला, समझे? तुमको ये बोलना चाहिए कि भाई हमको थैले में गुड़ चाहिए तो तुम बोल रहे हो कि बोतल में है। तुम एक फिर से आओ, फिर से जाओ, फिर से जाओ, अब फिर से आना हमारी दुकान में, हम बैठे अब सुधार के बोलना। दोबारा तेल वाला आता है गुड़ की दुकान में, फिर वही सवाल करता है, साहब वो गुड़ चाहिए था? हाँ कितना चाहिए था, कौन सा चाहिए था? साहब ये वाला क्या भाव? हाँ ये 30 रुपए किलो है। साहब ये वाला 2 किलो दे दो।

0: पर साहब 20 रुपए किलो। हाँ तो 2 किलो बुड़ दो, 2 किलो तौल दो बस। तो तेल वाला फौरन जवाब देता है, बोतल लाए हो?
1: हंसना मना है,
2: हंसना मना है,
1: अरे हंसना मना है,
2: हंसना मना है।
1: कोशिश कोई लाख करे, कहता रहे कि हंसना मना है, मगर लोग हंसेंगे, खिलखिलाएंगे। एक बात तो आपसे हम खास तौर पे कहना चाहते थे जो भूल रहे हैं। अरे इस कार्यक्रम का नाम है हंसना मना है।
3: चुटकुले सुनना सुनाना संजय गायकवाड़ की आदत में शुमार है, मगर अंदाज बड़ा अलग। सुनेंगे तो मजा आ जाएगा, आइए सुनते हैं।
4: अभी शादियों का सीजन चल रहा था साहब, तो मैं अपने एक दोस्त के यहाँ गया। श्रीवास्तव जी के यहाँ रिसेप्शन हमें अटेंड करना था, मैं अपने दोस्त के यहाँ गया। मैंने दरवाजे पे आवाज दी, तिवारी जी, तिवारी जी। तो दरवाजा खोला, तिवारी जी रात को 8:30 बजे सो के उठे। अरे हमने ठीक से तो हो जाओ यार। कहो भाई कैसे? अरे हमने कहा यार श्रीवास्तव जी क्या रिसेप्शन में चलना नहीं है क्या? तो तिवारी जी हमसे कहने लगे, यार भैया हम ना चल सकेंगे यार, हमें क्या है चश्मे के बगैर कुछ दिखता नहीं है, हैं शाम के समय हमें रतौंधी आती है, तो क्या है हमारा चश्मा हो गया, फूट गया है, तो इसलिए हम तो चल नहीं सकेंगे। अरे हमने कहा हद कर रहे हैं तिवारी जी, आप हमारे साथ में चलो, हैं कोई गिद्ध भोजन तो है नहीं, डाइनिंग टेबल पे भोजन लगा रहेगा, आप चलना, बैठ जाना हमारे बाजू में और चल के भोजन शुरू कर देना। तो तिवारी जी हमसे बोले, लेकिन यार भैया ये कैसे पता चलेगा यार कि सबने शुरू कर दिया? हमने कहा हद करते हो आप, जब सब लोग शुरू कर देंगे तो धीरे से हम आपको कोहनी मार देंगे, आप समझ लेना मामला शुरू हो गया है, हाथ का इशारा हम आपको कर देंगे धीरे से। तो तिवारी जी बोले, हाँ यार ये बहुत बढ़िया स्टाइल यार। सभी लोग मेहमान आ चुके थे श्रीवास्तव जी के यहाँ, हम पहुंचे साथ में तिवारी जी पहुंचे, सभी की थालियों में मीठा मिष्ठान रखा जा चुका था। उसी वक्त मेरे गले पे यहाँ एक मच्छर बैठा, मैंने मच्छर को भगाया, बाजू में तिवारी जी बैठे थे, धोखे से कोहनी लग गई। भैया क्या समझे कि शुरू? हमें बड़ा अपमान लगा, हमने मना करने के लिए इनको दो कोहनी मारी, हमने मना करने के लिए इनको दो कोहनी मारी, तो ये क्या समझे कि लोग जल्दी जल्दी खा रहे, तो जो जल्दी जल्दी खाने लगे और ज्यादा अपमान। हमने मना करने के लिए इनको 3 कोहनी मारी, तो जो कहते का भैया गायकवाड़ का लूटा मारी मच गई का। अब साहब एक बहुत अच्छा व्यंग मैं अब आपके सामने पेश कर रहा हूं। जैसा कि पूरे हिंदुस्तान में इस समय चुनाव की सरगर्मी है, एक नेता जी अपने 4 साथियों के साथ जनसंपर्क के लिए निकले और तरह तरह के लोगों से मिलना जुलना और वोट मांगने के लिए हाथ जोड़ना शुरू कर दिया। भैया जी याद रखना 24 तारीख को भूलना नहीं, बहन जी हाँ आप भी याद रखना, भाई लालटेन याद रखना भूलना नहीं, माता जी 24 तारीख को भूलना नहीं। तो माता जी न जाने कौन से मूड में थी, अचानक कहने लगी,
5: अरे चाह रे तुम्हारे ऊपर से तो हमारा विश्वास ही उठ गया, 5 साल में एक बार तो सकल दिखाते हो और नेता बन जाने के बाद में सब बिल्कुल जनता का ध्यान ही भूल जाते हो, और हमें तो बिल्कुल तुम लोग को कोई को वोट नहीं देना, सबने अपना अपना घर भरा है और हम किसी को वोट नहीं देंगे, समझ गए ना, हमें तो भ्रष्टाचारियों से बिल्कुल सख्त नफरत है। तो नेताजी को गुस्सा आ गया, लेकिन उनने अपनी नेता बुद्धि दौड़ाई और बहुत सहज तरीके से माताजी के सामने हाथ जोड़ के कहा, नहीं नहीं माताजी आप ये कैसी बात कर रही हैं, हैं आप बताइए देश में ये इतने सारे नेता हैं, ये 5 उंगलियां हैं मेरे हाथ की, सब एक समान है क्या? नहीं है, हैं देखो ऐसे ही देश में बहुत सारे नेता हैं, तो कोई लोग भ्रष्टाचारी हैं, कुछ लोग नहीं हैं, और जो नहीं है वो ही तो हम हैं। आप तो 24 तारीख को हमारी को वोट दो। अब व्यंग्य पे आइए साहब, बिल्कुल मौलिक व्यंग्य दे रहा हूं। माता जी नेताजी की बात सुन के कहने लगी,
6: बेटा मजबूरी महिला को बता रहे हो कि जे उंगलियां छोटी हैं कि बड़ी हैं, मैंने भी जे बाल धूप में सफेद नहीं करे, मैं भी जानती हूँ कि उंगलियां छोटी बड़ी हैं, लेकिन आज से तुम भी इतना जान लो कि जब खाती हैं तो सब खट्टी तो हो जाती हैं।
4: और साहब मिमिक्री का एक छोटा सा मौलिक आइटम में पेश

0: रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने घर में कुत्ता पाल के रखा है। हम लोग मराठी भाषा में बात करते हैं, हमारे घर का कुत्ता। हमारे हिंदुस्तान का संस्कार देखे कि हमारी भाषा को देख सुन के मराठी बोलने लगा। हमारे घर के थोड़ा सा आगे एक डेनियल परिवार रहता है, क्रिश्चियन फैमिली रहती है। उनके घर में थ्रू आउट अंग्रेजी का चलन है, उन लोग अंग्रेजी भाषा में बात करते हैं। उनके घर का कुत्ता जो है साहब, उनकी अंग्रेजी भाषा को देख सुन के अंग्रेजी बोलने लगा। सुबह का वक्त मैं अपने घर के कुत्ते को घुमाने के लिए निकला और डेनियल साहब अपने घर के कुत्ते को घुमाने के लिए निकले। हम और डेनियल साहब आपस में मिले तो बातें शुरू हो गईं, लेकिन मेरे घर के कुत्ते को पहली बार डेनियल साहब के घर के कुत्ते ने देखा तो उसने अंग्रेजी में प्रश्न किया और हमारे घर के कुत्ते ने मराठी में जवाब दिया। ये अंग्रेजी प्लस मराठी, ये मौलिक आइटम मिमिक्री का मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुनिए साहब, पहले सुबह का वक्त मेरे घर का कुत्ता डेनियल साहब के घर के कुत्ते ने जैसे ही हमारे घर के कुत्ते को देखा तो अंग्रेजी में प्रश्न किया। कौन हो तुम? हमारे घर का कुत्ता तुरंत मराठी में बोला, भाऊ।
1: और दोस्तों, हंसने हंसाने का यह सिलसिला आगे जारी रहेगा, मगर आज यहीं आपसे इजाजत मांगता है आपका दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी।

0: अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक हंसना मना है की दूसरी कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रदेश के 18 जिलों में नर्मदा जयंती कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि अब नर्मदा समग्र की बैठक हर महीने होगी। उन्होंने नर्मदा परिक्रमा पथ पर मार्ग संकेतक लगाने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि प्रदेश में इन दिनों स्कूल चलो अभियान चल रहा है। 15 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान के दौरान अधिकाधिक सांदीपनि विद्यालय भवनों का लोकार्पण एवं स्कूलों का युक्तियुक्तकरण कराया जाए ताकि विद्यार्थियों को इसी सत्र में अधिकतम लाभ मिल सके। प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की नामांकन भरने की अंतिम तिथि 13 जुलाई है। 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 अगस्त को मतगणना के साथ नतीजों की घोषणा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश के सभी धार्मिक महत्व के तीर्थस्थलों पर विकास के लिए धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाए। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालटल मार्गो से शुरू हो गई है। 28 अगस्त तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान पूरे देश से लाखों श्रद्धालु पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन करेंगे। श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज सुबह अनंतनाग जिले के नुनवान और बालटल के बेस कैंप से रवाना हुआ। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मुकाबला रविवार को लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा और बीसीसीआई ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। यह श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: ये आकाशवाणी इंदौर है। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर। दोपहर का 1 बजा है। अब सुनिए महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा।

स्वागत है सखियों आप सभी का आपके मनपसंद कार्यक्रम महिला सभा में। आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी अपनी दोस्त शिखा साहू। तो स्वीकार कीजिए बहुत सारे स्नेह के साथ मेरा नमस्कार। सखियों, जैसे हर इंसान की एक जैसा नहीं होता, जैसे कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता ना, इसी तरह हर इंसान की ज़रूरतें भी एक जैसी नहीं होती। हम अपने ही परिवार की बात करें ना, तो एक समान खान पान होने के बावजूद शरीर में पोषण की ज़रूरतें अलग अलग होती है। किसी को अधिक ऊर्जा चाहिए तो किसी को अधिक प्रोटीन, किसी को बीमारी से उबरने के लिए अतिरिक्त पोषण, यदि किसी को हाई बीपी है तो नमक कम चाहिए, सोडियम कम है तो नमक ज़्यादा चाहिए, शुगर बड़ी है तो मीठा कम चाहिए, तो वहीं किसी का भोजन जो है ना मीठे के बिना पूरा नहीं होता। यानी अलग अलग व्यक्तियों की उनकी तासीर की हिसाब की डाइट, और ये डाइट कहलाती है सखियों फॉर्मुलेटेड डाइट। यानी एक ऐसा आहार जिसे वैज्ञानिक तरीके से किसी विशेष आयु वर्ग, स्वास्थ्य स्थिति या पोषण संबंधी आवश्यकता को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज जो होते हैं ना सखियों, बहुत ही संतुलित मात्रा में होते हैं। यानी जैसी आवश्यकता वैसी मात्रा, ताकि शरीर को आवश्यक पोषण बराबर मात्रा में मिल सके। अब सवाल ये है कि इसे कब और क्यों लिया जाता है। तो सखियों मैं आपको बता दूं कि जब किसी व्यक्ति को सामान्य भोजन से पर्याप्त पोषण नहीं मिल पा रहा हो, या फिर डॉक्टर या डाइटिशियन यह महसूस करे कि शरीर को अब किसी किस्म के विशेष पोषण की ज़रूरत है, तब फॉर्मुलेटेड डाइट की सलाह दी जाती है। सखियों इस डाइट से शरीर को संतुलित और आवश्यक पोषण तो मिलता ही है, बीमारी, ऑपरेशन या लंबे समय की कमजोरी के बाद रिकवरी में भी मदद मिलती है। ये बुजुर्गों या कम भूख लगने वाले लोगों की पोषण संबंधी ज़रूरतें पूरी करने में सहायक होता है। कुछ विशेष रोग जैसे डायबिटीज़ है या फिर कुपोषण है, इसमें डॉक्टर की सलाह इस मामले में बहुत उपयोगी हो सकती है, और ये सखियों शरीर की ताकत और ऊर्जा को बनाए रखने में मदद करता है। तो सखियों फॉर्मुलेटेड डाइट अगर अपने परिवार में किसी को ज़रूरत है, किसी का शारीरिक विकास जो है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है, तो आप डॉक्टर की सलाह से इस डाइट को लिखवा सकते हैं। अब सखियों करते हैं आज के दिन की बात। आज यानी 1 जुलाई को प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस है। ये दिन हमसे कहता है सखियों कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल हमें छोड़ना होगा, इनके दुष्प्रभावों के प्रति सभी को जागरूक होना होगा, क्योंकि एक सिंगल प्लास्टिक बैग पूरी तरह से नष्ट होने में मेरी सखियों सैकड़ों वर्ष लगाता है। ये नदियों, झीलों और समुद्रों को प्रदूषित करता है, और समय के साथ ये जो प्लास्टिक है ना, माइक्रोप्लास्टिक बन जाता है, जो भोजन और पानी के माध्यम से हमारे शरीर तक पहुंचकर हमें बीमार करता है। इसलिए सखियों हमें चाहिए कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग जो है वो कम करें। मेरे ख्याल से तो ख़त्म कर देना ही ठीक होगा। जब भी खरीदारी के लिए जाए, कपड़े या जूट की थैला अपने साथ रखें, क्योंकि सखियों धरती को प्लास्टिक का बोझ नहीं, हरियाली का संबल चाहिए। तो कपड़े का थैला अपनाइए, आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ, स्वच्छ और सुरक्षित भविष्य दीजिए। एक गीत के साथ सखियों कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। गीत में आवाज़ें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की, और गीत लिया है हमने फिल्म धन दौलत से। तो आइए सुनते हैं।

0: सखियो, शिक्षा जो है ना वो केवल डिग्री पाने का माध्यम नहीं होता, बल्कि सपनों को उड़ान देने की सबसे मजबूत सीढ़ी होता है। लेकिन कई बार है ना आर्थिक अभाव प्रतिभा के रास्ते में दीवार बन जाती है। ऐसे में सरकार की कुछ योजनाएं उन सपनों को सहारा देती है जो परिस्थितियों से हारना नहीं चाहते। ऐसी ही एक पहल है मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना। जी हाँ सखियो, इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करना, उन्हें प्रोत्साहित करना है। सखियो, इस योजना के अंतर्गत जो पात्र विद्यार्थी हैं वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने में उन्हें आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि फीस की चिंता से वो और उनका परिवार मुक्त हो जाए, उनके सपनों के आड़े ये चिंता बिल्कुल ना आए। किसी भी मेधावी छात्र या छात्रा की पढ़ाई केवल आर्थिक कठिनाइयों के कारण बीच में ना छूटे। इस योजना के उद्देश्यों की बात करें सखियो, तो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है, प्रतिभाशाली युवाओं को आगे बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध कराना है, शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर और सशक्त समाज का निर्माण करना है, और आर्थिक कारणों से जो बच्चे जो छात्र पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं उनकी समस्या को कम करना है। यदि आपके परिवार या आपके आसपास के परिवारों में कोई भी ऐसा विद्यार्थी है जो इस योजना की पात्रता को पूरी करता है तो उसे इस योजना की जानकारी जरूर दीजिएगा मेरी सखियो। सही समय पर मिली जानकारी जो है ना वो किसी के भी भविष्य को नई दिशा दे सकती है। याद रखिए सखियो, शिक्षा पर किया गया हर निवेश केवल एक व्यक्ति का नहीं होता बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र के उज्जवल भविष्य का निवेश होता है। अब बात जब हम शिक्षा की कर रहे हैं ना, तो शिक्षा के क्षेत्र में हम महिलाओं के लिए क्या करियर विकल्प हो सकते हैं, ये प्रश्न अहम है। तो आइए आपको इसी विषय पर एक भेंटवार्ता सुनवाते हैं। डॉक्टर रागिनी माथुर से बात की है दुर्गेश नंदिनी ने, तो आइए सुनते हैं ये भेंटवार्ता।
1: सखियो, शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के लिए कई करियर विकल्प मौजूद हैं, जिनमें शिक्षण, उच्च शिक्षा परामर्श, विशेष शिक्षा और शिक्षा प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र शामिल हैं। ये वो क्षेत्र हैं जो महिलाओं को लचीलापन, अच्छा कार्य, जीवन संतुलन और समाज में सकारात्मक प्रभाव डालने का अवसर प्रदान करते हैं। आज हमारी बातचीत का विषय है शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के लिए करियर विकल्प। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं शिक्षाविद रागिनी माथुर। नमस्कार मैम, कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
2: नमस्कार मैम।
1: मैम, जैसा कि हमारा आज का विषय है शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के लिए करियर विकल्प, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के लिए सबसे लोकप्रिय करियर कौन से हैं?
2: वैसे तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे करियर विकल्प होते हैं, बहुत सारे एरिया होते हैं जहां महिलाएं आजकल अपना खुद का डेवलप करती है, खुद को विकसित करती है और खुद अपने करियर को बनाती हैं। इसके बावजूद भी एक शिक्षण जो है, शिक्षा या एजुकेशन कहा जाए या टीचिंग फील्ड कहा जाए, वहां पर महिलाओं का एक कंफर्ट जोन रहता है, वो आसानी से मैनेज कर सकती हैं

0: और अक्सर ये देखा गया है कि एजुकेशन फील्ड है वो अपने आप में बहुत बड़ा एरिया है, बहुत वास्ट एरिया है। तो ऐसे फील्ड में जहाँ छोटे बच्चों से लेके कॉलेज स्टूडेंट्स तक, पीएचडी तक वो एजुकेशन में सहयोग दे सकती हैं,
1: जी
0: इसीलिए महिलाओं ने इस फील्ड को बहुत प्रायोरिटी पे इसका उपयोग किया है और इस विकल्प को चूज किया गया है। अब ये कहा जा सकता है कि ये जो विकल्प है चुनाव, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग, एजुकेशन का भी एरिया बहुत बड़ा होने के कारण इसमें, जैसे यदि हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे वो महिलाएं वह काम कर सकती, जहाँ जैसे जो पीएचडी करना चाहती है या कॉलेज एजुकेशन में करना चाहती है या हायर एजुकेशन में अपना सहयोग देना चाहती हैं। इसके लिए प्री प्राइमरी में यदि हम बात करते हैं, छोटे यंगर्स किड्स के लिए या छोटे बच्चों के बात में बात करते हैं, जो बच्चे 3 साल से लेके 5 साल तक के, वहाँ पर प्री प्राइमरी एजुकेशन जो होता है, अभी प्रेजेंट कंडीशन में हम देख रहे हैं कि एजुकेशन जो NEP 2020 जो इम्प्लीमेंट्स किया गया, उसमें बाल वाटिका को बहुत महत्व दिया गया है,
1: जी
0: क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि बच्चों का जो डेवलपमेंट है यदि बचपन से प्रॉपर तरीके से उसको निर्देशित किया जाए तो निश्चित रूप से बच्चा बहुत अच्छे से विकसित हो सकता है। इस स्थिति को देखते हुए शिक्षण के क्षेत्र में प्री प्राइमरी एजुकेशन को, जैसे NTT, मॉन्टेसरी, इस टाइप के एजुकेशंस को महत्व दिया गया है। इसके बाद में यदि महिलाएं चाहें कि वो मिडिल क्लास के लिए या हायर क्लासेस के लिए, तो उसके लिए उन लोगों को पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ बीएड होना आवश्यक होता है। इस तरीके से एजुकेशन का एरिया बहुत बड़ा है और हम इसको अलग अलग क्षेत्र में जहाँ चाहें वहाँ कर सकते हैं, और ये महिलाओं के लिए बड़ा आसान होता है, आसानी से मैनेज हो जाता है। और शिक्षण के क्षेत्र में जो कंटिन्यूटी वर्क होता रहता है, लगातार होने वाली, खुद को शिक्षित होते हैं
1: जी
0: और दूसरे को भी शिक्षित करते
1: बहुत ही अच्छी आपने जानकारी दी। क्या शिक्षण के अलावा भी कोई विकल्प है?
0: हैं। जी हाँ, शिक्षण के अलावा भी बहुत से विकल्प हैं, और वर्तमान स्थिति में तो हम देख रहे हैं कि यदि हम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग्स पे बात करते हैं या फॉर्मल एजुकेशन्स पे, दोनों को मिला के भी अभी वर्तमान स्थिति में एजुकेशन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। पहले जो एजुकेशन्स को एक कहा जाता था कि एक बेसिक एजुकेशन, ग्रेजुएशन हो जाना या पोस्ट ग्रेजुएशन होना काफ़ी होता था, पर अभी वर्तमान स्थिति में तो हम व्यावसायिक एजुकेशन या वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ में जो शिक्षा दी जा रही है, उसके कारण बच्चों को अपने कैरियर बनाने के लिए वर्तमान में बहुत सारे स्कोप्स हैं, बहुत सारे हैं फील्ड हैं जहाँ पे वो अपने शिक्षण के अनुसार अपने को चूज कर सकते हैं। सपोज जैसे कंप्यूटर फील्ड होता है, ब्यूटी फील्ड होता है, और भी अलग, कुकिंग का होता है, डिफरेंट इतने सारे फील्ड हैं, एयरक्राफ्ट फील्ड है, बहुत सारी फील्ड है जहाँ पे महिलाएं अपना अलग करियर भी बना सकती हैं और भविष्य बना सकती हैं।
1: जी, एक और सवाल हम आपसे करना चाहेंगे। क्या एक महिला को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कोई विशिष्ट पाठ्यक्रम या योग्यता की आवश्यकता होती है?
0: जी हम इसके लिए एक जरूरी होता है कि यदि हम एक विशेष पाठ्यक्रम या हम अपने स्किल को डेवलप कर
1: जी
0: लेते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग उस जगह को, स्थान अपना बना सकते हैं। यदि हमने एक किसी भी क्षेत्र को चूज किया या सेलेक्ट किया तो उसके अकॉर्डिंग यदि हम लेते हैं अपने स्किल्स को, तो हम अपना, सपोज जैसे मैं अब बात करती हूँ कि एक प्री प्राइमरी टीचर है, तो प्री प्राइमरी टीचर को यदि अपना वो स्किल्ड रहेगी, वो ट्रेंड रहेगी, उसने कोई पर्टिकुलर ट्रेनिंग किया है, उस ट्रेनिंग को यदि वो करती तो डेफिनेटली वो बच्चे की भावनाओं को समझ सकेगी, इमोशनली वो अटैच कर सकेगी, साथ में उससे रिलेटेड जो पाठ्यक्रम है उससे संबंधित पाठ्यक्रम को वो बहुत आसानी से बच्चों को उनकी मानसिकता के अनुसार वो समझा सकेगी और दे सकेगी।
1: जी, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में एक सफल करियर के लिए क्या कौशल महत्वपूर्ण है?
0: शिक्षा के क्षेत्र में देखिएगा अलग अलग है, मैंने जैसा अभी बताया था
1: जी
0: कि यदि मॉन्टेसरी करती हैं आफ्टर 12th, तो वो प्री प्राइमरी टीचर्स बन सकती हैं, उसके लिए उनको बहुत सारे जॉब स्कोप्स हैं, हर स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, जहाँ पे उनको और हर हर बच्चा स्कूल जाता ही है।

0: तीन साल के बाद में, तो निश्चित रूप से उसको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। यदि मैं बीएड करती हैं तो उनको हायर एजुकेशन लाइक मिडिल क्लास हायर क्लासेस के लिए लेक्चररशिप के लिए मिल जाता है, और यदि महिलाएं रिसर्च और पीएचडी की करती हैं तो वो निश्चित रूप से एक कॉलेज प्रोफेसर के लिए आगे बढ़ सकती हैं। इसके अलावा एज ए काउंसलर, एज ए एजुकेशनिस्ट और भी सपोर्टिंग के लिए ट्यूशंस ले सकती हैं। बहुत एजुकेशन में इतना वास्ट एरिया है कि वो जितना एजुकेशन में फील्ड में कर सकती हैं वो कर आगे बढ़ सकती हैं। इसके अलावा एजुकेशन के में महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान होता है कि वो बच्चों के लिए जैसे वो फाइन आर्ट में बहुत अच्छी हैं, तो निश्चित रूप से वो एक स्कूल में जाके अपने फाइन आर्ट म्यूजिक में अच्छी, संगीत में, कला में, और स्पोर्ट्स के फील्ड में आज की बहुत आवश्यकता है तो स्पोर्ट्स के फील्ड में भी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है और वो दे सकती हैं और आगे अपना कैरियर बना सकती हैं। जैसा कि कहा गया कि एक शिक्षित महिला पूरे परिवार को शिक्षित कर सकती है, तो यदि एक टीचर है या एजुकेशन फील्ड में महिला है तो निश्चित रूप से वो समाज के लिए और घर के लिए और पूरे हमारे महिला वर्ग के लिए एक आदर्श हो सकती है।
1: बिल्कुल, आपने सही कहा कि परिवार के लिए एक आदर्श हो सकती है। रागिनी जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और विषय से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: डॉक्टर रागिनी माथुर जी से अभी ये बातचीत आप सुन रही थी सखियो, बात कर रही थी दुर्गेश नंदिनी और विषय था शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के लिए करियर विकल्प। बहुत सारे विकल्पों के बारे में डॉक्टर रागिनी माथुर ने बताया है और हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। सखियो, कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ। गीत लिया है हमने फिल्म एक रिश्ता से, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ें हैं, तो सुनिए ये खूबसूरत सा गाना।

सखियो, समीर का लिखा और नदीम श्रवण का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत आपने सुना फिल्म एक रिश्ता से। आप सुन रही हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम महिला सभा अपनी सखी शिखा के साथ। और सखियो, कहते हैं ना कि जब किसी स्त्री को अपने लिए कुछ पल मिल जाते

है ना, तो वो उन पलों को केवल जीती नहीं बल्कि उसे एक बहुत खूबसूरत सृजन में बदल देती है, कभी रंगों से, कभी धागों से, कभी मिट्टी से। और इसी सृजन की एक अद्भुत और खूबसूरत अभिव्यक्ति है रेजिन आर्ट। तो आज हमारे क्रम मी टाइम में मैं आपको बताने जा रही हूँ रेजिन आर्ट के बारे में। सखियों, यह केवल एक कला नहीं बल्कि कल्पना, धैर्य और सृजन का एक ऐसा संगम है जिसमें हर कलाकृति बिल्कुल अनोखी होती है। ऐसा माना जाता है कि दो कलाकार अगर एक ही डिज़ाइन बनाए ना, तब भी दोनों रचनाएं एक जैसी नहीं बनेंगी। सखियो, रेजिन आर्ट एक आधुनिक सजावटी कला है जिसमें विशेष प्रकार की एपॉक्सी रेजिन और हार्डनर को निश्चित अनुपात में मिलाकर तरल रूप में तैयार किया जाता है। इस मिश्रण में रंग, ग्लिटर, सूखे फूल, पत्तियां, मोती, पत्थर, गोल्ड फॉइल, शंख और अन्य सजावटी सामग्रियां मिलाई जाती हैं। कुछ घंटों बाद यह तरल पदार्थ धीरे धीरे सख्त होकर कांच जैसी चमकदार और पारदर्शी सतह में बदल जाता है, जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। सखियो, रेजिन आर्ट की दुनिया बहुत विशाल है। इससे आप आकर्षक ट्रे बना सकती हैं, वॉल क्लॉक बना सकती हैं, नेम प्लेट बना सकती हैं, ज्वेलरी, फोटो फ्रेम, बुक मार्क, टेबल टॉप, की चेन और यहाँ तक कि त्योहारों पर सजावटों की सामग्री आप बना सकती हैं। पूजा की थालियाँ आजकल रेजिन आर्ट से बनाई जा रही हैं। मोबाइल स्टैंड और सुंदर जो होम डेकोर के आइटम बन रहे हैं ना सखियो, वो इतने अच्छे होते हैं ना कि कोई भी अगर आपके घर आए और आप ये बताएं कि आपने उस रेजिन आर्ट को बनाकर अपनी दीवार पर जगह दी है या फिर अपने टेबल पर उसे सजाया है, तो आपको इतनी तारीफें मिलने वाली है ना कि मैं क्या बताऊं। आजकल शादी और त्योहारों में जो पर्सनलाइज्ड गिफ्ट दिए जाते हैं ना, उसमें भी रेजिन आर्ट की बहुत मांग है। तो सखियो, बहुत आसान और बहुत खूबसूरत रेजिन आर्ट को सीखने का मन बनाइए, कोई क्लास कर लीजिए, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, जैसी भी आपको सुविधा हो। रेजिन आर्ट आपके मी टाइम को, आपके फ्री टाइम को एक बहुत बढ़िया उसका ये उपयोग होगा। रेजिन आर्ट को करते समय सखियो थोड़ा सा धैर्य रखना होता है, क्योंकि रेजिन को सूखने में थोड़ा सा वक्त लगता है। शुरुआत में हमें लगता है कि सब बिखरा बिखरा है, रंग अलग है, सपने अलग है, अनुभव अलग है, लेकिन जब धैर्य, मेहनत और समय साथ में आते हैं ना, तो वही बिखरे हुए रंग एक ऐसी चमकदार तस्वीर बनाते हैं जिसे हर कोई देख कर कह उठता है कि वाह। तो अगली बार जब आपको अपने लिए कुछ पल मिले ना, तो उन्हें यूं ही बीतने मत दीजिए। शायद उन्हीं पलों में कोई नई कला आपका इंतजार कर रही है, और कौन जाने वही शौक एक दिन आपकी पहचान, आपका आत्मविश्वास और आपकी आत्मनिर्भरता का सबसे सुंदर कारण बन जाए। तो सखियो, हर स्त्री के भीतर कहते हैं कलाकार छिपा हुआ होता है, जो उसे केवल अवसर नहीं थोड़ा सा विश्वास देना है। और विश्वास मिलता है, विश्वास बढ़ता है अपनों के साथ, सखियों के साथ, और यही विश्वास आपको यहाँ मिलेगा सखियो, आपके महिला सभा कार्यक्रम में। तो सुनते रहिए महिला सभा, जानकारी, मनोरंजन और अपनेपन का साथ आपको मिलता है महिला सभा में। सखियो, अब सुनवाती हूँ एक बहुत प्यारा सा गीत, समीर का लिखा हुआ है और हिमेश रेशम का इसमें संगीत है, और गीत लिया है हमने फिल्म दिल मांगे मोर से। आवाजें हैं सोनू निगम और अलका याग्निक की।

क्यों बहुत जिम्मेदारियां निभाती हैं हम स्त्रियां। हम अपने परिवार के हर सदस्य का ख्याल रखती हैं, बच्चों के खाने की चिंता, पति की सेहत की चिंता, घर में बुजुर्गों की चिंता। लेकिन एक बात बताइए, क्या हम अपने मन की सेहत का भी उतना ही ध्यान रखते हैं? कई बार सखियों बिना वजह मन उदास रहता है, छोटी छोटी बातों पर घबराहट होने लगती है, जिम्मेदारियों का बोझ इतना बढ़ जाता है ना कि लगता है जैसे किसी से खुलकर बात नहीं कर पा रहे हैं। और कभी कभी ऐसे समय में हम किसी अपने से अपनी परेशानी को साझा भी नहीं कर पाते, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम खुद तो परेशान हैं, हमारा खुद का मन तो दुखी है, लेकिन हम दूसरे को क्यों इस तकलीफ़ में डालें। तो सखियों, मैं आपको बताऊँगी कि ऐसे समय में चुपचाप सब कुछ सहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके साथ है टेलीमानस। जी हाँ सखियो, टेलीमानस यानी 144 16 144 16 एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है, जहाँ आप दिन हो या रात कभी भी फ़ोन करके अपने मन की बात कह सकती हैं। जी हाँ सखियो, इस हेल्पलाइन पर प्रशिक्षित काउंसलर आपकी बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं, आपकी भावनाओं को समझते हैं और सही सलाह देने का प्रयास करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह सेवा निःशुल्क है और आपकी बात जो है ना पूरी तरह से गोपनीय रखी जाती है। जैसे बुखार आता है तो हम डॉक्टर से सलाह लेते हैं ना, वैसे ही मन पर अगर बोझ महसूस हो तो मदद लेना भी उतना ही ज़रूरी होता है। अगर आपको कभी लगे कि तनाव बढ़ रहा है, नींद नहीं आ रही है, मन बहुत बेचैन हो रहा है या किसी अपने की चिंता सता रही है, तो फ़ोन उठाइए और 144 16 पर कॉल करके टेलीमानस से बात कीजिए। एक कॉल आपके मन के बोझ को हल्का कर देगी और जीवन फिर से मुस्कुराने लगेगा। वैसे सखियो, मुस्कुराने के लिए हमें तो आपका साथ ही बहुत काफ़ी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें ज़रूरत होती है कि हम किसी से अपनी परेशानी को साझा करें और वो हमारी परेशानियों को पूरी तरह अपने गोपनीय रखे। तो सखियो, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको बता दूं कि कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी डॉक्टर प्रीति छड़ीदार। अब अनुमति दीजिए अपनी सखी शिखा को, स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला सभा। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी

जयंत विश्वकर्मा के स्वर में अभी आपने सुना साक्षरता बेटी पढ़ाओ गीत। लोक संगीत के कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए कृष्ण मोहन नायक के स्वर में साक्षरता गीत।

अभी आपने सुना किशन प्रसाद रैकवार के स्वर में साक्षरता गीत। इसी के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दिन के 1:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत के अंतर्गत लीजिए सुनिए सत्यनारायण तिवारी के स्वर में ये भजन।

सत्यनारायण तिवारी के स्वर में अभी आपने सुना कृष्ण भजन। लीजिए अब सुनिए एक भजन, स्वर सत्यनारायण तिवारी का है।

0: सत्यनारायण तिवारी के स्वर में अभी आपने सुना भजन। इसी के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
2: क्या बात है सखी, बड़ी खुश नजर आ रही हो।
3: खुशी की तो बात है,
4: हमारा पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा अब मंगलवार के साथ साथ गुरुवार और शुक्रवार को भी होगा।
2: अरे वाह, ये तो वाकई खुशी की बात है। समय क्या रहेगा?
4: वही दोपहर 1 बजे।
2: तो सुनना ना भूले कार्यक्रम महिला सभा।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

मध्य प्रदेश है। दिन के 2 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में लीजिए सुनिए फिल्म त्रिशूल का गीत। गीत साहिर का है और संगीत है

जूली। इस फिल्म का गीत सुनिए किशोर कुमार की आवाज में। गीत आनंद बख्शी का है और इसे संगीतबद्ध किया है राजेश रोशन ने।

दोस्तों हम तो रहेंगे ही खैर आपके साथ, इसी उम्मीद के साथ आज का युववाणी कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज के सही उत्तर। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न था कि फीफा का फुल फॉर्म क्या है, तो उसका सही उत्तर है फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। और आज का हमारा दूसरा प्रश्न था कि फीफा विश्व कप का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में किया जाता है, तो उसका सटीक उत्तर है 4 वर्षों में। अब दीजिए अपने दोस्त को इजाजत, मिलते हैं कल फिर। नमस्कार।

हमारे युवा साथी अभी सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत। श्रोताओं, बारिश का मौसम है और इस खूबसूरत मौसम में आइए सुनते हैं बरसात फिल्म का ये खूबसूरत गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और साथियों ने। संगीत शंकर जयकिशन का है।

भूमिका फिल्म का गीत अभी आपने सुना प्रीति सागर और भूपिंदर की आवाज में। आइए श्रोताओं, एक बहुत ही खूबसूरत गीत अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम फिर वही रात। गीत के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत राहुल देव बर्मन का।

लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि रात्रि में 8:15 पर कुछ और गीत आप सुनेंगे कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया में, और साथ ही रात्रि 9:30 से 10:30 तक आप सुनेंगे आपके फरमाइशी पत्रों पर आधारित कार्यक्रम मन भावन। तो सुनना मत भूलिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। आकाशवाणी इंदौर आप न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर सुन सकते हैं, साथ ही गूगल पर आप आकाशवाणी इंदौर लाइव करके भी सुन सकते हैं। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं, संध्या के 6 बजने वाले हैं। लीजिए अब सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
3: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, विजेंद्र कुमार, जयजान, नूर, नमन, सिमरत, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: खुद को बेहतर बनाना ही असली प्रतिस्पर्धा है। किसी से भी ईर्ष्या का सीधा मतलब ये है कि हमने सामने वाले व्यक्ति को हमसे ज्यादा श्रेष्ठ मान लिया है।
3: बहुत बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं,
3: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। हमें आपका उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। हम आपका उमंग कार्यक्रम FM और DTH के रेडियो चैनल पर सुनते हैं। आपके उमंग कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक जानकारियां सुनने को मिलती हैं, जो हमें बेहद पसंद आती हैं। धन्यवाद।
2: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: आप सभी श्रोताओं को हम धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं संदेशों को भेजने के लिए। निवेदन है कि इसी प्रकार से हमारे उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। आइए अब चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। इस सप्ताह श्रोताओं हम बात कर रहे हैं खनिज पदार्थों की।
2: अब तक हमारी चर्चा का विषय रहा कोयला, सोना और हीरा। तो अजीत जी, आज हमारा क्या विषय रहेगा? श्रोता बड़ी उत्सुकता से जी जानना चाहते हैं।
3: विमलेश जी, आज हमारा विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसे खनिज की बात करेंगे जो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाता है, और तो और हम उस पर चलते फिरते भी हैं। अच्छा चलिए, श्रोताओं को दीजिए कुछ हिंट।
2: ठीक है, तो श्रोताओं, उस खनिज का उपयोग हमारे कंप्यूटर, मोबाइल और अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी किया जाता है। ये हमारे शरीर में भी पाया जाता है
3: और ये कुछ पौधों में भी पाया जाता है, विशेषकर बांस और घास में तो पाया ही जाता है।
2: श्रोताओं, ये हमारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स में तो होता ही है, इंटरनेट के उपकरणों और अंतरिक्ष के उपग्रहों में भी चिप्स के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, और हाँ, इससे कांच भी बनता है। तो श्रोताओं, आपने समझ लिया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं।
3: अगर आप सोच रहे हैं कि वो खनिज पदार्थ सिलिका है तो आप बिल्कुल सही हैं। आइए अब जानते हैं कि सिलिका क्या है। विमलेश जी, आपसे करते हैं शुरुआत।
2: श्रोताओं, सिलिका सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बना एक प्राकृतिक खनिज है। ये पृथ्वी की भूपरपर्टी में सबसे अधिक पाए जाने वाले खनिज पदार्थों में से एक है। आइए सबसे पहले जानते हैं सिलिका शब्द कहाँ से आया।
3: श्रोताओं, सिलिका शब्द लैटिन भाषा के सिलेक्स शब्द से आया है, जिसका अर्थ है चकमक या कठोर पत्थर। बता दें कि पृथ्वी की सामान्य रेत का अधिकांश भाग सिलिका से ही बना होता है। इसी सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन बनाया जाता है,
2: और इसी सिलिकॉन से बनते हैं मोबाइल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में लगाए जाने वाले चिप्स। सुंदर क्वार्ट्ज क्रिस्टल वास्तव में सिलिकॉन का ही रूप है। अजीत जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है, वो ये है कि क्या जिस रेत या धूल पर हम चलते हैं, क्या वही सिलिका है?
3: विमलेश जी, ऐसा कहना आंशिक रूप से सही है, पर पूरी तरह से नहीं। ये जानना जरूरी है कि साधारण रेत या धूल के कण पूरी तरह से सिलिका नहीं होते। धूल कई प्रकार के कणों का मिश्रण होती है, जैसे मिट्टी, जैविक पदार्थों के अवशेष और कुछ खनिज।
2: बता दें कि सिलिका सबसे अधिक रेगिस्तान और समुद्र की रेत में पाई जाती है, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों?
3: ऐसा इसलिए कि रेगिस्तान बनते हैं बहुत सारी चट्टानों के टूटने से। इन चट्टानों में खनिज पदार्थों के रूप में सिलिका पहले से ही मौजूद होती है। चट्टानों के टूटने से सिलिका के कण रेत और मिट्टी में फैल जाते हैं, और जहाँ तक समुद्र की बात है, यहाँ सिलिका की मात्रा बहुत अधिक होती है, क्योंकि नदियाँ समुद्र की ओर बढ़ती हुई पहाड़ों और चट्टानों को जब अपने जल प्रवाह से घिसती हैं, तो उन चट्टानों में मौजूद सिलिका के कणों को समुद्र तक ले आती हैं। श्रोताओं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि समुद्र तट की एक मुट्ठी रेत में मौजूद सिलिका के कणों ने हजारों किलोमीटर की यात्रा की है। तो विमलेश जी, हजारों वर्षों से मनुष्य सिलिका या रेत को देखता आया है
2: जी।
3: लेकिन ये विचार कैसे आया कि ये इतना महत्वपूर्ण है?
2: इसकी कहानी बड़ी रोचक है। 1824 में स्वीडन के रसायन शास्त्री जॉन जेकब वर्जिलियास ने पहली बार सिलिका से ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन की खोज की। लेकिन प्राचीन काल से ही मिस्र और चीन के लोगों ने इसके द्वारा कांच और आभूषण बनाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि ये बहुत चमकदार होता है। 1906 में पहली बार इससे पहला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाया गया।
3: फिर धीरे धीरे शोध होते गए और आज ये मानव सभ्यता का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। आज हम इसके बिना सौंदर्य प्रसाधनों, चिकित्सकीय उपकरणों, उद्योगों, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, सौर उपकरणों और उपग्रहों की कल्पना तक नहीं कर सकते।
2: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी सिलिका खनिज के बारे में। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
3: तो हमारा आज का प्रश्न है, सिलिका और सिलिकॉन में क्या फर्क है? आप हमारे IBRS नंबर पर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIT NCERT को फॉलो जरूर कीजिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है, कैसे जानते हैं हम अपना अतीत।
2: इस कार्यक्रम में विशेष रूप से इतिहास के विभिन्न स्रोतों के बारे में विस्तार से बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमारी ऐतिहासिक विरासत महान है।
4: दोस्तों नमस्कार, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था या आज क्या हो रहा है, हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता
5: है ना साथियों? अच्छा सवाल। यही सवाल निधि और आदिका के मन में भी था। वे छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन वे समाचार पत्र पढ़ रही थीं। अचानक उनकी निगाह समाचार पत्र के एक अंश पर पड़ी जहां छपा था, लगभग 2000 साल पहले। वे सोचने लगीं,
6: भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
7: हाँ, 2000 साल पहले।
6: नानी माँ?
8: हाँ निधि।
6: ओ नानी माँ, कहाँ हो?
8: अरे यही हूँ, आ जाओ निधि, आओ आदिका बेटी।
6: अरे ये क्या सारे बक्से खोल रखे हैं, क्या कर रही हो?
8: हाँ हाँ, बताती हूँ, जल्दी क्या है?
6: कितने ढेर सारे कपड़े हैं नानी माँ, ये तो बहुत पुराने हैं ना?
8: हाँ बेटी, बहुत पुराने हैं, तुमसे और तुम्हारी मम्मी से भी पुराने। और पता है निधि, आदिका जानती हैं आप ये कपड़े हमने कब पहने थे?
6: नहीं पता, बताओ ना नानी माँ।
8: अरे ये कपड़े तो हमारी शादी के हैं।
6: नाना नानी की शादी के कपड़े? भाई वाह, नानी पहले और आज के कपड़े कितने अलग अलग दिखते हैं, है ना?
8: हाँ हाँ निधि, समय के साथ साथ सारी चीजें बदल जाती हैं।
6: नानी एक बात मेरे मन में भी आ रही है और वो ये कि बहुत पुराने बातों को कैसे जाना जा सकता है?
8: अरे बिटिया, ये बताने के लिए तो हमारे पंकज से बढ़िया और कोई नहीं हो सकता।
6: हाँ हाँ, मामा जी से पूछेंगे।
8: हाँ बिटिया, वो तो पुरातत्व वेत्ता है ना?
6: मामा जी।
9: अरे निधि, ओ आदिका, कैसी कट रही तुम्हारी छुट्टियाँ?
6: बहुत अच्छी तरह मामा जी, आज सुबह हम समाचार पत्र पढ़ रहे थे।
9: ये तो बहुत अच्छी बात है
6: जी, उसमें छपा था लगभग 2000 साल पहले। ये लेख किसी सभ्यता के बारे में था मामा जी। भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
9: अच्छा अच्छा, तो ये बात है। आओ आओ यहाँ बैठो। अरे बैठो, मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, जरा इसे देखो, बता सकती हो कि ये क्या है?
6: ये किसी खुदरी सी शीट की तस्वीर है, इसमें कुछ लिखा गया है, शायद गोदकर।
9: शाबाश निधि, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। ये खुरदरी शीट दरअसल एक पेड़ की छाल है जिसे भोज वृक्ष कहा जाता है।
6: अच्छा, भोज वृक्ष?
9: हाँ, भोज वृक्ष हिमालय क्षेत्र में मिलता है। इसकी छाल पर या ताड़ के पत्तों पर उन दिनों लोग हाथ से लिखते थे। हाथ से लिखी होने के कारण ये पांडुलिपि कही जाती है।
6: पांडुलिपि? ये हमें कहाँ मिली है
9: निधि? ये पांडुलिपियाँ ज्यादातर प्राचीन मंदिरों और विहारों से खुदाई में प्राप्त हुई हैं। तुम्हें पता है कुछ पुरानी गुफाओं में भी मिली हैं।
6: अच्छा,
9: और बेटी मैं तुम्हें बताता हूँ, इन पांडुलिपियों में उस समय की धार्मिक परंपराओं, राजाओं के जीवन, दवाइयों, कला और विज्ञान की जानकारी हमें मिलती है। हमें कई नाटक और कविताएं भी मिलती हैं।
6: ये किस भाषा में है?
9: बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी तुमने। ये ज्यादातर संस्कृत, तमिल और प्राकृत भाषा में है। उन दिनों प्राकृत भाषा का इस्तेमाल आम लोग करते थे।
6: मामा जी अब आगे भी बताइए ना।
9: हाँ हाँ, बताता हूँ। अरे धैर्य रखो। अतीत या पुराने समय के बारे में हमें पांडुलिपियों से तो पता चलता ही है, लेकिन हमें बहुत सारी जानकारियाँ अभिलेखों और शिलालेखों से भी मिलती हैं।
6: अच्छा।
9: अभिलेख को अंग्रेजी में इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इंस्क्रिप्शन शब्द से ही इंस्क्राइब निकला है, जिसका मतलब है लिखना, खोद कर लिखना या उत्कीर्ण करना। इसको उकेरना भी कहते हैं।
6: अच्छा।
9: और हाँ, अतीत को जानने के लिए हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसे अभिलेख हमें पत्थर या धातु पर खोद कर लिखे हुए मिलते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराने पत्थर पर लिखा अभिलेख या शिलालेख हमें वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से मिला है।
6: अच्छा।
9: ये सम्राट अशोक के आदेश पर लिखा गया है। पत्थर पर लिखने की कला को एपिग्राफी भी कहते हैं और शिलालेख को
6: एपिग्राफ।
9: शाबाश निधि।
6: मामा जी, अभिलेख और शिलालेख में क्या फर्क है?
9: देखो, अभिलेख को किसी भी कठोर वस्तु पर लिखा जा सकता है, मतलब ये कोई धातु भी हो सकती है। ये अभिलेख हमें पकी मिट्टी, सिक्के, तांबे और चांदी पर भी लिखे मिले हैं, लेकिन शिला का मतलब होता है पत्थर। ये लेख पत्थरों पर ही लिखे जाते हैं।
6: मामा जी, आपने शिलालेख की बात की, ऐसे पत्थर पर हमें क्या लिखा हुआ मिलता है?
9: ऐसे पत्थर पर कभी कभी राजा लोग अपने आदेशों को खुदवाते या उत्कीर्ण करवाते थे, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उसका पालन कर सकें।
6: मामा जी, मैंने सुना है कि भूविज्ञानियों के अध्ययन से भी हमें अपने अतीत के बारे में पता चलता है।
9: आदिका, बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। भूविज्ञानी मिट्टी के नमूनों, पुराने पत्थरों, पहाड़ों और महासागरों का अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि पहले पृथ्वी कैसी थी और आज क्या उसका स्वरूप कुछ बदला है।
6: ओह, कितना रोचक है ये सब जानना।
9: हाँ आदिका, रोचक तो है ही। तो दोस्तों, हमारा समय अब समाप्त होता है। इस वायदे के साथ कि एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपसे फिर

0: इवेंट हो गई। अब आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार।
1: तो साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, अब आपके लिए कुछ करने को, तो चलिए बनाते हैं अभिलेख। तो सबसे पहले आप मुलायम मिट्टी या क्ले लीजिए, फिर उसे हाथों से एक पट्टी की तरह बना लीजिए और उसे गोल या चौकोर जैसा कोई आकार दीजिए। अब सतह को किसी सपाट चीज से चिकना कर दीजिए। तो अभिलेख के लिए अब आपकी पट्टी तैयार है। इस मुलायम मिट्टी पर लिखने के लिए आप पेंसिल या किसी नुकीली लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस मुलायम मिट्टी पर अपनी मातृभाषा के कुछ अक्षर या शब्द लिखिए या कोई चित्र बनाइए। मिट्टी को सुखा लीजिए और फिर विद्यालय में अपने मित्रों और शिक्षकों को दिखाइए और इसके बाद इसे सहेज कर रख लीजिए। हो गया ना तैयार आपका अभिलेख?
2: आशा है श्रोता मित्रों, आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। श्रोताओं, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह माना जाता है, लेकिन सच ये है कि इससे पहले भी बहुत से लोगों ने स्वतंत्रता के लिए स्थानीय रूप से अपनी आवाजें बुलंद की।
1: इनमें से बहुत सारे जनजातीय या आदिवासी समूह थे जिनमें बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू इत्यादि बहुत प्रसिद्ध हैं।
2: जी,
1: लेकिन आज श्रोताओं, आपको विशेष रूप से हम बताना चाहते हैं कि कई जनजातीय महिलाएं भी रही
2: जिन्होंने स्थानीय रूप से स्वतंत्रता का झंडा बुलंद किया। इनमें आज हम सुनेंगे कार्यक्रम रानी दुर्गावती पर, जो गोंड आदिवासी समुदाय से संबंधित हैं। उनकी वीरता के किस्से आज भी गोंडवाना भूमि यानी आज के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में गाए और सुनाए जाते हैं।
1: तो आइए सुनते हैं श्रोताओं कार्यक्रम रानी दुर्गावती।
3: हमारे देश के इतिहास में स्त्रियों के त्याग और महानता की अनगिनत कहानियां मिलती हैं। ऐसी कुछ विरल स्त्रियों में से एक है रानी दुर्गावती। दुर्गावती का जन्म मध्य प्रदेश के महोबा नामक स्थान पर सन 1524 में हुआ था। उसके पिता कीर्ति सिंह कालंजर के राजा थे। दुर्गावती अभी छोटी ही थी कि उसकी मां का देहांत हो गया। पिता ने उसे बचपन से ही घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी और ये देखकर बहुत खुश होते कि उनकी बेटी राजनीति और शासन की समस्याओं को सुलझाने में भी उतनी ही कुशल थी जितनी तीर चलाने में। एक बार की बात है,

0: शाबाश शाबाश मोती, शाबाश, आज तुमने खूब साथ दिया। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम थक गए हो, तुम्हें प्यास भी लग रही है, पर क्या करो, तुम तो शिकार के पीछे इतना तेज दौड़े कि अपने सब साथी पीछे छूट गए। चलो कुछ देर यहीं आराम करते हैं, तब तक बाकी लोग भी आ जाएंगे। ये लो, कुछ लोग तो शायद आ ही पहुंचे। अरे ये क्या, ये तो हमारे साथियों में से कोई नहीं, इसके कपड़ों से तो लगता है कि ये कोई मुगल सरदार है।
1: माशाल्लाह, ऐसी खूबसूरत लड़की और वो भी इस बयाबान जंगल में।
0: आपने मेरा रूप तो देखा, पर शायद ये नहीं देखा कि मेरे हाथ में तीर कमान भी है।
1: जी हाँ देख रहा हूँ, पर सच पूछिए तो आप जैसी हसीन लड़कियों के हाथ में तीर कमान शोभा नहीं देते।
0: बस बस, वहीं खड़े रहो। शायद तुम नहीं जानते कि मैं कालंजर की राजकुमारी दुर्गावती हूँ।
1: अखा, तो आप ही हैं राजकुमारी दुर्गावती। अरे वाह, जैसा सुना था वैसा ही पाया। अरे आपकी सुंदरता और बहादुरी के किस्से तो दूर दूर तक फैले हुए हैं। इस इलाके के सभी राजे रजवाड़े आपको पाने की हसरत रखते हैं। ज़हे नसीब जो आपके दीदार हुए। अब जरा
0: फिर आगे बढ़ रहे हो, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है?

0: कौन हो तुम?
1: मैं आसिफ खान हूँ, कड़ा का सूबेदार। आपको अपनी मलिका बनाना चाहता हूँ, और आज जब ऐसा सुनहरी मौका हाथ आ ही गया है तो अभी आपको अपने साथ ले जाऊंगा।
0: जरा हाथ तो लगाकर देख आसिफ खान, तूने दुर्गावती का रूप देखा, अब दुर्गा का रूप भी देख।
1: अच्छा, वाह। और
0: हाँ तो आसिफ खान, अब जरा अपनी बात दोहराओ। मेरी तलवार तुम्हारा लहू चखने को बेचैन है।
1: मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। आप तो मेरी बहन जैसी हैं।
0: ठीक है, पर आइंदा कभी किसी लड़की पर बुरी नजर मत डालना, वरना इस देश की बेटियों को दुर्गा और चंडी बनते देर नहीं लगती।
1: अजी मेरी तौबा, जो अब किसी की तरफ आंख उठाकर भी देखूं।
0: चल बेटा मोती।
1: आज की इस बेइज्जती को मैं कभी नहीं भूलूंगा दुर्गावती। तुमसे आज की हार का बदला ना लिया तो मेरा नाम भी आसिफ खान नहीं।
2: एक बार दलपरचाह ने राजा कीर्ति सिंह को शिकार खेलने के लिए मनियागढ़ के जंगलों में आने का निमंत्रण दिया। शिकार की शौकीन दुर्गावती भी साथ गई। दलपत शाह इस साहसी युवती पर मुग्ध हो गए और उसे अपनी पत्नी बनाने का निश्चय कर लिया। दोनों का विधिवत विवाह हुआ। डेढ़ वर्ष बाद दुर्गावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। बालक का नाम वीर नारायण रखा गया। लेकिन दुर्गावती के जीवन का यह सुख शांति का समय अधिक दिन नहीं रहा।
3: आधार सिंह जी, आप स्वर्गीय महाराज के मंत्री ही नहीं थे, आप उनके मित्र और चिंतक भी थे। आप ही बताइए मैं क्या करूं।
4: महारानी, आप स्वयं योग्य हैं, मैं भला आपको क्या सलाह दे सकता हूं। पर हां, इतना अवश्य जानता हूं कि स्वर्गीय महाराज अपने जीवन काल में बराबर राजकाज में आपसे सलाह लेते थे और आपकी राय की कदर करते थे। वे ये कभी पसंद नहीं करते कि आप कायरों की भांति जीवन से मुंह मोड़ लें।
3: ठीक है आधार सिंह जी, घोषणा करवा दीजिए, कुमार वीर नारायण गोंडवाने के नए राजा हैं और रानी दुर्गावती आज से सिर्फ उनकी ही नहीं समस्त गोंड राज्य की माता है।
4: राजमाता की जय, राजमाता की जय हो, राजमाता की जय हो।
2: रानी दुर्गावती ने शासन की बागडोर अपने मजबूत हाथों में संभाल ली। उसने किसानों को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित किया, उद्योगों को प्रोत्साहित किया, पानी की समुचित व्यवस्था के लिए कुएं और तालाब खुदवाए, पुराने कुओं की मरम्मत करवाई। वह राज्य के सभी भागों के अधिकारियों को बुलाकर उनकी समस्याओं के बारे में बातचीत करती और कभी कभी स्वयं भी दौरा करती थी। राजकीय कोष और सेना की रानी स्वयं देखभाल करती थी। उसके कुशल शासन में गोंडवाना एक संपन्न राज्य बन गया। दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर ने गोंडवाना पर अधिकार करना चाहा। आसफ खां के नेतृत्व में मुगलों की बड़ी भारी फौज गोंडवाना की ओर चल पड़ी। रानी पहले से सतर्क थी। आक्रमण हुआ। रानी की सेना बहुत बहादुरी से लड़ी। कई मोर्चों पर तो उसकी जीत भी।

0: लेकिन रानी के एक पुराने शत्रु रेवतीगढ़ के राजा सुधार सिंह ने धोखा दिया। सुधार सिंह साधु के वेश में इधर उधर फिरता और जासूसी करता। उसी ने अकबर को गढ़ा पर हमला करने के लिए प्रेरित किया था। इनाम जागीर पाने के लालच में वो इधर की खबर उधर पहुंचाया करता था।
1: अलख निरंजन।
2: साधु बाबा।
1: अब अच्छा,
2: यहाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ये रानी दुर्गावती का किला है, साधुओं का जमघट नहीं।
1: अरे वो तो हम भी जानते हैं बच्चा, लेकिन साधु तो रमता राम होते हैं, आज यहाँ कल वहाँ, अभी मुगलों की छावनी से चले आ रहे हैं।
2: क्या?
1: हाँ, बाप रे बाप, क्या लश्कर है बच्चा
2: है?
1: हाथी, घोड़े, तोप, बंदूक, बड़ा भारी इंतजाम है।
2: अच्छा,
1: हाँ
2: बहुत बड़ी फौज है।
1: और नहीं तो क्या बच्चा, अरे मुगल लोग जब चूहे के शिकार पर भी निकलते हैं ना, तो शेर के शिकार की तैयारी करके चलते हैं। और फिर यहाँ, अरे यहाँ तो रानी दुर्गावती से मुकाबला है, बड़ी जबरदस्त तैयारी करके निकले हैं बच्चा।
2: तो हमारे यहाँ भी जबरदस्त तैयारी है बाबा।
1: अच्छा,
2: रानी माँ ने रसद, पानी, हथियार सबका ऐसा बंदोबस्त किया है कि मुगल साल भर भी घेरा डाले पड़े रहे तो भी गढ़ में किसी चीज की कमी नहीं होगी।
1: हैं? क्या कहते हो बच्चा, साल भर का इंतजाम है?
2: बिल्कुल है।
1: और भगवान ना करें कोई हारी बीमारी ऐसी हो जाए कि बाहर निकलना जरूरी हो जाए, तो
2: उसका भी इंतजाम है।
1: अरे हटाओ, बाहर मुगल फौज घेरा डाले पड़ी हो तो तुम्हारी रानी भला क्या इंतजाम कर देगी?
2: देखो तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं, पर किसी और से ना कहना।
1: नहीं नहीं बच्चा, किसी से नहीं कहेंगे।
2: हाँ, हमारे महल से एक गुप्त सुरंग शहर के बाहर वाले बगीचे तक जाती है।
1: गुप्त सुरंगों का पता तुम्हारे जैसे मामूली सैनिकों को कैसे पता चलेगा? यूं ही डींग मार रहे हो तुम।
2: यूं ही डींग नहीं मारता साधु महाराज, मैं बदन सिंह हूँ, बदन सिंह, रानी माँ का खास सेवक। इतना सा था जब मुझ अनाथ को रानी माँ ने सहारा दिया था,

0: पुरुष वेश में लड़ रही रानी की बहादुरी देखकर मुगलों के छक्के छूट गए। मुगल सैनिक जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। दूसरे दिन फिर घमासान युद्ध हुआ। वीर नारायण घायल हो गए थे। उन्हें रणभूमि से दूर चौरागढ़ भेज दिया गया। रानी हाथी पर बैठकर लड़ रही थी कि तभी
1: क्या हुआ रानी माँ? अरे आपकी कनपटी में तीर लगा है माँ।
2: ओ मेरा ध्यान छोड़ गनू, तू हाथी को संभाल।
1: हाथी को क्या संभालू रानी माँ, ये तो पहले ही भालों से छिप चुका है। अब तो कुछ देर संभला रह सके तो बड़ी बात है, लेकिन आप कितना खून बह रहा है।
2: ये खून तो वीरांगनाओं का आभूषण है गनू।
3: रानी माँ देर न कीजिए, आप मेरा ये घोला लेकर यहाँ से शीघ्र निकल जाइए। चौरागढ़ में राजा साहब भी हैं, वहीं जाना ठीक रहेगा।
2: अब इसका समय नहीं रहा आधार सिंह जी, मुगल सैनिक चारों ओर से घिरते आ रहे हैं। आसिफ खान से मेरा पुराना बैर है, उसके हाथों अपनी दुर्गत कराने से अच्छा है आप अपने हाथों मेरा अंत कर दें।
3: नहीं नहीं रानी माँ, नहीं, ये पाप मुझसे नहीं हो सकेगा, इसकी आज्ञा मुझे मत दीजिए रानी माँ।
2: अच्छा तो गनू बेटा, तू अपनी कटार मुझे दे।
3: रानी माँ,
4: मेरी कटार से अपने प्राण लेकर तुम मुझे इस तरह पापी नहीं बना सकती माँ। मैं तुम्हारा महावत हूँ, तुम्हारे साथ।

0: साथी रहूंगा आप।
1: और श्रोताओ, इसी के साथ अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे हेमा सरदेसाई के गाए कुछ पॉप गीत। तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम की पहली रचना इनके आवाज में।

सुगम संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। कलाकार हैं हेमा सरदेसाई, इनके गाए पॉप गीत आप सुन रहे हैं आज के इस कार्यक्रम में। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम की अंतिम रचना।

हेमा सरदेसाई के गाए पॉप गीत आप सुन रहे थे सुगम संगीत के कार्यक्रम में। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं अरुण कुमार गोयल के गाए लोकगीत लोक संगीत के कार्यक्रम में। इनकी आवाज में सुनिए कुछ मालवी रचनाएं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

लोक संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। कलाकार हैं अरुण कुमार गोयल, इनकी गाई मालवी रचनाएं आप सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं अगली रचना।

मालवी मिट्टी की खुशबू से सजे लोक संगीत आप सुन रहे हैं। लोक संगीत के कार्यक्रम में कलाकार हैं अरुण कुमार गोयल। प्रस्तुत है इनकी आवाज में कार्यक्रम की अंतिम रचना।

0: अरुण कुमार गोयल के गाए मारवी लोकगीत आप सुन रहे थे लोक संगीत के कार्यक्रम में। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 7 बजे हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले होंगे। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
2: India's position on the Indus Waters Treaty.
3: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
1: तीसरा नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं और समय समय पर उनकी समीक्षा की जाती है। वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकाले जाने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे। मेलबर्न में श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता को बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार सेना के लिए आकाश तरंग इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, पैदल सेना के लिए टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, टैंकों के लिए सक्रिय सुरक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दे दी गई है। नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम के परीक्षण के लिए भूमि आधारित सुविधा स्थापित करने को भी स्वीकृति दी गई है। वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दे दी गई है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की है। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और उनकी आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 262 अंक बढ़कर 77,774 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक की बढ़त के साथ 24,271 पर दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य

महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब आपको देते हैं जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की और कुछ जानकारी कल के कार्यक्रमों की। पहले सुनिए हमारी सभा के शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी संध्या 7:20 पर आप सुनेंगे खेती गृहस्थी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे भेंट वार्ता, दूध एवं दूध का मूल्य संवर्धन। जानकारी देंगे डॉक्टर प्रणव चौहान। रात 8:00 आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से सुर्खियों में रिले होगा। 8:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। 9:15 पर कुछ फिल्मी गीत होंगे चित्र गीत कार्यक्रम में और 9:30 आपके फरमाइशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भवन होगा। ये कार्यक्रम 9:30 से 10:30 तक आप सुन सकते हैं। रात्रि 10:30 हम आपको सुनवाएंगे शास्त्रीय संगीत। इसमें आज आप सुनेंगे पूर्वी नीमगांवकर का उपशास्त्रीय गायन। तो श्रोताओं, ये तो थी जानकारी हमारी सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। अब कुछ जानकारी कल यानी शनिवार 4 जुलाई के मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। सवेरे 6:35 पर हम आपको सुनवाएंगे खेती की बातें। बरसात के पानी का संरक्षण कैसे करें, इस विषय पर जानकारी दी जाएगी। सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनहरे पल होगा 7:20 पर और 8:30 सुनिएगा फिल्म संगीत। लोक संगीत का समय रहेगा 9:15 का। माया देवी पटेल और साथियों के गाए लोकगीत आप इस कार्यक्रम में सुन सकते हैं। सुगम संगीत में 9:15 पर सुनवाएंगे वर्षा मिश्रा को। शास्त्रीय संगीत का समय रहेगा हमेशा की तरह 9:30 का। संस्कृति वाहने का सितार वादन इसमें हम आपको सुनवाएंगे, राग होगा ललित। 10:05 पर सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन सुनिएगा। ये कार्यक्रम 10:05 से 11:00 तक आप सुन सकते हैं और इस कार्यक्रम में अगर आप हमसे बातें करना चाहते हैं और अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं तो हमारे फोन नंबर नोट करें 2710223 और 2710224। अगर इंदौर के बाहर के श्रोता हैं तो STD नंबर 0731 लगाना बिल्कुल ना भूलें। समय याद रखिए 10:05 से 11:00 तक सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। हमारी सांध्यकालीन सभा की शुरुआत होगी युवा साथियों के कार्यक्रम युववाणी से। इस कार्यक्रम में हमारे युवा साथी कल सुन सकते हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स। 5:45 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। 6:00 सुनिएगा विशेष कार्यक्रम विकसित होता भारत। इसमें स्मार्ट स्कूल विकास योजना पर जानकारी होगी। भेंटवार्ता के तहत CM राइस सांदीपनी स्कूलों का उद्देश्य छात्रों को वैश्विक समुदाय के लिए तैयार करना, इस विषय पर वाइस प्रिंसिपल विपिन जैन से बातचीत सुनिएगा। 6:30 का समय रहेगा सुगम संगीत का। कलाकार होंगे वाणी जयराम। लोक संगीत में माया देवी पटेल और साथियों को सुनवाएंगे 6:45 पर। खेती गृहस्थी में प्रगतिशील सोयाबीन उत्पादक कृषक भेरूलाल वाकतरिया से बातचीत।

सुनवाई जाएगी। रात 8 बजे भोपाल से सुर्खियों में रिले होगा। 8:15 पर दिल ने फिर याद किया। 9:15 पर चित्रगीत। 9:30 बजे राष्ट्रीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती आकाशवाणी दिल्ली से रिले होगा। और 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यहीं से यानी आकाशवाणी दिल्ली से ही रिले किया जाएगा। तो श्रोताओं, ये तो थी जानकारी कार्यक्रम प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण में, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। संध्या के 7:10 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से रिले होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर, दोनों राज्यों को देंगे 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कृषक कल्याण वर्ष की समीक्षा की, सहकारी समितियों के डिजिटलाइजेशन के दिए निर्देश। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ फसलों और मानसून की समीक्षा की, 262 संवेदनशील जिलों की हुई पहचान। और भोपाल में अग्निवीर सेना भर्ती रैली की तैयारियों को लेकर समन्वय बैठक आयोजित, 25 जुलाई से 6 अगस्त तक होगी रैली। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात के दौरे पर रहेंगे, जहां वे दोनों राज्यों को करीब 1,00,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। वे जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इस योजना के तहत 100 नए एरोड्रोम विकसित किए जाएंगे, जिसके बाद बालोतरा के पचपदरा में देश की पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिस पर करीब 80,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे और राजस्थान सरकार में भर्ती हुए करीब 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। शाम को वे गुजरात के साणंद पहुंचेंगे, जहां 7,500 करोड़ रुपए की लागत से बनी CGCME OST सेमीकंडक्टर सुविधा का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मंत्रालय में कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत अब तक हुए कार्यक्रमों की समीक्षा की। डॉ. यादव ने कहा कि किसानों का कल्याण राज्य सरकार का कर्तव्य है और इसी उद्देश्य से वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष घोषित किया गया है। उन्होंने सहकारी समितियों की प्रक्रियाओं का डिजिटलाइजेशन करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि ऑनलाइन किसान क्रेडिट कार्ड पोर्टल और ई पासबुक सुविधा का शुभारंभ जुलाई माह में ही किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश के सभी जिलों में बलराम कृषि महोत्सव और संभागीय मुख्यालयों पर फूड फेस्टिवल आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में खरीफ फसलों, मानसून की स्थिति और अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि देशभर में बारिश की कमी की आशंका वाले 262 संवेदनशील जिलों की पहचान की गई है, जिनमें से 210 जिले अब भी बारिश की कमी का सामना कर रहे हैं। बैठक में बताया गया कि 2 जुलाई से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में मानसून आगे बढ़ सकता है। केंद्रीय मंत्री ने प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर कॉन्टिंजेंसी प्लान की समीक्षा करने और किसान क्रेडिट कार्ड तथा फसल बीमा कवरेज बढ़ाने के निर्देश दिए। शिवपुरी में 5 जुलाई को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करीब 2,500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का शिलान्यास करेंगे। तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रदेश के ऊर्जा एवं जिला प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कल कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद प्रभारी मंत्री ने शहर भ्रमण कर नागरिकों को पीले चावल भेंट करते हुए इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण दिया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मंत्रालय में महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के श्री रामानुज संस्कृत परिसर रीवा के सशक्तिकरण और संस्थागत विकास संबंधी प्रस्तावों की समीक्षा की। बैठक में परिसर के लिए कुल 243 पदों के सृजन का प्रस्ताव तैयार किया गया, जिसमें 117 शैक्षणिक, 4 प्रशासनिक और 122 गैर शैक्षणिक पद शामिल हैं। इन पदों की पूर्ति 3 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से किए जाने की योजना है। भोपाल में जिला कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के निर्देशन में आज अग्निवीर सेना भर्ती रैली की तैयारियों को लेकर समन्वय बैठक आयोजित की गई। ये भर्ती रैली 25 जुलाई से 6 अगस्त तक नाथू बरखेड़ा स्थित अंतर्राष्ट्रीय खेल कॉम्प्लेक्स में आयोजित की जाएगी। अपर कलेक्टर महेंद्र सिंह कवचे ने सभी विभागों को समन्वय के साथ समयबद्ध व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रदेश के टूरिज्म बोर्ड द्वारा विद्यार्थियों के लिए पर्यटन क्विज प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसके लिए विद्यालय 25 जुलाई तक ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं। जिला स्तरीय क्विज 7 अगस्त को प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित होगा, जिसमें कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। प्रत्येक जिले की विजेता टीमों को प्रदेश के पर्यटन बोर्ड द्वारा निःशुल्क पर्यटन भ्रमण का उपहार दिया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारण श्रोता अनुसंधान परिषद यानी बार्क को समाचार और गैर समाचार दोनों श्रेणियों में टेलीविजन रेटिंग जारी करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने कहा कि यह व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक परिषद को टेलीविजन रेटिंग नीति 2026 के तहत लाइसेंस नवीनीकरण नहीं मिल जाता। केंद्र सरकार ने सुरक्षा चिंताओं के चलते बैट बीएमएस इपोक आईओएन और लॉसिगी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से ही बंद करने के लिए किया जा रहा था। यह फैसला संभावित गलत इस्तेमाल और सुरक्षा जोखिम को देखते हुए लिया गया है। केंद्र सरकार ने जानकारी दी है कि आधार एप्लीकेशन पर ईमेल आईडी निःशुल्क अपडेट की सुविधा 1 जुलाई से शुरू होने के बाद पहले दो दिनों में 2.5 लाख से अधिक ईमेल अपडेट हुए हैं। UIDAI के अनुसार ये सेवा 6 महीने की अवधि के लिए निःशुल्क उपलब्ध है और इससे आधार केंद्र जाने की आवश्यकता समाप्त हो गई है। अब तक 40 लाख से अधिक लोगों ने नए आधार ऐप से मोबाइल नंबर अपडेट किए हैं, वहीं लगभग 10 लाख लोगों ने अपना पता भी अपडेट किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं की सुरक्षा और कल्याण के लिए 24 घंटे चलने वाली महिला हेल्पलाइन 1-4-4-9-0 संचालित कर रहा है। ये टोल फ्री हेल्पलाइन हिंसा और उत्पीड़न का सामना कर रही महिलाओं को शिकायत दर्ज कराने और मनोवैज्ञानिक परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराती है। इस पर महिलाएं शिकायत के साथ सरकारी योजनाओं की जानकारी भी प्राप्त कर सकती हैं। हेल्पलाइन एक बार पुनः सुन लें, 1-4-4-9-0। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा आज से शुरू हो गई है। ये यात्रा 57 दिनों तक चलकर 28 अगस्त तक जारी रहेगी। कड़ी सुरक्षा के बीच पहले जत्थे में कुल 4,822 श्रद्धालु जम्मू से रवाना हुए, जिसमें 2,510 श्रद्धालु नुनवान और 2,312 श्रद्धालु बालटाल आधार शिविर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने श्री अमरनाथ यात्रा की शुरुआत पर श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व के धुंधुआ सिहा क्षेत्र में बाघिन P652 ने 2 शावकों को जन्म दिया है। टाइगर रिजर्व के उपसंचालक वीरेंद्र पटेल ने बताया कि दोनों शावकों की उम्र लगभग 10 दिन है और मां व शावक पूरी तरह स्वस्थ हैं। वन विभाग की विशेष टीम हाथियों और आधुनिक तकनीक की मदद से 24 घंटे उनकी निगरानी कर रही है। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है। 9 दिन की देरी से आया मानसून कल उज्जैन ग्वालियर और चंबल संभाग तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने खंडवा और हरदा के लिए इस मानसून सीजन का पहला रेड अलर्ट जारी किया है, जहां अगले 24 घंटों में 4 से 8 इंच तक बारिश की संभावना है। धार, बड़वानी, खरगोन, देवास, बुरहानपुर और बैतूल में भी अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं मौसम विभाग ने 6 जुलाई तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश जारी रहने का अनुमान जताया है। अब रुख करते हैं क्रिकेट का। इंग्लैंड ने विमेंस T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। टीम ने गुरुवार की रात को सेमीफाइनल मैच में साउथ अफ्रीका को 40 रन से हराया। अब रविवार को लॉर्ड्स के मैदान पर खिताब के लिए इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। वहीं दूसरी तरफ BCCI ने भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया है। ये 2 मैचों की श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट मैच 15 अगस्त से गाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में और दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना के कोचिंग संस्थानों में न्यूनतम 2 CCTV कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं, जो कि सीधे पुलिस कंट्रोल रूम से जुड़ेंगे। सिंगरौली के चितरंगी में विकसित भारत जीराम जी योजना का शुभारंभ राज्य मंत्री राधा सिंह ने कार्यशाला की शुरुआत से किया। खंडवा जिला अस्पताल में OPD पंजीयन को आसान बनाने के लिए अब ई रजिस्ट्रेशन सुविधा शुरू की गई है। आगरमालवा नगर पालिका ने कंपनी गार्डन में नीम, पीपल और बरगद के 111 पौधों का रोपण किया। पन्ना में राज्य खेल अकादमियों के लिए 12 से 18 वर्ष तक के खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया आज से शुरू हुई है। मंदसौर में स्टॉप डायरिया अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल स्रोतों के क्लोरीनेशन और पानी की जांच का प्रशिक्षण शुरू हुआ है। देवास ITI परिसर में 7 जुलाई को युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। छिंदवाड़ा कलेक्टर ने आकाशीय बिजली से बचाव के लिए नागरिकों से दामिनी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने की अपील की है। सीहोर के स्कूली बच्चों के

मानसिक और शारीरिक विकास के लिए आयोजित 3 दिवसीय उमंग हेल्थ एंड वेलनेस प्रशिक्षण का आज समापन हुआ। सागर खेल परिसर के मैदान पर मध्य प्रदेश राज्य महिला हॉकी अकादमी का चयन ट्रायल आयोजित किया गया। निजी स्कूलों में मुफ्त प्रवेश के तीसरे चरण की च्वाइस फिलिंग की शुरुआत हो गई है, जिसमें पहले से पंजीकृत अभिभावक 8 जुलाई तक च्वाइस अपडेट कर सकेंगे। नीमच के जावत सिविल अस्पताल सहित सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर सर्पदंश का इलाज और एंटी स्नेक वेनम 24 घंटे मुफ्त उपलब्ध है। और कटनी में रुक रुक कर हुई बारिश के बाद नगर निगम के अमले ने नालियों की सफाई कर जल भराव की स्थिति को संभाला। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर, दोनों राज्यों को देंगे 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कृषक कल्याण वर्ष की समीक्षा की, सहकारी समितियों के डिजिटलाइजेशन के दिए निर्देश। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ फसलों और मानसून की समीक्षा की, 262 संवेदनशील जिलों की हुई पहचान। और भोपाल में अग्निवीर सेना भर्ती रैली की तैयारियों को लेकर समन्वय बैठक आयोजित, 25 जुलाई से 6 अगस्त तक होगी रैली। इस बुलेटिन में बस इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

मीडियम वेव 462.96 मीटर और न्यूज ऑन AIRA पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं खेती गृहस्थी कार्यक्रम।

खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनने वाला सभी किसान भाई बहन का अनुराधा की राम राम। भाई बहनों ने अभी अपन देख ही रहा कि दो चार दिन से ऐसा पानी आवाज एक दो घंटा में इतना दड़र दड़र पानी पड़ा ना, जरा आकमा छते जगह जगह पानी भरे जाए अपना खेत न। अभी अभी ईज हाल हुई रोज कि भाई जरा आकमा खेत अपना ताला बन जाए, देखा जाए अपन तो सब डबा डब भरेल रह पानी अंदर अन्न जाते हैं। तो ये जल भराव की स्थिति है नी, ये अपनी फसल नकाल लेना अच्छी नहीं है। देखो एक तो अच्छी बात ये कि कभी ऊपर से पानी आई रोज बारिश को पानी आवत जी, तो ये पानी अपना खेत में जमा पड़त तो ओका मिट्टी का अंदर समय जानू चाहिए रिझ जाएगा वो। यदि ओका में जल धारण क्षमता मिट्टी की अच्छी छे तो पानी अंदर चले जाए न। ओका सिकाई हो कि जी अपनों जमीन को अंदर को पानी छे नी ओकी वो उन्नति हो जाए, वो बढ़ी जाए, अपन नखा अगली फसल में काम आवे वो पानी। पण कभी वो मिट्टी की जल धारण क्षमता अच्छी नहीं है तो पानी अंदर नहीं जाता है न, ऊपर का जी सतह पर बनेल रह न। सतह पर यदि पानी बहुत लंबा समय तक बनेल रह तो कासी काई हो कि हमारी मिट्टी का जी ऊपरी सतह छे वही जाए पानी का साथ साथ न। कभी ऐसी स्थिति नहीं बनती है तो ज़्यादा पानी भरेल रहने से हमारी जो पौधा छे उनकी जड़ न खा हवा नहीं मिलती है, ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो जड़ न सड़नू लगी जाए। तो अभी तो जैसो ऐसो अपन देखे रहा कि भाई एक दो घंटा पानी आयो ना थोड़ी देर में समय ही भीगो। पर कभी अपन आने वाला समय में ये देख ही रहा कि यदि दो चार दिन तक लगातार पानी पड़ो न, ऐसी स्थिति में अपन नख लगा कि भाई पानी अंदर नहीं जा रो है तो अभी से अपन नखो की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। करनूज का ही भाई ये छे कि देखो अपन नख लगी रहो अपना जब अपन अपना खेत में जावा नहीं तो अपन नख देखी ना समझ में आवाज कि ओका ढलान किना तरफ छे। तो यदि अपन नख लगी रहो कि एक तरफ ढलान छे तो ऐसी स्थिति में अपन नाड़े न बने ना वो ढलान की तरफ नाड़े नख लई जावा। तो वहाँ का ही होएगा कि वो पानी अतिरिक्त जी पानी आवागा नहीं वो वहाँ से नाड़े न से वही ना एक खेत का एक कोना में इकट्ठा हो जाएगा तो अपनी पूरी फसल का खराब नहीं करना को। एक साथ साथ हमारा जो किसान भाई बहन अपनी मेड़ पर भी बड़ी बड़ी नाड़ें बनावा नहीं, बहुत अच्छी गहरी नाड़ें रह वहाँ तो बड़ी बड़ी दो चार फीट अंदर गहरी भी हुई सकज। पर ओका में का ही हो कचरो

फंसी जाए तो कासी पानी बाहर ने निकलते हैं। तो वहाँ पर यदि अपुन ने थोड़ा सा सूखा पत्ता जी अपना पहला था उन नाखी दिया या अपुन कहाँ की अभी खर पतवार अपने निकले ओखा अपुन ना काटी ना ओखा में नाखी दी तो वो वहाँ ऐसा हो जाएगा कि वो पानी छनी ना धीरे धीरे धीरे धीरे रिंजता रहेगा। अब देखो नाले ना भरेल भी रहेगा नहीं दो दिन चार दिन तो कासी कहीं अपुन का नुकसान तो होना कौन अंदर धीरे धीरे धीरे धीरे पानी अंदर समाया करेगा। तो नाले न पानी भरेल रहू अलग बात है अपना खेत न पानी भरेल रहू अलग बात है। तो खेत को पानी यदि भरेल रही रहो तो वो अपनी फसल का नुकसान पहुंचाएगा और कल उपाय करना बहुत आवश्यक है। ये तो छे इना साल की बात। कभी अपन नखा लगी रहो कि भाई अपना खेत में पानी ऊपर भरेल रह तो फिर ओखा खेत का थोड़ा सो समतल कराने की भी आवश्यकता पड़े पर आव तो समय निकलेगो आवने वाला समय में अपन नखा थोड़ा सो खर्चो करना ना ओखा समतल करा लेना चाहिए ताकि एक जगह पानी इकट्ठो नहीं हो पूरा पानी सब दूर फैली जाए ना हर पौधा को बराबर बराबर मात्रा में मिलेगा। हो चार कभी कभी कहीं हो कि चार छः जगह ऐसी गड्ढा हुई जाए वहाँ पानी भरेल रहे तो वहाँ की फसल जी से अपन जब दूर से देखा नहीं तो वहाँ अलग अलग ऐसा पेज बनेल देखा वहाँ की फसल खराब हुई जाए तो ऐसा में कहीं छे उत्पादन पर असर पड़ी जाए अपनों। तो इन्हीं बात को अपन का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि पानी भरेल नहीं रहे। अभी इना समय यदि पानी भरेल छे तो अभी भी समय छे कि खेत में छोटी छोटी नाड़ी ना अपन बनाई सकें मेड़ की नाड़ी ना की साफ सफाई करी सकें उनका पानी का क्योंकि पानी जाए नहीं। देखो अतिरिक्त पानी का अपन जब खेत से बाहर करांगा नहीं तो खेत से बाहर जब पानी जाएगा तो अपनी खेत की मिट्टी का भी ले जाएगा तो खेत से पानी निकालना उपाय नहीं है। खेत में पानी समय जाए ऐसी व्यवस्था करनू ई उपाय छे। तो अपन नखा अपनी मिट्टी का वही ना बाहर चली जाए ये अपन नखा मंजूर नहीं रहने को। तो एकाले ना बहुत समझदारी का साथ मिट्टी का भी रोकी लेवा ना पानी का भी रोकी लेवा ऐसा उपाय ना की अभी आवश्यकता छे। तो आज तो देखो अपन खेती बाड़ी की बात भी करांगा लोकगीत भी सुनांगा पर शुरुआत तो एक अच्छा सा लोकगीत सी करा अपना गाँव में काई काई हुई रोज कसो न्यारो छे हमारो गाँव अपन इन्हीं लो मालवी लोकगीत का सुनाएं।

0: अभी अपन सुन ही रहा था स्वाति उखलेन उनकी मंडली को गाया ये मालवी लोकगीत। भाई प्रणी देखो जब किसान भाई बहन कोई माल अपनों जी खेत से निकल रहा जी या उनका यहाँ जो भी उत्पादन हुई रोज ओखा असोज बेची जी तो उनका मूल्य अच्छो नहीं मिलता है। पर यदि वो मूल्य संवर्धन करी ले जी या कोई भी ओखो ऐसा उत्पाद तैयार कर ले जेको कि मूल्य ज़्यादा मिलेगा ना ओखा कच्चो माल भी उनका जहाँ मिली जाए तो ऐसी स्थिति में उनको बहुत फायदा मिला जी। क्योंकि कोई भी चीज़ जैसा अपन देखा कि भाई दूध छे तो किसान भाई बहन ने कहा यहाँ पशुधन छे ना उनका बाद दूध निकाले ना ओखो व्यापार करज लोग ना का बेचज भी। पर यदि दूध का उत्पाद तैयार कर ले तो उनका भाव फायदा बहुत ज़्यादा बढ़ी जाए। तो आज अपन दूध न दूध का मूल्य संवर्धन किना तरीका से करा एकाज बारह में एक भेंटवार्ता सुनाए जानकारी दे रहा है डॉक्टर प्रणव चौहान जी की पशुधन उत्पाद प्रौद्योगिकी विभाग पशु चिकित्सा महाविद्यालय महू से हमारा बीच में पधारिया था तो इनका से बातचीत करी बहन भारती उपाध्याय ने।
1: किसान भाइयों आज अपन बात करांगा दूध ने दूध को मूल्य संवर्धन जैसे कि दूध से दही बनाई सको पनीर पनीर ने साथ साथ घी ने मक्खन या चीज़ों बने ने दूध ने दूध उत्पादन को मूल्य संवर्धन अपन कैसे कराने कैसे अपना किसान भाइयों इको लाभ ली सके है तो भाइयों जाना एका बारा में आज अपना चौपाल पे पधारिया है डॉक्टर प्रणव चौहान पशुधन उत्पाद प्रौद्योगिकी विभाग पशु चिकित्सा महाविद्यालय महू से। तो डॉक्टर साहब आपको हमारी चौपाल पे स्वागत है ने राम राम।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सभी किसान भाइयों को राम राम।
1: सबसे पहला तो डॉक्टर साहब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि दूध किसे कहवे है।
2: दूध स्वस्थ पशु से उत्पादित स्वस्थ साफ ताजा और लैक्टियल स्राव है जो पशु के ब्याद के 15 दिन पहले और 5 दिन बाद की अवधि को छोड़कर उस दौरान पशु के थन से कोलेस्ट्रॉल निकलता है जिसको आम बोलचाल की भाषा में चीका बोलते हैं उसकी मात्रा

0: को छोड़कर और उसमें निर्धारित वसा और वसा रहित ठोस SNF और फैट की जो निर्धारित मात्रा हो वह उपलब्ध हो तो उसे हम दूध कहते हैं।
1: अच्छा, जैसे आप बोल रहे हैं कि 5 दिन पहला मतलब 5 दिन बाद वाला दूध अपन उपयोग में नहीं ले सका।
0: हाँ जी, जो दूध होता है दूध के जो उस दौरान का दूध होता है उसको चीका बोलते हैं।
1: हाँ,
0: वह
1: वो चीको।
0: सामान्य दूध से उसकी भौतिक और रासायनिक उसकी प्रॉपर्टी में भिन्नता होती है,
1: अच्छा
0: उसके
1: अच्छा
0: कलर में, उसके सुगंध में, उसके स्वाद में। और उसको यदि किसान भाई गर्म करते हैं तो जल्दी से फट जाता है,
1: अच्छा
0: और
1: अच्छा
0: वह सामान्य दूध से उसके अवयव में भिन्नता होती है, इसलिए उस प्रकार के दूध
1: मतलब
0: को
1: वो
0: अलग करते
1: दूध
0: हैं।
1: अपन उपयोग में नहीं ले सका
0: उसको उपयोग में ले सकते हैं लेकिन
1: चीको
0: उस
1: बने के।
0: जी चीको बना के उसको सामान्य दूध से मिलाएंगे तो दूध खराब हो जाएगा।
1: ठीक है ठीक है। डॉक्टर साहब, अगलो प्रश्न हमारा यो है कि दूध जो है ओका प्रमुख संगठन कई कई होवे।
0: जैसा कि हमने सभी लोग देखते हैं, दूध को हम सामान्य तौर पे सोचते हैं कि ये केवल प्रोटीन है इसमें और कैल्शियम है, लेकिन ऐसा नहीं है किसान भाइयों। दूध में बहुतायत मात्रा में पानी होता है, लगभग 85% उसका मुख्य अवयव पानी है। उसके अलावा उसमें वसा पाया जाता है जिसकी मात्रा गाय और भैंस में अलग अलग होती है। गाय में लगभग 3.5% के करीब फैट जिसको वसा बोलते हैं, और भैंस में ये 6 से 7% होता है। इसी तरह से लैक्टोज पाया जाता है जिसको हम दूध का शुगर बोलते हैं, मिल्क शुगर बोलते हैं, उसकी मात्रा 4.5%, और प्रोटीन की मात्रा 3.5% के करीब होती है। साथ साथ में जो कैल्शियम और भी खनिज लवण होते हैं उसकी मात्रा लगभग 0.75% के करीब होती है। तो इस तरह से यह दूध जो है विभिन्न अवयवों से मिलकर बना होता है।
1: अच्छा, मतलब गाय को दूध की में प्रोटीन और दूसरी जो मतलब विटामिन है ओकी अलग रहे वैल्यू ने भैंस में अलग पाया जा रहे
0: हाँ जी,
1: हैं।
0: हाँ जी, दूध और दूध जो विभिन्न पशु हैं उनकी नस्लों के आधार पे,
1: अच्छा,
0: नस्लों के आधार पे, विभिन्न प्रजातियों के आधार पे स्तनधारियों के दूध में बहुत भिन्नता पाई जाती है। इसी तरह से हमारे जो मुख्य दो दुधारू जानवर हैं गाय और भैंस, उनके मुख्य रूप से वसा की मात्रा में भिन्नता पाई जाती है।
1: जैसे कि अपना किसान भाई हम पशुपालन करे खेती का साथ साथ, तो उनका पास पशु तो रहे पर उन वे जो दूध के दोहे उनकी मतलब दूध दोहने की जो विधि है वह अलग होवे है कि जैसी जो दूध दोहे वसी रहे।
0: नहीं, इसके बारे में बताया गया है वैज्ञानिक रूप से दूध दोहने दूध निकालने की मुख्यतः 3 विधियाँ होती हैं। एक जो होती है अंगूठे को दबाकर जिसको नकलिंग बोलते हैं, दूसरी होती है पूर्ण हस्त विधि जिसको अंग्रेजी में फुल हैंड मेथड बोलते हैं, और तीसरी होती है अंगूठा और एक उंगली का यूज करके जिसको स्ट्रिपिंग बोलते हैं। लेकिन जो वैज्ञानिक रूप से बताया गया है वो सबसे उपयुक्त विधि है फुल हैंड मेथड, जिसको
1: अच्छा,
0: संपूर्ण हस्त विधि बोलते हैं, जिससे पशु को आरामदायक होता है और आसानी से दूध का स्राव होता है।
1: डॉक्टर साहब, दूध का कई कई प्रकार होवे।
0: हाँ जी, दूध के अलग अलग प्रकार होता है, जैसे कि हमारे नियम के आधार पे उसमें न्यूनतम निर्धारित मात्रा वसा की और वसा रहित ठोस मतलब फैट और SNF की मात्रा के आधार पर दूध को 4 भागों में बांट दिया जा सकता है। जैसे एक होता है संपूर्ण दूध, मतलब जो स्वस्थ दुधारू पशु से दूध को दोहने के बाद उसके संपूर्ण अवयव उसी तरह हों, उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन न किया गया हो, तो उसको हम बोलते हैं संपूर्ण दूध। जैसे गाय का दूध जिसमें लगभग 3.5% के करीब वसा होगी, और भैंस के दूध जिसमें लगभग 6 से 7% वसा की मात्रा होगी, तो ये संपूर्ण दूध होगा। यदि
1: अच्छा,
0: इसके वसा और वसा रहित ठोस में यदि हम परिवर्तन करते हैं तो उसको स्टैंडर्डाइज मिल्क बोलते हैं, जिसमें लगभग 4.5% वसा और 8.5% SNF की मात्रा होती है। इसी तरह से दूध में हम दूध का पाउडर और पानी को मिलाकर उसके फैट और SNF की मात्रा को एडजस्ट करते हैं, उसको परिवर्तन करते हैं। तो उस तरह से यदि 3% फैट है और 8.5% के करीब SNF है तो उसको टोन्ड मिल्क बोलेंगे, और मात्रा कम हो जाती है तो उसको बोलते हैं डबल टोन्ड मिल्क, जिसमें फैट की मात्रा लगभग 1.5% के करीब होती है।
1: अच्छा, दूध की जो बात चल रही है तो दूध से कई स्वास्थ्य लाभ भी होवे।
0: हाँ जी, दूध जैसे सब समस्त स्तनधारियों के शिशु के पोषण के लिए मादा द्वारा दूध का स्राव होता है, तो प्रकृति द्वारा एक ऐसा भोज्य पदार्थ शिशुओं को प्रदान किया गया है जिसमें संपूर्ण तरह के पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, इसलिए इसको संपूर्ण आहार

0: भी बोलते हैं। दूध में हमारे शरीर के वृद्धि विकास के लिए आवश्यक प्रोटीन, हमारे हमारे स्केल्टन, हमारी हड्डियों के निर्माण के लिए कैल्शियम मिनरल और ऊर्जा देने वाले फैट और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा में जो लैक्टोज है उसकी मात्रा उपलब्ध होती है। साथ साथ में हमें स्वास्थ्य देने वाले आवश्यक विटामिन और मिनरल भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इस तरह से हमारे शरीर के निर्माण और वृद्धि विकास के लिए ये एक संपूर्ण आहार है।
1: अच्छा, दूध को मूल्य संवर्धन कहीं हो गए?
0: दूध का मूल्य संवर्धन से अभिप्राय ऐसा है कि दूध एक तरह का संपूर्ण आहार है, लेकिन ये क्या है, जल्दी खराब होने वाला भी पेय है। तो उसको जल्दी खराब होने से बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए हम कुछ प्रक्रियाओं को अपनाते हैं जिससे उसकी लाइफ लाइफ में, उसकी सेल्फ लाइफ में उसकी वृद्धि होती है, उसको खराब होने से बचा सकते हैं, तथा उसमें विभिन्नता, विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, मूल्य संवर्धन बोलते हैं, जिसके उससे मूल्य में भी वृद्धि होती है।
1: अच्छा, तो मूल्य संवर्धन तो समझ में आएगा। आप ये दूध को प्रसंस्करण कहीं है?
0: दूध का प्रसंस्करण में जो दूध किसान भाइयों के उत्पादन के बाद उनको इकट्ठा कर किया जाता है, उसको सहकारी दूध यूनिटों के पास, सहकारी दूध संघ के पास जब भेजा जाता है तो उस कुछ प्रक्रियाओं के द्वारा वो गुजरता है जिसको प्रसंस्करण बोलते हैं। सामान्यतः दूध को सबसे पहले संकलित किया जाता है, फिर उसको प्रशीतलन या शीतलन करते हैं, जिसको उसको ठंडा करते हैं लगभग 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर पे, फिर उसको स्टरनलाइज करते हैं, उसमें फैट और SNF की मात्रा को निर्धारित लेवल तक उसको निर्धारित करते हैं। साथ साथ में दूध को उसके बाद छानते हैं। उसके बाद एक आवश्यक प्रक्रिया होती है जिसको होमोजेनाइजेशन बोलते हैं, जिसमें वसा के कणों को बारीक छोटे छोटे कणों में तोड़ते हैं, इसको प्रेशर के साथ में इसको तोड़ते हैं। उसके बाद उसका निरोगीकरण करते हैं जिसको बोलते हैं पाश्चुराइजेशन। मतलब दूध को हम एक निश्चित तापमान और निश्चित समय अंतराल, जो 72 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तापमान पर 15 डिग्री 15 सेकेंड समय के लिए उसको गर्म करते हैं, जिससे उसको खराब करने वाले समस्त जीवाणु और विषाणु वो मर जाते हैं। इस तरह से दूध को फिर तुरंत ठंडा किया जाता है और उसको पैक करते हैं और उसको बाजार में उपलब्ध कराते हैं। तो ये संपूर्ण जो प्रक्रिया है इसको ही हम क्या बोलते हैं, एक आधारभूत संस्करण बोलते हैं।
1: अच्छा, दूध का प्रमुख उत्पाद कौन कौन सा है?
0: जी, दूध एक उत्पादन है। दूध एक ही दूध को हम विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा हम अलग अलग उत्पाद को निर्माण कर सकते हैं। जैसे यदि हम दूध को गर्म करते हैं, दूध को गर्म करते हैं उसमें थोड़ा सा कल्चर मिलाते हैं, जामन जिसको बोलते हैं देसी भाषा में, उसको मिलाने के बाद उसको हम रख देते हैं, एक रात के लिए रख देते हैं। यदि मौसम के हिसाब से 3 से 4 घंटे तो दही बन जाती है। अब दही को हम एक मसलिन क्लॉथ में उसको डाल देते हैं, उसको यदि रख देंगे उसको, तो उसमें से पानी निथर जाएगा, निकल जाएगा, तो जो बचेगा उसको चक्का बोलेंगे। अब उस चक्के में हम यदि शुगर मिला देते हैं, लगभग 45 से 50% शुगर मिक्स करते हैं, तो श्रीखंड बन जाता है। इसी तरह से उसी को हम मथ देते हैं तो हमें पर हमारे पास मक्खन मिल जाता है। मक्खन को हम फर्दर उसको हम यदि गर्म करते हैं तो घी बन जाता है। तो एक तरह से फर्मेंटेशन के द्वारा, किण्वन के द्वारा एक उत्पाद होता है। इसी तरह से यदि हम कंडेंसेशन करते हैं, यदि हम गर्म करते हैं दूध को, तो उससे भी अलग अलग उत्पाद निर्माण कर सकते हैं, जैसे खोया, बासुंदी, रबड़ी, इस तरह से उत्पाद, और उनके ही बहुत सारी मिठाइयाँ भी उत्पादित कर सकते हैं। और हमारे जीवन में जो प्रचलित भोजन के रूप में उपलब्ध है पनीर, उसका भी निर्माण हम एसिड और उष्मा के द्वारा, उसके द्वारा हम उसको निर्माण
1: मतलब
0: कर
1: दूध
0: सकते
1: के
0: हैं।
1: अपन जैसो चाहे जिस रूप में ढाल ही सका हम।
0: हाँ जी, हाँ जी, दूध को हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, पब्लिक की मांग के अनुसार और हमारे त्योहारों के अनुसार अपने अलग अलग तरीके से विभिन्न उत्पाद निर्माण कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि दूध का जो उत्पाद है उसको मूल्य संवर्धन कैसे करा?
0: जी, दूध का मुख्य उत्पाद बनाते समय कुछ उप उत्पाद भी बनते हैं, उप उत्पाद जिसको बाई प्रोडक्ट बोलते हैं, उसका भी हम मूल्य संवर्धन कर सकते हैं। जैसे हम पनीर बनाते हैं, पनीर के साथ में पानी जो निकलता है जिसको व्हे बोलते हैं, व्हे को हम उसके भी अलग अलग तरीके के पेय बना सकते हैं जिसको बेवरेज बोलते हैं। इसी तरह से घी जब बनाते हैं तो घी का जो रेजिड्यू निकलता है, जो हमें रेजिडू मिलता है घी से, उसका निर्माण हम उसको यूज कर सकते हैं, हम टॉफी बनाने के लिए यूज होता है। उसी तरह से स्कीम मिल्क, जब दूध से हम वसा को निकाल लेते हैं तो स्कीम मिल्क बनता है, तो इस तरह से उसका भी मूल्य संवर्धन करके अपने उपयोग में ला सकते हैं और अधिक से अधिक आमदनी और रोजगार सृजित कर सकते हैं।
1: डॉक्टर प्रणव चौहान जी, आप हमारी चौपाल पे आया और हमारा किसान भाइयों के दूध ने दूध को मूल्य संवर्धन कैसे अपना किसान भाइयों करे एक बारा में आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, एकालेन आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सभी किसान भाइयों को, राम राम।
2: भाई वर्ण, अभी अपन सुनी रहा था दूध न दूध को मूल्य संवर्धन, जानकारी दे रहा था पशुधन उत्पाद प्रौद्योगिकी विभाग पशु चिकित्सा महाविद्यालय महू का प्राध्यापक डॉक्टर प्रणव चौहान न, उनका सी बात करी बहन भारती उपाध्याय न। भाई बहनों ने देखो, आज जी दिन छे नी, मतलब अपुनी समझा कि 1 तारीख से 7 तारीख तक, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक अपना देश में वन महोत्सव को आयोजन हुई रोज। ये सप्ताह जी छे वन महोत्सव सप्ताह छे। वन महोत्सव मतलब ये अपन समझा कि जैसे जुलाई को जो पहलो हफ्तो रही ओका में लगभग मानसून को आगमन भी सब जगह हुई जाए न, वहाँ ऐसी स्थिति बनी जाए कि भाई अमा अपन कोई पौधा रोपांगा तो अपन न खाओ कि सिंचाई करना की आवश्यकता नहीं है, ओखा प्राकृतिक रूप से पानी मिलते रहेगा न, ओखा जीवित रहने की संभावना बनी जाएगा। तो असो सोचना न वन महोत्सव सप्ताह को जी आयोजन करे वो 1 जुलाई से लेना 7 जुलाई तक को बीच में छे, तो ये अपना बीच में अपन नखा ये समझना की आवश्यकता छे कि कोई भी सप्ताह कोई भी दिन अपन मनाई राज तो को उद्देश्य ये छे कि लोग न जागरूकता फैलावण अलग अलग तरह का कार्यक्रम न का माध्यम से या फिर संस्था कोई कार्यक्रम करज। तो देखो आज भी देश भर का स्कूल न बच्चा ने खूब सारा पौधा लगाया पेड़ लगाया न, ओका में कई हो कि उनका मुफ्त छे ते पौध वितरण की भी व्यवस्था बहुत सारा अलग अलग संस्थान न करी न, सघन वृक्षारोपण अभियान ये होनू चाहिए एको भी एक लोग ने ना उद्देश्य लेना ना अपना ओका में कार्यक्रम न का आयोजित करो न। देखो सबसे बड़ी बात ये कि पौधा लगावणू एक चीज़ छे न, ओको बड़ा करनू ये अलग बात छे। तो ये जी समय चला नहीं कि ओका में ये हो कि अपन न मानी चली रहा है कि 3-4 महीना अपन न कहीं भी ओकी देखभाल करना की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, तो इन 3-4 महीना में पौधों अपना आप असो अस्तित्व में आई जाएगा कि बाद में वो चली जाए। नहीं तो कभी बहुत सारा लोग का ही करा कि गर्मी में पौधा लगे दे तो उनका यदि पर्याप्त तो सिंचाई नहीं मिलती है तो पौधों मरी जाए। तो अभी जी वन महोत्सव सप्ताह जी छे एका में जितना भी पौधा लगा गई एक हफ्ता का अंदर ये 3-4 महीना में अच्छा जड़ पकड़ी लेगा न, बाद में इनकी बढ़वार की संभावना बहुत अधिक हुई जाए। तो आज वन महोत्सव सप्ताह थो 1 जुलाई से 7 जुलाई तक न, इंदर राजा की मेहरबानी रहेगा तो ये पौधा जमीन भी पकड़ी लेगा। तो चलो अपने इंदर राजा को गीत सुनी लेवाज, राम अवतार अखंडन उनका साथी न को गायल।

अभी अपन सुनी रहा था रामो तारा खंडन उनका साथी ने को गायल ये वर्षा गीत। भाई बहनों ने कृषि उपज मंडी समिति इंदौर का आज का भाव मारा हाथ में आएगा। हाँ अपना किसान भाई बहन ने कहा बता दियो, आज सोयाबीन जी शुरू हुई थी न्यूनतम भाव 3600 रुपया सी, अधिकतम भाव 6780 रुपया प्रति क्विंटल का हिसाब से बिकी, न 6700 रुपया प्रति क्विंटल एको मॉडल भाव रहे। वहाँ डॉलर चना की बात करा तो 1670 रुपया से शुरू हुआ था, पर अधिकतम भाव 9055 रुपया, तो बहुत अंतर का साथ ये बंद हुआ आज। न मॉडल भाव एको रहे 7800 रुपया प्रति क्विंटल। मूंग की बात करा तो मूंग आज न्यूनतम भाव बहुत अच कम थो 400 रुपया, पर अधिकतम भाव 7505 रुपया पर बंद हुयो, न एको मॉडल भाव रहो 6990 रुपया प्रति क्विंटल। गेहूँ 2009 रुपया से शुरू हुआ था न्यूनतम भाव का साथ, अधिकतम भाव 2996 रुपया प्रति क्विंटल का हिसाब से बिकिया, न वहाँ जो मॉडल भाव रहो 2733 रुपया प्रति क्विंटल। चना देसी 3405 रुपया से शुरू हुआ था, न 7200 रुपया प्रति क्विंटल का हिसाब से अधिकतम भाव पर बिकिया, एको मॉडल भाव आज रहे हो 5405 रुपया प्रति क्विंटल। मिर्ची की बात करा तो मिर्ची को भाव न्यूनतम जो थो वो 10610 रुपया प्रति क्विंटल थो, न एको अधिकतम भाव गयो 13960 रुपया प्रति क्विंटल। वहाँ जेको मॉडल भाव रहे हो 12700 रुपया प्रति क्विंटल का हिसाब से बिकी। सरसों 6605 रुपया से शुरू हुई थी, न 6705 रुपया अधिकतम 100 रुपया का अंतर से अधिकतम भाव पर बिकी, वहाँ जेको मॉडल भाव थो 6605 रुपया प्रति क्विंटल। एका साथ साथ मक्का की बात करा तो 1999 रुपया ये आज मक्का को एक अज भाव थो, न मटर 2705 रुपया से शुरू हुई थी 3745 रुपया अधिकतम भाव पर बिकी, न मॉडल भाव थो 2695 रुपया प्रति क्विंटल। तो ये तो था कृषि उपज मंडी समिति इंदौर का आज का भाव। भाई बहनों ने कार्यक्रम में आगे एक लोकगीत अरु सुनाज यशवंत यादव को गायल।

0: करो संसार सी, हो सुखी धरती निर्मल अपनी शीतल
1: बौछार सिया।
0: हर नदी तलैया पानी सी भरो, तर जीव जंतु उपकार सी, सुखा झाड़ तम हरा करो पत्र।

अरे सुनी ले वो किसान भाया भयावग मैनु आषाढ़ रे पड़ग पानी लग गवाणी खुश हो सगलो निमा अरे हसी खुशी नन चलिया वावण बांध्यो तिफन पसिंगाड़ रे

अभी अपन सुनी रहा था यशवंत यादव और उनका साथी नको गायल इन निमाड़ी वर्षा गीत। भाई बहनों ने आज 3 जुलाई को दिन अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस का रूप में भी हम पूरा देश न पूरा विश्व न मनायो। प्लास्टिक का कहज कि भाई प्लास्टिक जी छे वो मिट्टी की उर्वरता का नष्ट करी रोज। तो एक कारण नारो ये दियो कि भाई प्लास्टिक से नाता तोड़ो न प्रकृति से नाता जोड़ो। प्लास्टिक छोड़ना का बहुत सारा फायदा छे न प्रकृति से जुड़ना का भी बहुत सारा फायदा छे। भाई देखो अपना जल स्रोत जी छे वो प्रदूषित हुई राज पशु पक्षी न का लेना बहुत घातक छे न अपना भी स्वास्थ्य का लेना बहुत नुकसान करे क्योंकि अपन हर चीज़ का प्लास्टिक की थैली में रखी लेवा न कभी कभी तो कहीं हो कि गर्म ठंडी चीज़ न भी ओका में रखी जाए तो वो तो अरु बहुत ज़्यादा नुकसान करे। तो प्लास्टिक को छोड़ना की जी बात है तो ओका उपाय होना चाहिए कि भाई प्लास्टिक आप छोड़ दोगे तो जगह का ही उपयोग करोगे। भाई जूट का थैला उपयोग कर सकोज, कपड़ा का थैला अपना घर से लेने न जाओ तो ई भी आप कर सकोज। अपना घर में यदि है तो आप छोटा छोटा डब्बा नमा सामान भर लो, स्टील का डब्बा नमा भर लो या फिर टोकनी नमा रखी लो। पर छोटो सो बदलाव जी है बड़ो प्रभाव अपन नका बताई सकज। तो आज को दिन को 3 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग से मुक्ति दिवस को दिन है तो अपन नका ही बात को ध्यान रखना पड़ेगा। न एक साथ खेती गृहस्थी कार्यक्रम की बखत पूरी हुई रही किसान भाई बहन का कल का कार्यक्रम उनका बारे में बताई दियो। काल संजा का खेती गृहस्थी कार्यक्रम में प्रगतिशील कृषक भैरूलाल वाकतरिया सी एक बातचीत अपूर्ण खेती गृहस्थी कार्यक्रम में सुनांगा। अव अनुराधा का देव आज्ञा राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे खेती गृहस्थी कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। रात्रि के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में सुर्खियों में कार्यक्रम रिले होगा आकाशवाणी भोपाल से, कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए आप सुनते हैं कार्यक्रम सुर्खियों में।
2: सुर्खियों में
3: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत जापान रणनीतिक साझेदारी के विस्तार और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत ज्ञानेश्वर मूले, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार।
4: ज्ञानेश्वर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि 16वें भारत जापान शिखर सम्मेलन को आप किस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि आप जापान में रह चुके हैं, तो क्या ये सिर्फ दोनों देशों के रिश्तों को आगे बढ़ाने का एक सम्मेलन रहा है, या फिर हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो बदलती हुई रणनीतियां हैं उनके लिए कोई संकेत है, या फिर आपको लगता है कि कोई बड़ी उपलब्धि इस मुलाकात से हासिल हुई है?
5: मैं समझता हूं कि हमारे जो रिश्ते हैं विदेशों के साथ, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, सभी देशों के तुलना में जिस देश के साथ हमारे रिश्ते सबसे बड़ा महत्व रखते हैं मेरे ख्याल से, वो है जापान। जापान और भारत के रिश्ते की खूबी अगर कोई अगर है, तो इस रिश्ते में कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो दोनों को खलता है या किसी तरह से नीचे खींचता है। ये आगे जाने वाला रिश्ता है। दूसरी बात यह है कि जो जापान की विद्यमान प्रधानमंत्री है, वो पहली बार भारत आ रही है, और वो भी जापान की पहली प्रधानमंत्री है, वो तो वो भी एक अपनी विशेषता रखती है। और 16वां जो शिखर वार्तालाप है, ये रिश्ते को दिखाता है कि कितने उच्च स्तरीय बैठकें होती है और उसको कितना इस रिश्ते का महत्व है। सिर्फ प्रशांत महासागर ही नहीं, दुनिया में जहां जहां अलग अलग तरीके से इसको हम हॉटस्पॉट बोलते हैं, उनके बारे में भी जिक्र आया है। प्रशांत महासागर के लिए ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि हाल ही में आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, अमेरिका ने इसको इंडो पैसिफिक के बजाय यूएस पैसिफिक कहना शुरू कर दिया, और हालांकि बहुत राजनयिक प्रयत्नों के बाद इंडो पैसिफिक ये बात जो है रिकॉग्नाइज होती आई है पिछले कुछ एक दो दशकों में। तो ये प्रशांत महासागर जो है हमारे लिए सभी तरह से महत्वपूर्ण है। वहाँ बहुत सारे संसाधन है, वहाँ बहुत सारे महत्वपूर्ण देश है जिनके साथ हमारे रिश्ते है, और एक दुनिया का महत्वपूर्ण जो रिसोर्स बोलते हैं, सागरी रिसोर्स।
4: भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और जापान के संबंध वास्तव में बेहद विशेष हैं।
6: हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण हैं। पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है। हमें बहुत खुशी है कि कावासाकी, यामाहा और होंडा की बाइक्स भी भारत में आज विश्व भर में एक्सपोर्ट होती है। इसी तरह एयर कंडीशनर हो या पावर ग्रिड इक्विपमेंट, प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग हो या मेडिकल टेक्नोलॉजी, जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है, तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
4: दोनों प्रधानमंत्रियों की मीटिंग के बाद जो संयुक्त वक्तव्य दिया गया, उसमें रक्षा, आर्थिक सुरक्षा और लोगों के बीच संपर्क को आपसी रिश्ते के 3 बड़े स्तंभ के रूप में बताया गया है, तो आपको लगता है कि भारत और जापान के जो संबंध है एक नए रणनीतिक स्तर पर पहुंच चुके हैं?
5: ये रिश्ता स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि ये रिश्ता ऑलरेडी उस ऊंचाई तक पहुंच गया है। अब दोनों देशों की ये महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है कि इसको और आगे कैसे बढ़ाए और मजबूत कैसे बनाए और इसके आयाम जो है वो किस तरह से बढ़ाए, ये अभी विषय है। इसमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात है, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी की बात तो है ही है, इसके साथ ऊर्जा की सिक्योरिटी की बात है, इसमें AI से लेकर कोलैबोरेशन की बात है, रेयर अर्थ और प्रेशियस मटेरियल जो होता है उसके बारे में, जैसे बैटरी का बड़े पैमाने पे दोनों देशों में निर्माण होने के लिए प्रयत्न है, इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट के बारे में भी चर्चा है। तो ये मैं समझता हूँ कि प्रशांत महासागर में शांति प्रस्थापित हो हुए तो भारत का है ही महत्वपूर्ण उद्देश्य। उसके साथ साथ अन्य मामलों पे भी बहुत अच्छी चर्चा हुई है, जिसका प्रतिबिंब जो है हम लोग इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में देख सकते हैं, जो कि 10 पन्नों तक चला जाता है।
4: अभी आपने जिस तरह से जिक्र किया तमाम चीजों का, तो सेमीकंडक्टर का भी काफी बड़े पैमाने पर उल्लेख किया गया। हाई टेक्नोलॉजी को एक्सचेंज करने की बात है, साइंस या फिर स्पेस की हम बात कर रहे हैं, क्वांटम टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक्स टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, मिशन की कई सारी चीजों में बात कर रहे हैं। तो ये भविष्य की कूटनीति और विज्ञान को मिला जुला करके दोनों देश आपसी संबंधों को आगे ले जा रहे हैं।
5: बिल्कुल ले जा रहे हैं कि हमारा जैसे व्यापार है, व्यापार के बारे में चर्चा ये हुई है कि भारत से निर्यात जापान बढ़नी चाहिए। आज के दिन में जिसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, वो जापान के फेवर में बड़े पैमाने पे है। भारत की निर्यात जो है वो करीबन 6 बिलियन के आसपास है, और कुल मिलकर जो 27 बिलियन डॉलर ट्रेड है उसमें 5 बिलियन बहुत कम लगता है, इसलिए इसके बारे में कोशिश की जाएगी। करीबन 10 ट्रिलियन जापानीज एन की इन्वेस्टमेंट में आ रही है। इसमें रेलवे का भी जिक्र है, इसमें नए नए उद्योगों का जिक्र है। बड़े पैमानों पे सुमितोमो ने भारत में इन्वेस्ट करने का निर्णय ले लिया है। तो इस तरह से एक कमी ढूंढने की मुश्किल लगती है इस पूरे ज्वाइंट स्टेटमेंट में, इतना सारा इसका आयाम जो है विशाल है, दोनों देश के बीच में संबंधों को दर्शाता है।
4: जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने कहा कि जापान और भारत को अपनी अपनी ताकत का पूरा लाभ उठाते हुए साथ मिलकर और अधिक सशक्त तथा समृद्ध बनना चाहिए।
7: We confirmed that we are on the same page and developed this relationship as brother and sister. The following points at the center of our cooperation. First, to deepen the strategic cooperation between Japan and India. Our two countries share the vision on the profile of international order we should establish under the current international situation.
4: आपने ट्रेन की बात की है, तो मुंबई अहमदाबाद जो बुलेट ट्रेन परियोजना है, इसका भी जिक्र किया गया है। ये एक ऐसी परियोजना है भारत के लिहाज से जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जापान ने इसमें बढ़ चढ़ करके अपनी हिस्सेदारी दिखाई है, निवेश भी किया है। तो ये परियोजना जो है एक तरह से कह सकते हैं भारत और जापान की साझेदारी की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रतीक बन चुकी है। व्यापक अहमियत अगर हम देखें इकोनॉमिक दृष्टि से, तो आपको क्या लगता है कि कितना इंपॉर्टेंट होगा ये?
5: बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, जैसा कि मैंने कहा, व्यापार की चर्चा हुई है, निवेश की चर्चा, ज्वाइंट कोलैबोरेशन की चर्चा हुई है, बैटरी और अन्य उत्पादों के प्रोडक्ट्स की बात हुई है। तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए जितनी चीजें जरूरत है उन सब के बारे में चर्चा, AI के बारे में कोलैबोरेशन का जिक्र है। तो मैं समझता हूँ कि कुल मिलकर आर्थिक जो नीतियां हैं, वित्तीय नीतियां हैं, उसके बारे में काफी प्रगति इसमें हो चुकी है, और जापान ने कमिटमेंट दिया है कि वो बड़े पैमाने पे भारत में इन्वेस्टमेंट करेगा।
4: और उसमें एक चीज ये भी देखने में आई है कि ऊर्जा सुरक्षा को लेकर के कई अहम फैसले हुए हैं, और इसमें ग्रीन हाइड्रोजन का जिक्र किया गया, क्लीन अमोनिया की बात हुई, बायोगैस क्षेत्र में नई साझेदारी शुरू करने की बात हुई है। भविष्य की ऊर्जा को लेकर के भारत के अपने एजेंडा है, भारत ने बहुत कुछ सोच रखा है कि हमें कितना ज्यादा करना, कार्बन फुटप्रिंट को भी कम करने पर लगातार बात होती है। तो आपको लगता है कि ये जो नई चीजें शुरू हो रही भारत और जापान के बीच में, तो इससे हमारे जो अपने गोल्स हमने डिसाइड किए हैं भारत ने, उसमें उन्हें प्राप्त करने में बड़ी भूमिका होगी?
5: बिल्कुल, जैसे हमारे लिए हॉर्मुज का जो कन्फ्लिक्ट रहा है वो बहुत अच्छा नहीं रहा हमारे देश के लिए, ऊर्जा सुरक्षा के लिए। उसी तरह से बिल्कुल जापान भी ऊर्जा के लिए बहुत निर्भर है, तो दोनों देशों ने जिसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने के लिए कदम उठाने का इसमें जिक्र किया है। ये मैं समझता हूँ कि ऊर्जा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रयास रहेगा। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कई सारे इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की भी चर्चा हुई है कि किस तरह से यूक्रेन में शांति प्रस्थापित होना जरूरी है, किस तरह से कोई एक देश खुद के टर्म पे ये डिक्टेट नहीं कर सकता कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, इसके बारे में भी बताया गया है। गाजा जो है, पैलेस्टीनियंस और इसराइल का जो वहां मुद्दा उठा है, उसके पुनर्स्थापन के लिए, रिसेटलमेंट के लिए, रीडेवलपमेंट के लिए चर्चा हुई है। और ये मैं समझता हूँ कि भारत जापान के संबंधों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत आगे ले जाएगा। संयुक्त राष्ट्र परिषद में, सुरक्षा परिषद में भारत और जापान जो है सदस्य रूप में आना चाहिए, इसके ऊपर भी सहमति पहले ही हो चुकी है, उसके ऊपर दोबारा एक बार स्टैंपिंग जो है मैं कहता हूँ इस बैठक में हो चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि कुल मिलकर ये बहुत सफल यात्रा रही है।
4: भारत और जापान कई सारे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी बात रखते हैं। क्वाड की हम बात करें, आसियान का जिक्र करें या फिर बिम्स्टेक जैसे मंचों का उल्लेख करें, ऐसे स्टेटमेंट हमारे सामने आते हैं जहां पर दोनों देश मिल करके बहुत ही स्पष्ट नीति के साथ में काम करना चाहते हैं। तो जो नई रणनीतिक व्यवस्थाएं वर्तमान समय में बनी हुई हैं, उनको देख करके भविष्य को कैसे देखते हैं?
5: भारत और जापान मुझे लगता है कि दुनिया की जो डेस्टिनी है उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान करने वाले हैं और उसकी नींव जो है भविष्य की आगे आने वाले दशकों की तैयारी जो है इसमें ये डॉक्यूमेंट जो है जॉइंट स्टेटमेंट दर्शाता है किस तरह से दो देशों के बीच संबंध होने चाहिए और किस तरह से उनको

0: विश्व में शांति और समृद्धि लाने के लिए कोशिश करनी चाहिए।
1: भारत के आंतरिक हिस्सों की अगर हम देखते हैं तो जापान का बहुत ज्यादा उत्साह रहता है पूर्वोत्तर भारत में निवेश करने का। हालांकि ये हमारे लिए क्षेत्रीय विकास की बात है, लेकिन भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको ध्यान में रखते हुए इसमें जापान की क्या संभावनाएं आपको नजर आती हैं?
0: देखिए, जापान दूसरे विश्व युद्ध में हमारे पूर्वोत्तर तक पहुंच गया था, जैसे अंडमान निकोबार में पहुंच गए थे उसी तरह से, तो जापान अच्छे से इससे एक उनका कनेक्ट है, इमोशनल कनेक्ट है उस इलाके से। दूसरा जो है कि उनकी ये सोच है कि जहां विकास कम है वहां जाके हम विकास के कार्यों में सहभाग दे, तो जापान का पूर्वोत्तर में रुचि लेना जो है भारत के लिए भी बहुत सहायक है। वहां से बड़े पैमाने पे जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मोबिलिटी की ट्रेंड मैनपावर जो है बहुत बड़े पैमाने से पूर्वोत्तर के राज्यों से जापान आज के दिन में जा रही है, और ये बहुत ही स्वागत करने वाली बात है।
1: संयुक्त बयान में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है और दोनों देशों ने कड़े शब्दों में आतंकवाद की निंदा भी की है। तो जापान का इतना खुलकर भारत के पक्ष में आना, इसे भारत के दृष्टिकोण से कितनी बड़ी सफलता आप मानते हैं और वैश्विक स्तर पर इसके क्या असर होंगे, क्या मायने होंगे?
0: जापान और भारत हमेशा आतंकवाद के खिलाफ रहे हैं। अगर आप देखें तो पाकिस्तान का साथ हमेशा चीन ने दिया है, और चीन और जापान के रिश्ते जो है वो भी काफी संघर्ष वाले रिश्ते रहे हैं, बहुत नकारात्मक रिश्ते रहे हैं भूतकाल में भी और आज भी उसमें काफी असंघर्ष के मुद्दे हैं। तो इसलिए भारत और जापान की जहां तक बात है, एक कन्वर्जेंस जिसको बोलते हैं हम लोग, दोनों के हित संबंध जो है, इंटरेस्ट जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए जापान भी और भारत भी आतंकवाद को लेकर बहुत मजबूती से विरोध करते हैं।
1: ज्ञानेश्वर जी, अक्सर जब इस तरह के समझौतों की या स्टेटमेंट पर हम चर्चा करते हैं तो ये देखा जाता है कि लोगों के बीच संपर्क, खासतौर पर दोनों देशों के जो नागरिक हैं उनके बीच संपर्क हो, उनकी बातचीत, जापान की भाषा हो, पर्यटन हो, सांस्कृतिक आदान प्रदान हो, इस पर जोर देने का लगातार जिक्र होता है। तो पीपल टू पीपल कनेक्ट का जो एक थॉट है उसको लेकर के जापान का हमारे प्रति दृष्टिकोण, हमारा जापान के प्रति दृष्टिकोण, दोनों में आपको क्या लगता है कि कितना महत्वपूर्ण है?
0: 7वीं शताब्दी में पहला बुद्ध मंदिर जो है जापान में प्रस्थापित हो चुका था, और ये बौद्ध धर्म जो है यहाँ से चीन होके तिब्बत, चीन और कोरिया होके जापान चला गया। उसके अलावा जो है गांधी और नेहरू के विचारों का जापान में बहुत प्रभाव शुरू के सालों में था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब जापान की जिम्मेदारी तय करने की बात आई तो भारत के राधा विनोद पाल जज थे, उन्होंने ये कहा कि हारने वाले राष्ट्र पर आप अपना जो है शर्तें लाद नहीं सकते हो। ये बहुत बड़ी बात थी उस जापान के लिए। बुद्धिज्म के अलावा बोनसाई हो या अन्य कलाएं हो, सुमिये हो, जहाँ पर जापान भारत के कवियों पर हाइकू का बड़ा प्रभाव है, तो ये सब चीजें जो है, एनिमेशन जो है बच्चों के लिए बहुत लोकप्रिय है। तो इस तरह से आदान प्रदान जो रहा है वो सदियों का रहा है सांस्कृतिक संबंधों का। मुझे लगता है कि इस तरह के जब राजनयिक रिश्ते अच्छे हो जाते हैं उसका असर सहज अन्य आयामों पर भी हो जाता है।
1: ज्ञानेश्वर जी, भारत लगातार अपने महासागर, पहले जो सागर था उसे महासागर में चेंज किया गया, उस विजन को लेकर के आगे बढ़ रहा है। वहीं जापान की अगर बात हम समझे तो वो उनका कहना है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की हम बात करेंगे, तो आपको लगता है कि ये जो दोनों पहल दोनों देशों की तरफ से हो रही है पूरे क्षेत्र में, ये एक शक्ति संतुलन को पूरी तरह से मजबूत करेंगे? और अगर चीन को लेकर के इसे हम समझें तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर?
0: बहुत जरूरी है कि चीन का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है विश्व में अलग अलग तरीके से, सिर्फ राजनयिक नहीं, वो तो मिलिट्री भी है, इकोनॉमिक पावर भी है, और अलग अलग तरीके से वो अपना प्रभाव दिखा रहा है। ऐसे में संतुलन बनाने के लिए भारत और जापान का एक साथ आना बहुत जरूरी था, और इस जो शिखर वार्ता के समय इस पे मुहर लग चुकी है कि हम जो है एक दूसरे के साथ रहेंगे और इकट्ठे जो है इंडो पैसिफिक में अपना प्रभाव बना के रखें।
1: ज्ञानेश्वर जी, अगर हम इस पूरे संयुक्त वक्तव्य को देखें, जापान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा को देखें, ऐसे समय में जब वैश्विक हालात काफी उथल पुथल हो रखे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ कुछ समय के लिए ही है ऐसा एजेंडा हमारा, या फिर भारत जापान संबंधों को और भी लंबा ले जाने के लिए खासतौर पर एक दशक की रणनीतिक रूपरेखा को यह तय करेगा?
0: मेरे ख्याल से ये हर साल प्रधानमंत्री के स्तर पर शिखर वार्ता होती है, इसका अर्थ ही यही है कि हम एक दूसरे के बहुत करीब है। इस तरह से द्विपक्षीय वार्तालाप हर साल होना ये अपने आप में बहुत विशेष बात है।
1: ज्ञानेश्वर जी, आपने इस चर्चा में तमाम प्रश्नों का उत्तर दिया, जिज्ञासाओं का समाधान किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत जापान रणनीतिक साझेदारी के विस्तार और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत ज्ञानेश्वर मुले, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: सुर्खियों में ये था कार्यक्रम सुर्खियों में। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

दिल से दिल की बातों के सफर पर आपके साथ है आपकी दोस्त विजया जैन। तो स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मोहब्बत का सबसे खूबसूरत रूप इंतजार है। जितना गहरा इंतजार उतनी गहरी मोहब्बत। वो धड़कन है मेरे दिल की, है ना, जिस हसरत से मैंने उसे चाहा है, उस हसरत से तो मैंने खुद को भी चाहा नहीं। उस पर इंतजार की ये घड़ियां दिल समझता भी है या नहीं। बात क्या है जो रातों तक लंबी होती रही, क्यों साहिब, है ना।

एक दूजे का होना आसान है, समझना मुश्किल है। समझने के लिए अपना होना पड़ता है, शायद कभी कभी खुद को खोना भी पड़ता है उसके लिए। बेवजह नहीं होता जीवन में सब कुछ, यूं ही दिल नहीं धड़कता तुम्हारे लिए, ना यूं ही आंखें बरसती है। कुछ तो है ना, थोड़ा प्यार, थोड़ा अपनापन और थोड़ा सा दूर जाने का डर। निभाओ तो ऐसे निभाओ कि कितने भी जन्म हो, एहसास पुराने ना हो, जज्बात वही हो।

मुझको तेरी ओर खींचती जाने कैसी डोर, एक दूजे को तकते दोनों जैसे चांद और चकोर। तुम किसी और की दुनिया हो या ना हो खबर नहीं मुझे, मगर मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम मिले मुझे। चांद मांगने से कभी मिलता है क्या, लेकिन फिर भी हर रात चकोर उसे देखकर बस, समझ गए ना आप। जी हाँ, नींद तो रोज आती है हमें, पर सुकून नहीं आता तुम्हारे बिना। शायद तुम्हारे बिना इस रात को रात होना नहीं आया, क्योंकि इतनी शिद्दत से चाहने के बाद भी शिद्दत से आज भी तन्हा है हम, न जाने क्यों और कैसे।

तुमसे मिलकर कई बार ऐसा लगा कि जैसे मेरी हर चाहत मुकम्मल हो गई और ये लम्हा ये पल यही ठहर जाए। तुम्हारे पास आकर कई बार ऐसा लगा जैसे रूह को राहत मिली, राहत ऐसी जैसे सदियों की प्यास को इनायत मिली हो जैसे, क्योंकि जब भी ये दिल उदास होता है तू कहीं आस पास होता है।

जो उनकी आंखों से बयां होते हैं वो लफ्ज शायरी में कहाँ होते हैं। तैरना तो आता था हमें भी, लेकिन उनकी आंखों में डूब जाना अच्छा लगता है। सुना है तुम नज़रें भी पढ़ लेते हो, इसलिए अपनी आंखों को झुकाए रखना अच्छा लगता है। होठों पर हंसी आंखों में नमी है, मेरी हर सांस कहती है बस तेरी ही एक कमी है।

प्रेम की कोई एक परिभाषा नहीं होती, कोई उसे शब्दों में कहता है, कोई आंखों से जताता है और कोई सिर्फ एक गीत गुनगुनाकर अपना पूरा दिल खोल देता है। जी हाँ, मेरे जीवन की अनमिट कहानी है तू, मेरी तकदीर और जिंदगानी है तू। क्या यही नहीं है सच्चे प्यार की पहचान, कि जब कोई आपकी तकदीर में शामिल हो जाए और आप उसकी तस्वीर सबसे छुपाए छुपाए दिल के किसी कोने में संजोए रखें, कुछ इस तरह।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। सरकार ने कहा, सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
2: India's position on the Indus Waters Treaty.
3: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
1: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
2: India's development assistance.
3: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
1: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10-11% की वृद्धि का अनुमान है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार की निर्यात रणनीति में प्रत्येक राज्य, जिले और उद्योग क्षेत्र को समान महत्व दिया जा रहा है। श्री गोयल ने कहा कि 38 विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों ने भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोले हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने में दुनिया भर में रुचि बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
4: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
1: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान महत्वपूर्ण खनिज, साइबर सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, उभरती प्रौद्योगिकी और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की यह पहली यात्रा होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है।

0: रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मिले इन रक्षा खरीद प्रस्तावों से सेना, नौसेना और वायुसेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा आज के दौर में बदलती सुरक्षा चुनौतियों को बेहतर ढंग से सामना करने में भी मदद मिलेगी। भारतीय सेना के लिए एंटी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आकाश तरंग खरीद को मंजूरी दी गई है, जो भारतीय सेना को दुश्मन के ड्रोन से प्रभावी सुरक्षा देगी। इसके अलावा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। वहीं भारतीय नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम के लिए भूमि आधारित परीक्षण केंद्र शामिल है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह तथा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं।
2: 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्यों में कैसे तैयारी करें, कैसे परफॉर्मेंस ग्रांट का पूरा लाभ उठा सकें, सभी बिंदुओं पर चर्चा करके सभी राज्यों को उसके लिए तैयार करने के लिए आज की यह कार्यशाला थी। 73वें संविधान संशोधन के तहत ये राज्यों का विषय है और राज्यों के सहयोग से ही हम पंचायतों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मेटा को इस संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से हटाने का निर्देश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि पत्रकारिता को हमेशा सत्य, ईमानदारी और उच्च पेशेवर मानकों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। नई दिल्ली में ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक पत्रिका के 80वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक और उसकी सहयोगी पत्रिका द मदरलैंड संविधान और लोकतंत्र की आवाज थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना की निंदा की है। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि ये घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे पूरे समाज तथा भगवान राम के भक्तों की आस्था को गहरी ठेस पहुंची है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के पहले दिन कुल 12,168 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ जी गुफा में शिव की पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बीच तीर्थयात्रियों ने गुफा के दर्शन किए। इससे पहले अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों को सलाह जारी कर कहा था कि वे केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा करें। इस बीच तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था बालतल और नुनवा

0: गुजरात के सांणंद में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने आज 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न जिलों के मीडिया और संचार अधिकारियों का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया। इसमें 260 से अधिक अधिकारी शामिल हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग का हर निर्णय संविधान, चुनाव कानूनों और समय समय पर जारी लिखित निर्देशों के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ लिया जाता है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 262 अंक बढ़कर 77,764 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक की बढ़त के साथ 24,271 दर्ज हुआ। दक्षिण पश्चिम मानसून आज गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के कुछ और हिस्सों तथा मध्य प्रदेश के शेष भागों में आगे बढ़ गया। मौसम विभाग ने कल गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले दो दिन तेज बारिश हो सकती है। अगले दो से तीन दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और सिक्किम में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी बारिश हुई। हमारे मुंबई संवाददाता से और जानकारी।
1: आज महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिसमें तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। आईएमडी के अनुसार कल से 7 जुलाई तक राज्य में बारिश और तेज होने की संभावना है। कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि कोंकण और नजदीक के घाट इलाकों में कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान की भी संभावना है। आईएमडी ने मछुआरों को 7 जुलाई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। इस बीच एहतियात के तौर पर एनडीआरएफ की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में बचाव दल तैनात कर दिए हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के दौरान पिछले सप्ताह मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 22 से 28 जून के बीच लगभग 9,000 लोगों की मौत हुई है। ये पिछले सप्ताह की तुलना में 29% अधिक है। पेरिस में सबसे अधिक मौतें हुई। अस्पतालों में निर्जलीकरण, दिल का दौरा, गुर्दे की जटिलताओं और अन्य लू से संबंधित बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई। कांगो में इबोला वायरस के इलाज के लिए दो संभावित दवाओं का क्लिनिकल परीक्षण शुरू हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने बताया कि इस परीक्षण में पहले मरीज को शामिल कर लिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मौजूदा प्रकोप में अब तक 438 लोगों की मौत हो चुकी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। राउंड ऑफ 32 का अंतिम मैच कल सुबह 7:00 घाना और कोलंबिया के बीच खेला जाएगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया। पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से, जबकि स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सो योर प्लेस और माइन।
1: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
0: कॉन्डम? लेकिन हम तो
1: क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
0: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
2: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

मुकेश की आवाज़ में अभी आपने सुना यहूदी फिल्म का गीत। गीतकार थे शैलेंद्र, संगीत शंकर जयकिशन का। और श्रोताओं, चित्रगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से, और कुछ और गीतों का सफर हम आपके साथ तय करेंगे कार्यक्रम मन भावन में। फरमाइशी पत्रों पर आधारित कार्यक्रम मन भावन, लीजिए सुनिए अब आप सभी के लिए।

मन भावन कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को विजया जैन का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मौसम बहुत खूबसूरत हो चुका है और इस खूबसूरत मौसम में अगर खूबसूरत गीत वो भी आपकी पसंद के हो तो कहना ही क्या। जी हाँ श्रोताओं, तो आज आपकी पसंद के गीतों के साथ मैं हाजिर हो चुकी हूँ और शुरू करते हैं कार्यक्रम में गीतों का ये सफ़र। कार्यक्रम का पहला गीत हमने आपके लिए चुना है एक ऐसा ही बारिश वाला गीत जिसे हमने लिया है फिल्म चांदनी से। आवाज़ आशा भोसले और विनोद राठौड़ की है, गीतकार आनंद बख्शी, संगीत शिवहरी का। और सुनने के लिए बहुत सारे श्रोताओं ने हमें पत्र भेजे हैं, तो जल्दी से बता देते हैं किन श्रोताओं के पत्र आज इस कार्यक्रम में मिले हैं। सुदामा नगर इंदौर से अनिल भंडारे, उषा, समता, चित्रा और निशा। कासम कॉलोनी सनावत से यूनुस खत्री, शफी इदरीस, नूर मोहम्मद, इरफान मीना, कासिफ और हाजिम हासिम मीना। रेलवे कॉलोनी बठिंडा पंजाब से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक और शोभा नायक। संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डावर, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक, अब्दुल रहमान, अब्दुल कादर, मोहम्मद हमजा डावर और तुलसीराम वर्मा। कोली नांदेड़ के श्रोता हैं नारायण गायकवाड़, दयानंद ओमकार और साई गायकवाड़। बहरामपुर टेमा से त्रिलोकचंद वर्मा, भागवत, अभिषेक, सीमा, अमित, सचिन, सुभाष, संतोष, दिनेश, समर, राज, आर्यन, आरोही, इशिका, अंजलि और श्वेता वर्मा। देवास के श्रोताओं का पत्र मिला है अनंत चीखले, जगदीश नागर, जगदीश नागपाल, महेंद्र शर्मा, नारायण प्रसाद राय, राजेंद्र पारिक, कैलाश पटेल, कैलाश वर्मा, पंकज राठौड़, विनायक राठौड़, मोहन परिहार और विनोद राठौड़। और अनंत चीखले ने भी पत्र भेजा है। शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ के श्रोता है अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य और कृष्ण श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन बंसीलाल और लवी श्रीवास्तव। इसी गीत के लिए मलोट कैंप पंजाब के श्रोताओं का पत्र मिला है। सतीश मिगलानी, सीमा, शाइना, विशाल, अनमोल धर्मपाल, रमेश मिगलानी। नेपाल पैलेस सागर से तिलक मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन। महाराष्ट्र बीड शहर से प्रकाश पगारिया, पराग, प्रदीप और केशव पटेल। आप सभी की फरमाइश पर लीजिए ये खूबसूरत गीत आप सभी के लिए।

तो आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने आपके लिए चुना है मेरा गांव मेरा देश फिल्म से। आवाज मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की है और इस गीत को सुनने के लिए हमें पत्र मिला है भील बड़ोली गौतमपुरा इंदौर से, राजेंद्र शर्मा, भावना, दिनेश, ज्योति शर्मा, जयदीप, अर्पिता, हिमांशु, ओशिन, हेमंत, अद्विका, निशिता और पूरा शर्मा परिवार। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश, करुणा वर्मा, दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, चर डोंगरी पीपरिया से दुर्गाराम साहू। इसी गीत के लिए जिला हिंगोली महाराष्ट्र से पत्र मिला है रामचंद्र इंगोले, सिद्धांत टिक्कू, रमाबाई, सुरेंद्र, मयूरी सुरभि, मंजूषा और गौतम इंगोले, यहीं से सुनील जबड़े, आर डी इंगोले, नामदेव राव शिंदे, पंडित राव शिंदे, चंदू बालखड़े और छोटू दादा इंगोले। साथ ही विलास पाटिल ने भी पत्र भेजा है। यहीं से पत्र लिखने वाले श्रोता हैं शेष राव बोबड़े, सोनाजी, सीताराम, वैष्णवी, सवर्णा, वेणु और शुभम बोबड़े। जिला हिंगोली महाराष्ट्र से पत्र मिला है पार्वती, सखाराम ठोके, दीपाली, राजू, रोहित, सोनू और मोनू ठोके का। सनावत मध्य प्रदेश के श्रोता हैं हुकुमचंद कटारिया, पिंटू सेन, हरिनिवास खेड़े, दीपक, सचिन, प्रभा, कृष्णा, विराज, अर्णव और काव्यांशी कटारिया। घंटाघर चौक खंडवा से संजय, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। ढाणकी रोड उमरखेड़ महाराष्ट्र से पत्र मिला है रजाक खान, शबाना बेगम, आसपा परवीन, जावेद खान और आशिया परवीन का। राजपुर से घिसु दिलवारे, लक्ष्मी, माधुरी, सोनाली, भगवान, पुष्पा, नेहा, एकता, अस्मिता, सौरभ और कुणाल दिलवारे। ग्राम भड़बूजी जिला आगर से रघुनाथ मालवीय, भवरबाई, रीना, सुषमा, पुष्पा, ममता, मंजू, बबीता, राधा, सरिता, श्याम बाबू, भावना, दुर्गा, मधुबाला, विनोद, विशाल, मिलन और ओम प्रकाश। कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से पत्र मिला है नारायण।

गायकवाड़, ओमकार और रसाईका। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां। करनाल से पत्र लिखने वाले श्रोता हैं सुधीर उत्तम और मीनाक्षी तिवारी। आड़ा बाजार से प्रतिभा पांजरे, नेहा बल्लू, जिया, मनीष शर्मा, राशि, भावना, आशीष जाधव और दिनेश पांजरे। यह अगला पत्र है आनंद कुमार कामले, रेखा, राखी, पारस, तपस्या और करिश्मा कामले का। आप सभी ने गौरीनगर इंदौर से पत्र भेजा है। राजकुमार मिल चौराहा इंदौर से महेश रायकवार, अमृता, सरिता, नितिन, कृष्णवी और अहिल्याबाई रायकवार। राजनांद गांव छत्तीसगढ़ के श्रोता हैं याकूब आसमा, यूसुफ, इमरान और इरफान। जेल रोड रायगढ़ से रेशमा, सोनम और अदीबा तिवारी। इंदिरा विहार रायगढ़ से अकरम नूरजहां, डब्लू सईद, वसीम नूरजहां और वली अल्लाह नूरजहां का।

आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं तुलसी फिल्म का गीत, जिसे गाया है हेमलता और जसपाल सिंह ने। सुनने की फरमाइश हमें मिली है दरियापुर भाबली महाराष्ट्र से गजानन और नवदीप येले, गौतम नगर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र के श्रोता हैं प्रभाकर और आरती जोंदले, लावरिया भेरू इंदौर से अनिल प्रमिला बामनिया, नंदिनी मुस्कान, नीलम सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक, कुणाल, केतन और पूरा परिवार, शिवपुरम कॉलोनी खंडवा से वीएस महोबिया, कमला महोबिया, रामगंज खंडवा से विजय, कविता, संजय, नंदिनी, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, डोली, देवराज महोबिया और भैयू दादा, पांडर कवड़ा से अनिल, उषा बुरांडे, प्राची, अनुश्री और धनश्री बुरांडे, दत्ता घायल, सुनीता बाई, सानिका और गजानन घायल, आप सब ने मालेगांव महाराष्ट्र से पत्र भेजा है। नांदखेड़ जिला वाशिम से अशोक, दिनेश चुंबले, रूपेश, डेलाबाई, चेताली चुंबले और प्रीति चांदने। ये अगला पत्र हमें मिला है इसी गीत के लिए, खाचरोद से अशोक कुमार और मंजू बाला का, भीकनगांव से संतोष सातले, सारिका, रोहित, शुभम, शैलेंद्र, कंचन और चंदन सातले। बुलढाणा महाराष्ट्र से पत्र मिला है नारायण खड़ से रक्षा, ललिता, संजना, गणेश, कार्तिक, मालती चौधरी, स्वाति और प्रयाग चौधरी, आप सब ने नांदूरा चांदुर बिस्वा से पत्र भेजा है। खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल, विशाल, शीला और गायत्री धनजे, खुर्दी रोड मानपुर के श्रोता हैं विजय रानी, महिमा और नीतू वैद। देवास से बहुत सारे श्रोताओं ने हमें पत्र लिखा है, उपाध्याय नगर से मुरारी लाल, मनीष और शिवम वर्मा, शांतिपुरा से सुभाष गोड़िया, लक्ष्मीपुरा से नवीन मीनू वर्मा, राजाराम नगर से राजेश अग्रवाल, शांति महाजन, मोहसिनपुरा से जमील खान, सुतार बाखल से नागपाल फोटो वाले, भील कॉलोनी मुसाखेड़ी से रवि डामोर, बबीता, संदीप, दुर्गा, अभिषेक, गौतम और विमान, और शाजापुर से MM राणावत, आप सभी ने पत्र भेजा है। खेरलावाड़ी हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा, हनुमान, सारिका, सुरेखा, आरवी और उत्तम जमधाड़े, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज, मीना शर्मा, योगेश, मिंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा ने, बेरडी से राजेश, कंचन सोनी, गायत्री, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सव्वासेरे, कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से नियाज मोहम्मद मंसूरी, सरताज भी, उबेद, चुनेद, रजिया, अलीना आयत और माज मंसूरी।

मन भवन कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। और श्रोताओं, आकाशवाणी इंदौर आप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं, और साथ ही गूगल पर आकाशवाणी इंदौर लाइव अगर आप सर्च करते हैं तब भी आप हमारे गीत और हमारे कार्यक्रम सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए आकाशवाणी इंदौर के साथ। इस वक्त आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भवन, और मन भवन का अगला गीत हमने आपके लिए चुना है आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम जमीर, और इस गीत को सुनने के लिए हमें पत्र मिला है छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से राजेश पाटिल, राजदीप, राशि और शीतल। फोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंघनकर, दिशांत कुमार, वंदना धूले, अर्पिता और उनका पूरा परिवार। इसी गीत के लिए उमर खेड़ा से पत्र मिला है मिलिंद खंदारे, भारती नागसेन, अश्विनी धारा, स्वाति, प्रिंस कुमार, अद्वीक और उनके साथी MK खंदारे, अरविंद राठौड़, संगीता, वेदांत, योगेश, यशोदाबाई, बाबूराव राठौड़ और पूरा खंदारे।

नूरजहां नूर भाई पंडित, राजकुमार आरिफ भाई दलाल, दुर्गेश जायसवाल और भेरू दादा चौहान, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन सुमन ठाकुर, मिथिलेश तारनी, सूरज सुजला ज्योति और रेंज ठाकुर, भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार और जावेंद्र कुमार वर्मा, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश, उषा, अमित और हैप्पी राय, दुबीहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक, रोशनी और प्रांजल राय, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश, प्रीति और नवनीत राय, खमरिया बिलासपुर छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, मानस साहू और प्रतीक कुमार, रतनपुर से भागीरथ नायक, जितेंद्र सुभाष, रविंद्र अश्विनी, अश्विनी हर्षराज, अरविंद आदित्य, गुनगुन और उनके साथी, ब्रह्मपुरी कॉलोनी इंदौर से दिनेश कुमार हाड़िया, ज्योति, राहुल, वर्षा, अंजू, अनुराग, अंकित और हेमंत हाड़िया। इसी गीत के लिए दुर्गा चौक जूनापानी सनावत से कालू सिंह बड़ोले, सीताराम हीरालाल बड़ोले, तेर सिंह डावर, साहिल हरिओम, विशाल, सुमन, रमा, कंचन और भावना, झुमरी तलैया से देव इंगोले, छकुली पांगरकर और आर डी इंगोले, लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोइन छोटू पवार, साकिब पवार और मोहम्मद हसनैन पवार, बाजार चौक ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनीता छोटू, पूजा रोशनी और अजय गंगराड़े, अहमदपुर खेगांव से कैलाश दीपक फूलमाली, समर और वेदिका फूलमाली। और ये अगला पत्र इसी गीत के लिए है, नेवासा खुपटी से बंडू लोहार पोपलघट, माया शिवांश चंद्रकला और देवीदास पोपलघट, श्रीरामपुर भोकर से हरी श्रावण और अनीता बिड़वे।

कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए श्रोताओं, आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम चश्मे बद्दूर, इसे गाया है यशोदास ने और इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें मिली है कवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति शिवानी और मीनूराज श्रीमाली। इसी गीत के लिए कृष्णा पार्क से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सीटी और पिंटू दीवाना, राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु, राशि रक्षित, चित्रंजन कमल उमेश, सरोज आरती रेखा, रितिका रीचा स्वीटी सागर, रिया रीत, ऋषभ राजावत और उनकी दादी जी, कनेरा मोहल्ला पटियाला से पूरे बत्ता परिवार ने पत्र भेजा है, मुकेश नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण गीतू निहारिका हार्दिक और वंश बत्ता, चंडीगढ़ से सतीश और विमला अनेजा। इसी गीत के लिए धर्मपुरी जिलाधार से शेख फहीम मोहम्मद, मोहम्मद तस्लीम शेख, मुजफ्फर अयान, फैजान सुमेरा, कशिश साइमा, हसनैन और खुशी। इसी गीत के लिए हमें पत्र भेजा है पुणे से पंकज वाड़ोदे, प्रियंका आर्या, बीटी वाड़ोदे और चंद्रप्रभा वाड़ोदे, जरूर वरुण महाराष्ट्र से बाबा साहेब वाड़ोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी कनीरे, कार्तिक और युवराज, बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, पुराना तालाब डोमराव से वलीउल्लाह अंसारी, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, इंदिरा विहार दिल्ली से डब्लू अंसारी, जेल रोड बक्सर से नरेंद्र कुमार यादव, छटिया पोखरा डोमराव से सुनील कुमार वर्मा और मुस्तफाबाद दिल्ली से लाल बाबू दीवाना। प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम के श्रोता हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश और ऋषि वर्मा, जामरून अर्धापुर से दुर्गादास जोशी, गंगाधर, गजानन, संजय, आशीष, पृथ्वीराज और साध्वी जोशी, परभणी से गणेश हरगांवकर, पिंपी वाशिम से गबा सिंह राठौड़, सतीश, अभय, अजय, खुशन और यश राठौड़, नंदनगर सुलगांव से नंदराम मंसारे, हरी, रिंकी, रेखा, वर्षा, रीना, राजकुमार मंसारे और उनका पूरा परिवार। और ये अगला एक और पत्र हमारे पास है इसी गीत के लिए, बलौदालखा जिला उज्जैन से कन्हैयालाल प्रजापति, कैलाश, कुंदन, दिव्यांशु, अनीता, भागवंताबाई, साक्षी और मीनाक्षी प्रजापति का।

मन भवन कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त विजया जैन। तो आइए सुनवाते हैं इसी कार्यक्रम में अगला गीत हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर। प्रणाम सिटी खंडवा से शिवांश कुमार खंडाले, सुभाष बंदा, राजेश कुमार, अंजलि, संदीप, माधुरी, पिंटू और जयश्री खंडाले का आप सभी ने शिकार फिल्म

का गीत सुनने की फरमाइश की है आशा भोसले और साथियों की आवाज़ में। और ये इसी गीत के लिए अगला पत्र है गांधीबाग अकोला से रमेश वैशाली कटनकर का। सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया, आसमा, सालिया, सोएब, पोत्रा मुश्तावा खान, राउफ भाई और शाहिद भाई। इसी गीत के लिए बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन से विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मुणत, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा और कुश मुणत। पालदाना का इंदौर से हसीना भी मंसूरी, अमीना भी और मोहम्मद रफ़ी मंसूरी। सहारनपुर उत्तर प्रदेश के श्रोता हैं आशु नारंग और सुरेश नारंग। यादव मोहल्ला सनावत से दिलीप, योगेश मालाकार, सुनीता और मुस्कान मालाकार। लेवाखेल मोहल्ला चांदुर बिस्वा से नारायण विठल राव खर्चे, ललिता परी, संजना खर्चे, गणेश कार्तिक, ब्रोनो, उषा सोरना और उनके साथ ही। ये अगला पत्र देवास के श्रोताओं ने हमें भेजा है अशोक, मन, शिवन्या, पलक और विहान। जिला लातूर के श्रोताओं ने पत्र भेजा है उस्मान शेख, फौजी, सायरा बानो, दस्तगीर शेख, फैजन बी, शाकिर इस्लाम बी, बाबा शेख, करिश्मा, सानिया, शकिल और उनके साथ ही। चांदनी आयूब सैयद और राजे अमन सैयद ने भी पत्र भेजा है। इसी गीत के लिए हमें पत्र मिला है एयरपोर्ट रोड वंदना नगर छोटा बांगरदा इंदौर से नीलेश कासार, निशा, नितिन, प्रीति, लक्ष्य, निधि और उनका पूरा कासार परिवार। जिला जलगांव ग्राम अड़ावत से नरेंद्र महसतकर, निशा महसतकर, चीनू विधु और निधु महसतकर और पूरा परिवार। इंदौर सोमानी नगर के श्रोता हैं बी आर राष्ट्री, रौनक, रोशनी, धीरज और स्वाति। खंडवा रोड सनावत से अबरार भाई, इमरान, इरफान, वसीम, सोनू, सईदा बी, आयशा और सुल्ताना। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव, मीका, बलविंदर विरक, जेतक और मीका विरक। इसी गीत के लिए सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। और ये एक और पत्र हमें मिला है मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवानकर, सरिता सिद्धांत और एकांश गवानकर। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश वैशाली, श्वेता सुमित और ध्वनि गवानकर।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत को सुनने के लिए हमें जिन श्रोताओं ने पत्र भेजे हैं उनके नाम आपको बता देते हैं। सोनाला महाराष्ट्र से सैयद आसिफ, जुनेद बेग और गोविंद भमेरिया, मनु ठाकुर, योगेंद्र सिसोदिया, नेत्रा रावणकर, जाकिर हुसैन, नजमी, ये सभी देवास के श्रोता हैं। ग्राम महेशवाड़ी तहसील मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीक, नीनाजी, स्वप्निल धाड़े और अजय खिरोड़कर, संस्कृति नगर इंदौर से बबलू केसरी, छाया, हर्ष, मिताक्षी और सोमतीबाई केसरी, मयूरी परिसर भोपाल से श्रवण सिंह गिन्नारे, रेखा, विनीता, शेर सिंह गिन्नारे और संजय पगारे, कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से योगेश गुजराती, महिमा, रेखा गुजराती और अभय गुजराती। इसी गीत के लिए सुपरमार्केट देवा से प्रकाश चंद्र जसवानी, पंकज और सनी जसवानी, गंगेड़ी जिला उज्जैन से गोपाल बागवान, गोविंद सालग्राम, दशरथ बागवान, रूपाखेड़ी देवा से हरिराम माली, विष्णु माली, कपिल और निरंजन माली, जेल रोड से नवीन और बबलू वर्मा, और सरवानिया महाराज जिला नीमच से गोविंद, ममता पाटीदार, पूजा मधुसूदन और यशस्वी पाटीदार, अहमदाबाद से भालचंद बड़के, जतिन मेहता, विकास बड़के, फूलवा मेहता और नीलेश बड़के, सेमिनरी हिल्स नागपुर महाराष्ट्र से नाना डोंगर दीवे, रमा, सीमा, रीमा, दीक्षा और राहुल डोंगर दीवे, गुरुचौक फोफाली तालुका उमरखेड़ महाराष्ट्र से गणेश राव लांडगे, विमलताई, अलका, विनायक और वरुण लांडगे, ढांकी तालुका उमरखेड़ महाराष्ट्र से श्रीकांत ढांगे, करुणा और ओमकार अंजलि डांगे। आप सभी की फरमाइश पर लीजिए सुनिए फकीरा फिल्म का गीत।

मन भवन का अंतिम गीत श्रोताओं आप सभी की फरमाइश पर, यह अंतिम गीत श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे और अमूल्य बाठे ने घाड़ी नांदूरा महाराष्ट्र से पत्र भेजा है। सोमनाथ जिला जालना से नामदेव भूतेकर, अभिषेक गणेश, कार्तिक और अश्विनी भूतेकर, जलगांव से वैष्णवी जगदाले, हरसुल सावंगी, औरंगाबाद से वैभव गौरव लोखंडे, मेघराज युवराज कोलते, रिधोरा देवी, रुद्र कोलकर और उनके साथी अतुल गौतमी, धमदीना, अरुण काले और रेडी कांबले, आप सभी ने कोल्हापुर से पत्र भेजा है। यहीं से प्रशीक, मेघना, तुषार, एकता, उत्कर्षा कांबले, अरुण यलगुड़कर और उनके साथियों ने पत्र भेजा है। डोंगरगांव जिला राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबीए, राधिका, अनिष्का और तन्मय गजबीए, बनियापारा धमतरी से रामचंद्र माखीजा, सविता, स्वाति और पूरा माखीजा परिवार, जालना से पत्र मिला है सुधाकर जाधव, प्रशांत, प्रणव, संचित देशमुख, जगु और स्वाति देशमुख, वर्षा और पूजा देशमुख, प्रणाली और ऋतुजा देशमुख का। गुमाश्ता नगर स्कीम नंबर 71 से यह पत्र मिला है अनिल कवियाले, नेहा फंड से सीमा, सबीहा, फलक, पूजा, सुषमा और स्मिता का। मस्तानपुरा

पूर्णा जंक्शन से अनंता भगत, अरुणा, लोचना भगत, चेतन भगत और उनका पूरा परिवार, दसमले चौक परतूर से सुरेश, आपा दसमले और जयश्री दसमले, सूरतगढ़ राजस्थान की श्रोता हैं भूपेंद्र सिंह सुथार, रोहित शर्मा, श्रीपाल शर्मा, श्रीकांत शिव बिश्नोई, नरेश वर्मा, सागर से अतुल श्रीवास्तव, उदयपुर से बीना, कोटा से कविता शर्मा और मोनिका जैन, प्रियंका दाधिच, मुंबई से पत्र लिखा है, लाबरिया भिरिंदौर से अनिल प्रमिला बामनिया, नंदिनी मुस्कान, नीलम सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक, कुणाल और केतन, बेरड़ी से हुकुम, सुनीता, हार्दिक, प्राची और तनु करमकर, बुरहानपुर ग्राम मोइत से भैया तड़वी, रीना, सनी बाबू, रोजूबाई तड़वी, परु, मुबारक बारेकर, मनोहर ठाकुर और तैमूर बारेकर, भोकरी महाराष्ट्र से अरशद तड़वी, आरिस, अरशलान और यूनिस तड़वी, बुरहानपुर से मुशर्रफ खा तड़वी, जरीना, मुबारक, परवेज तड़वी, रोजमीन, तैमूर तड़वी और पूरा तड़वी परिवार। और ये पत्र है महसूल सीतामढ़ी बिहार से अकरम हुसैन, मुजम्मिल बाबू, इशरत अकरम, हुमेरा नाज, वसीम, सुमेरा नाज, रुबीना वसीम, अबिहा नाज, आरिज वसीम, शाजिया नाहिन नाज, ममता रानी शर्मा, नाजिया नूरी, पूनम कुमारी, बच्चू शेख, अरहान बाबू, चीना शेख और हमजा बाबू, शेख टोली समस्तीपुर से मोहम्मद शहनवाज परवेज और मुसर्रत जहानाज। आप सभी की फरमाइश पर लीजिए सुनिए मुकेश का गाया हुआ ये गीत। और फिल्म का नाम हम आपको बता देते हैं, फिल्म का नाम है रानी रूपमती।

हमारे श्रोता भी सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन, जो कि पत्रों पर आधारित था। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आज आप सुनेंगे पूर्वी नीमगांवकर का उपशास्त्रीय गायन। तबले पर संगत कर रहे हैं मोहित शाक्य और हारमोनियम पर संगत रचना शर्मा की। इनकी आवाज़ में पहले सुनिए राग होरी।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पूर्वी नीमगांवकर का उपशास्त्रीय गायन। तबले पर संगत कर रहे थे मोहित शाक्य और हारमोनियम पर रचना शर्मा। आप सुन रहे थे इनका गाया राग होरी। और आइए इन्हीं की आवाज में अब आपको सुनवाते हैं राग झूला।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पूर्वी निमगांवकर का उपशास्त्रीय गायन। आप सुन रहे थे राग होरी। तबले पर संगत कर रहे थे मोहित शाक्य और हारमोनियम पर रचना शर्मा। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले होंगे, पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार सेवा के साथ मैं अपर्णा सिंह। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी। तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
2: India's development assistance.
3: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
1: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नागरिक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की

0: में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10 से 11% की वृद्धि का अनुमान है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आईआईएन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। यह कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालताल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थयात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।